हाय हाय ये निगाहें, हाय हाय हाय ये निगाहें, कर दे शराब जिसे चाहे जिसे।

0: ताके मत अब कान मरोड़ो। कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो कुछ पैसे जोड़ो। शेर शायरी कवि राजा ना काम आएगी, कविता की पोथी को दीमक खा जाएगी। भाव चढ़ रहे नाज हो रहा महंगा, दिन दिन भूख मरोगे रात कटेगी तारे गिन गिन।
1: अच्छा,
0: इसीलिए कहता हूँ भैया ये सब छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो कुछ पैसे जोड़ो। अरे छोड़ो कलम चलाओ मत कविता की चाकी, घर की रोकड़ देखो कितने पैसे बाकी। अरे कितना घर में घी है कितना गरम मसाला, कितने पापड़ बड़ी मंगोड़ी मिर्च मसाला, कितना तेल नोन मिर्ची हल्दी और धनिया। कवि राजा चुपके से तुम बन जाओ बनिया। अरे पैसे पर रच काव्य भूख पर गीत बनाओ। पैसे, अरे पैसे पर रच काव्य भूख पर गीत बनाओ, गेहूं पर हो गजल धान के शेर सुनाओ।
1: जवाब
0: नोन मिर्च पर चौपाई चावल पर दोहे, सुकवि कोयले पर कविता लिखो तो सोहे। अरे कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली। कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली, झन झन करती कहो रुबाई पैसे वाली।
1: अच्छा,
0: शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है। शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है, कवि सम्मेलन दोस्त बड़ा झगड़ा होता है।
1: अच्छा,
0: मुशायरों के शेरों पर रगड़ा होता है, पैसे वाला शेर बड़ा तगड़ा होता है। इसीलिए कहता हूँ मत किससे सर फोड़ो, धंधे की कुछ बात करो कुछ पैसे जोड़ो।

जैसे परी, ये सुबह मस्त भरी, यूं हंसी जैसे परी। किस्मत को शायद याद आ गए हम, किस्मत को शायद।

ऐसी चीज सुनाए के महफिल दे ताली पे ताली, वरना अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो,

बचपन हो खुशगवार, जवानी सदा बहार। अल्लाह करे ये दिन यूं ही

काम को अच्छे करना, सिर्फ अल्लाह से डरना, सभी को गले लगाना, मोहब्बत में लुट जाना। मोहब्बत वो खजाना है, कभी जोखिम नहीं होता है, जिसके पास ये दौलत उसे

लेके अंगड़ाई सरे बजन बहुत पछताई, मुफ्त में हो गई बदनाम बढ़ी रुसवाई। आया गुस्सा कभी अपने पे कभी शर्माई।

और जय हो बंबई धाम की। ई है

आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे

0: रही है। अरे वाह अरे वाह अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: ये रुक जाते तो सारे धंधे रुक जाते। हाय हाय।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहां से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इन दिनों हम बात कर रहे थे गुस्से की। हमने ये जाना कि गुस्सा जो है वो हमें कोई और नहीं करवाता, हम खुद गुस्सा कर रहे होते हैं। उसके बाद शांति की भी बात की। एक और एस्पेक्ट जिसे हम अपनी ज़िंदगी के उस एस्पेक्ट को ले रहे थे, जब हम हर्ट हो जाते हैं, कैसे छोटी छोटी बातें जो हैं वो हमें हर्ट कर देती हैं और फिर अंदर ही अंदर हम उसे अपने पास रखते हैं। हर्ट के बाद हम क्या करते हैं, हम कभी रिवेंज लेना चाहते हैं, कभी हम ये कहते हैं कि हम उसे रिफॉर्म कर देंगे, कभी ये कहते हैं कि पनिश करना चाहिए, या फिर फॉरगिवनेस की बात आती है, फिर फॉरगेट करने की बात आती है। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस जो पूरा का पूरा हमारा एक ज़िंदगी जीने का तरीका है उसको एक नए एस्पेक्ट से देखते हैं। और इस पर बात करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, हर्ट होने के वो एस्पेक्ट्स हमने ज़रूर खूब डीपली देखे, क्योंकि यही एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो लोगों के पास आती है कि पता भी नहीं चलता कि कब हम किसकी बात से, किसी के होने से भी कितनी बार हर्ट होने लगते हैं, या हमें वाइब्स अच्छी नहीं मिल रही होती, या कभी कभी मतलब कोई चेहरा अच्छा नहीं लग रहा होता और समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो उसके वो एस्पेक्ट हमें देखे कि हम किस तरह से उससे रिएक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वजह समझ में आती गई कि वो हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन एक छोटा सा आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटा सा हम रिकैप करें कि क्या है जो एस्पेक्ट्स जो हमने देखा जो हम रिएक्ट करते हैं।
1: हम क्योंकि इस इल्यूजन में चलते हैं कि वो हर्ट आपने मुझे कॉज की है, तो जिम्मेवार आप हैं, तो आपको उसका रिजल्ट तो मिलना ही चाहिए। तो इसलिए नॉर्मल रिस्पॉन्स एक जो माइंड में आता है वो है रिवेंज लेने का। और छोटे छोटे रूप से हम बदला लेते हैं, जैसे हम बात करना बंद कर देते हैं, हम सहयोग देना बंद कर देते हैं, हम विड्रॉ हो जाते हैं, आप अपना करो मैं अपना, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं। और कई दिनों तक जैसे हमारा आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं,
0: फिर हम ये भी बड़ी आसानी से कहते हैं कि मैं आपको थोड़ा कुछ कह रहा हूँ,
1: हाँ मेरा मन नहीं है ना, मतलब मेरा, बट एक्चुअली इंटरनली सबकॉन्शियसली इट्स अ वे ऑफ गिविंग यू पेन, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं आपसे बात नहीं करूंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब आपने मुझे दर्द दिया तो आई हैव अ राइट कि मैं आपको अब दर्द दूँ। तो रिवेंज बहुत अलग अलग फॉर्म्स में हम लेते, और जो हमने देखा वो था फॉरगिवनेस, कि क्षमा करना, वो भी आज के दिन में उसकी परिभाषा बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, क्योंकि हम समझते एक तो क्षमा करना बहुत मुश्किल लगता, और अगर कर देते हैं तो एहसान जता के क्षमा करते हैं, और जैसे बार बार उस सामने वाले व्यक्ति को याद दिलाएंगे कि मैंने आपको फॉरगिव किया, तो वो भी एक वापस वही नेगेटिव एनर्जी भेजने का एक वो माध्यम बन जाता है। जबकि अगर हमें समझ में आ जाए कि मुझे हर्ट मैंने खुद ने किया है, सामने वाले ने तो जो किया सो किया, लेकिन जो मेंटल पेन है वो मेरी अपनी क्रिएशन है, तो फिर फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट ही पूरा चेंज हो जाता। आपने मुझे हर्ट नहीं किया, मैंने खुद अपने आप को हर्ट किया, तो मुझे आपको नहीं फॉरगिव करना, मुझे अपने आप को फॉरगिव करना है, क्योंकि मैं ये भूल गई थी कि मैंने खुद अपने आप को हर्ट किया, अब मुझे खुद याद आ गया है, तो आई हैव टू फॉरगिव माई सेल्फ फॉर द पेन आई कॉज्ड टू माई सेल्फ। And forgiveness doesn't mean, I have to live in guilt or shame. I forgive means I remind myself कि next time this will not happen. And forgiveness को सही रूप से करने के लिए हमें भूल जाना होगा कि I have to forget the incident. अब कई बार कई लोग कहते हैं कि भूल कैसे सकते हैं, और actually भूलना अर्थात क्या, because it's not कि आपको वो incident भूल गया, वो तो नहीं हो सकता। हमारी लाइफ में जितने भी सारे इंसिडेंट्स होते हैं वो हमें तो याद रहते हैं ना, स्मृति तो है, लेकिन फॉरगेटिंग मतलब कि वो स्मृति अब मुझे दर्द नहीं देगी,
0: वो तकलीफ नहीं होगी, जैसे ही वो इंसिडेंट्स तो याद आ जाएगा कभी भी, लेकिन उस दर्द से हम नहीं गुजरेंगे,
1: अब वो दर्द से नहीं गुजरेंगे। तो पहले क्या होता था, वो स्मृति हमें दर्द देती थी, तो देन आई कैन, इट्स नॉट फॉरगेटिंग द इंसिडेंट but it is forgetting the pain associated with the incident, because some people will say ke, how can I forget the incident, I cannot forget, it's stored there, but I forget the pain associated with the incident, and jab I can forget the pain associated then I've forgiven, kyunki jab tak wo dard yaad hai to forgiveness nahi hogi, kyunki
0: har baar that is what happens na, ki you start looking at the incidents,
1: yeah,
0: एक्चुअली हम जो बात ये कहते हैं कि देखने लग जाओ, दृष्टा बन जाओ,
1: साक्षी हो जाएंगे, तो अब वो दर्द नहीं देगा ना, अब वो है वहां पे लेकिन वो मुझे तकलीफ नहीं दे रहा। पहले ये होता था कि एवरी टाइम मैं उस इंसिडेंट को याद करूं, याद करना भी नहीं पड़ता था, वो बार बार याद आता जाता, बार बार याद आ जाता था और वो बार बार दर्द देता था। अब जितना वो दर्द खत्म हो जाएगा तो एक्चुअली नेचुरली भी वो इंसिडेंट भी याद नहीं आएगा, क्योंकि वो दर्द का मुझे आदत पड़ गई है। एंड यू नो वो दर्द एक स्टिमुलेंट बन गया है कि हर टाइम आता है मेरे अंदर, वो क्रिएट कर देता है। तो वो इंसिडेंट भी बार बार याद आता था, क्योंकि इंसिडेंट याद आना मतलब मुझे दर्द मिलना। अब क्योंकि मुझे वो इंसिडेंट से दर्द मिलना अगर बंद हो जाए तो फिर इंसिडेंट याद आना भी
0: कोशिश करनी पड़ेगी, फिर मुझे कोशिश करनी पड़ेगी, यू नो कि अगर मुझे याद करना है कि अच्छा क्या हुआ था। वेरी ट्रू,
1: इट्स नॉट अबाउट फॉरगेटिंग द इंसिडेंट बट इट इज द प्रैक्टिस ऑफ फॉरगेटिंग द पेन विद द इंसिडेंट। फिर इंसिडेंट अपने आप भूल जाएगा, याद ही नहीं आएगा। कोई याद दिलाए या कभी कोई बात हो तब थोड़ी स्मृति में आएगा, और वो भी आएगा और चला जाएगा। उसका इम्पैक्ट अब मेरे ऊपर खत्म हो चुका है, देन आई एम टोटली लिबरेटेड, आई एम फ्री, कि अब ये व्यक्ति या वो जो सिचुएशन हुई थी मेरे ऊपर अब कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सकती। नहीं तो इतनी पुरानी बातें भी हमें आज दिन तक बहुत दर्द देती हैं,
0: और कितनी बार हम वो पकड़ के बैठे रहते
1: हैं, पकड़ के बैठे रहते हैं, एंड वी फील इट्स द राइट थिंग टू डू, यू नो। सो दीज आर ऑल अगेन बिलीफ सिस्टम्स, जिसकी वजह से हमने चूज किया कि हमारी जीवन दर्द में चलती है। हम चूज करते हैं, हर स्टेप पे हम चूज कर रहे हैं। खुशी इतनी इजीली है लेकिन हम हर टाइम ऑप्शन चूज करते हैं दर्द में रहने का। लेकिन अगर इसको और इजी करना चाहते हैं तो सबसे जो सिंपल बेसिक लॉ वर्क कर रहा है वो है कार्मिक लॉ, कर्म, कि जो कर्म हम करते हैं उसका रिजल्ट हमें मिलना ही मिलना है। अगर इसको हम जानते हैं लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा जीवन में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इसको अगर सही रूप से समझ लें और पकड़ लें और हर स्टेप पर इसकी एप्लीकेशन देखना शुरू कर दें तो हर्ट का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा।
0: वही जैसा आप बोते हो वैसा आप पाते हो, ये हम कब से हर बार यही बात करते हैं,
1: कब से सुनते आए, कब से पढ़ते भी आए, और कहने को कहा जाए हम कहते हैं हम मानते भी हैं इस बात में। एवरी रिलीजन बिलीव्स इन कार्मिक फिलोसफी एंड दे से यस एज यू डू सो यू विल गेट, बट देन व्हेन वी गेट व्हाई डोंट वी रिमेंबर दैट व्हाई आर वी गेटिंग इट, यू नो। इफ आई रिमेंबर दैट व्हाट आई एम गेटिंग इज बिकॉज ऑफ समथिंग दैट आई हैव डन, then where is the question of blaming you or anybody else? I just understand I am getting it.
0: लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हमें मिल रहा होता है तब हमें ये तो याद ही नहीं होता कि हमने क्या किया था। एक और भी बात कि किस चीज का मिल रहा है ये भी नहीं पता होता,
1: को किस चीज का मिल रहा है ये तो कभी पता भी
0: कौन
1: नहीं
0: से कर्म का हमारा मिल रहा है वो
1: ये तो पता नहीं चलेगा, बिकॉज देयर इज नो बोर्ड इन फ्रंट ऑफ मी, एक स्क्रीन नहीं है जो हर टाइम वहां पर यू नो सारा पॉप अप होता रहे, आपने ये किया था उसका आपको ये मिला, आपने ये किया, तो लाइफ विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स इफ दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन एवरी टाइम। क्योंकि हर टाइम अगर आपको आपका पास्ट दिखाई दे बार बार कि आपने ये किया था, आपने ये किया था, तो हमारे लिए उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शायद हम सब ने बहुत कुछ किया हुआ है, यू नो। बट नाउ इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि उससे बाहर निकल कर अब ध्यान देना, और अब ध्यान हम तब दे सकेंगे जब हमें याद रहेगा कि अब जो किया सो किया, अब और नहीं करना। लेकिन वो जो किया अगर वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है तो वो खत्म तो होना आउट ऑफ द क्वेश्चन है, वो और ही अक्यूमुलेट होता जाता है। तो एक सिंपल लॉ हम सारा दिन में याद रखें कि जो हम बाहर भेजते हैं वो हमारे पास वापस आने वाला है, और भेजना मतलब सिर्फ फिजिकल कर्म नहीं, राइट फ्रॉम द लेवल ऑफ थॉट, बिकॉज इट्स एनर्जी। लॉ ऑफ कर्म किस पर वर्क कर रहा है? एनर्जी पर वर्क कर रहा है। वो टेबल, कुर्सी, गाड़ी, शरीर इस पर वर्क नहीं कर रहा है, वो एनर्जी पर वर्क कर रहा है। कि एनर्जी वाइब्रेशंस हैं, हम जो एनर्जी बाहर ट्रांसमिट करते हैं वो वाइब्रेशंस जाती हैं, दे हिट द पीपल टू होम दे आर टारगेटेड एंड देन दे कम बैक। अब वो कब वापस आएंगे? इट वेरीज, कई बार इंस्टेंट इमिडिएटली, कई बार कुछ समय के बाद, और कई बार ये कॉस्ट्यूम चेंज करने के बाद.
0: ये जो जन्मों की हम बात करते हैं कि इस जन्म का नहीं है, और लेकिन ये बहुत एक्सेप्टेंस आई थिंक सबसे मुश्किल है, लेकिन एक बार जब एक्सेप्टेंस हो जाएगी तो शायद आसान हो जाए लाइफ.
1: बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि एक्सेप्ट करना क्यों मुश्किल है जबकि मालूम है, बिलीव भी करते हैं. यू नो हार्डली यू विल गेट एनीबडी हु विल से आई डोंट बिलीव. इनफैक्ट इतने लोग हैं जो आत्मा में नहीं समझ पाते, परमात्मा को नहीं बिलीव करते, लेकिन कर्म को मानेंगे. कि मैं और कुछ नहीं मानता, लेकिन मैं मानता हूँ कर्म.
0: और अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्मों का
1: दिस इज समथिंग यूनिवर्सल, एवरीवन विल एक्सेप्ट. बट इट्स नॉट जस्ट हियर, इट्स नॉट कि आप इंटेलेक्चुअली उसको एक्सेप्ट कर ले. आपके पास फिर वो एक नॉलेज का वेपन है. यू नो ज्ञान एक शस्त्र होता है जिसको परिस्थिति आने पर यूज करना है. तो ये एक शस्त्र, हमें पता है कि जो कुछ मेरे पास आ रहा है, हम किस बात पर ध्यान रखते कि मुझे अब कुछ नहीं करना है गलत. वो भी अनकॉन्शियसली फिर भी बहुत सारी बातें गलत हो जाती, लेकिन हम कहते हैं मैं कुछ नहीं गलत करूंगा तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा. लेकिन जो अगर मेरे साथ हो रहा है, वो अगर मुझे याद आए कि वो भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ भेजा था. बिकॉज वंस आई अंडरस्टैंड द एनर्जी फ्लो कि अगर ऐसे कुछ आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो ऐसे गया था. यू नो हमें वो वाला याद नहीं है जब हमने ऐसे भेजा था, हमें सिर्फ ये दिखाई दे रहा कि ऐसे आ रहा है. एंड देन वी से क्यों आ रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. एंड यू नो कई बार हम कहते कि मैंने तो इस जीवन में कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, तो फिर मेरे साथ सब कुछ गलत क्यों हो रहा है. मुझे इसको यूज करना पड़ेगा. जनरली हम क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि एक तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है कि मेरा हर एक थॉट वर्ड एक्शन मेरी जिम्मेवारी है. यू नो जहां मैंने समझ में आ गया कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, इसका मतलब जिम्मेवारी
0: मेरी है.
1: लेकिन मेरे लिए ये कहना ज्यादा इजी है कि इसकी जिम्मेवारी आपकी.
0: एक्चुअली ये बहुत मुश्किल आ रही है. हमने पूरा इस श्रृंखला में जब हमने बात ये की है कि चाहे वो एंगर है, चाहे वो हर्ट हो रहा है, चाहे वो बाकी सारी चीज़ें हैं, जिम्मेदार मैं हूँ. क्योंकि जहाँ जिम्मेदार मैं हो जाती हूँ, जहाँ रिस्पॉन्सिबल मैं हो जाती हूँ, तो मैं चेंज कर सकती हूँ उस चीज़ को.
1: लेकिन जिम्मेवारी एक्सेप्ट करना, यू नो इट्स बिग टाइम वर्क. बिकॉज अगर मैंने जिम्मेवारी एक्सेप्ट की, मतलब मुझे अब अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा. अगर मैंने जिम्मेवारी एक्सेप्ट की, तो मैंने ये भी एक्सेप्ट किया कि गलती मेरी थी. कितना इजी है बोलना कि गलती आपकी थी, आपकी थी, इनकी थी, इसकी वजह से थी. लेकिन ये स्वीकार करना कि गलती मेरी थी, थोड़ा सा बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता. तो सबसे पहला रीजन हम क्यों कार्मिक फिलोसफी को नहीं यूज करते हैं सारा दिन में, क्योंकि हम जिम्मेवारी लेने के लिए रेडी नहीं है कि जो कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से. भले इस जन्म में मैंने नहीं किया हो, लेकिन अब तो जन्म का कॉन्सेप्ट ही समझ में आ गया ना, कि जन्म मतलब क्या, सिर्फ कॉस्ट्यूम चेंज हो रहा है. मैं आत्मा तो अमर हूँ, तो मैंने कभी ना कभी तो ये किया था, तो भी जिम्मेवारी मेरी हो जाती. दूसरा, कहीं ना कहीं ये भी हो जाता कि अंदर एक डर हमेशा बना रहता है कि ये जो मैं गलत कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट
0: मिलना है मुझे.
1: क्योंकि अगर मुझे कार्मिक फिलोसफी को पकड़ कर चलना है, तो ये मेरे ऊपर हमेशा एक अटेंशन या एक हावी रहेगी, ये बात कि ये जो तुम कर रहे हो वे तुम्हें याद है कि इसका रिजल्ट मिलने वाला है. और जो कर रहे हो मतलब सिर्फ गलत काम नहीं,
0: थॉट्स.
1: If I remember, then every time I create a wrong thought, a negative thought, that bell will ring inside, which will say, do you know what you're doing? आपको पता है आप क्या कर रहे हो? ये energy जो आप create कर रहे हो, ये आपके पास वापस आने वाली है. And I don't like that. क्योंकि that means कि मुझे पूरा time attention में चलना पड़ेगा कि not to create any negative, waste, toxic thoughts, because I have to take responsibility. जो create किया वो मेरे पास वापस आएगा. तो I conveniently, ज्ञान होते हुए भी, I keep it aside. And I continue with my, जो सोचना है, जो करना है, वो करते जाओ. और तीसरा, एक constant ये भी attention रहेगा कि जो कुछ मेरे पास आ रहा है, वो result मेरा है तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो स्वीकार करना बहुत इजी हो जाएगा। एक दिन के लिए, अगेन वी हैव टू ट्राई इट आउट, एक दिन के लिए करके देखें। सारा दिन में चल रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत कुछ हमारे साथ होता है, बहुत लोग बहुत कुछ बोल कर जाते हैं। जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ, ये जो कुछ आपको मिल रहा है ये आपका ही किए हुए का रिजल्ट है। वेरी इजी। हर थॉट जो आप क्रिएट कर रहे हैं, इट्स एनर्जी, वो वायुमंडल में जा रही है और वो वापस मेरे पास आएगी। और पहली बात तो वो है कि जब वो क्रिएट करते हैं तभी मुझे मिल जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि कैसे पता चलेगा कि ये अभी चुक तो हो रहा है, यू नो, ये मैंने ये कर्म किया था, ये उसका रिजल्ट मिल रहा है, या ये मैं एक नया कर्म कर रहा हूँ। नाउ देयर इज नो वे, there is no way of knowing this, but if I remain stable inside, mujhe hamesha ye smriti rehti ki har cheez jo hum kar rahe hain, har karam, right from thought level, ye ek cause bhi hai to ye ek effect bhi hai. Har thought ek cause bhi hai aur ye ek effect bhi hai. Kyunki मेरे पास अगेन कोई चार्ट नहीं है जो बताएगा कि ये पहले वाले का रिजल्ट है या ये अभी नया क्रिएट हो रहा है। तो मुझे दोनों चीज़ों की स्मृति रखते हुए अटेंशन रखनी पड़ेगी। अगर मैं किसी बात से हर्ट हो रही हूँ तो मुझे अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि ये एक इफेक्ट है, कि मैंने कुछ किया था उसका रिजल्ट मुझे अभी ये मिल रहा है। एट द सेम टाइम ये थॉट एक कॉज भी है कि अब जो ये मैं थॉट क्रिएट कर रही हूँ इसका इफेक्ट भी मुझे
0: ये मिलेगा, क्योंकि मैं हर्ट हो रही हूँ तो एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो। ओहो, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी
1: केयरफुल, दैट्स व्हाई। सो यू नो, डोंट, बिकॉज़ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज्ड इन दिस कि अभी मैं इसको कैसे लूँ, कि ये अब मेरा चुक तो हो रहा है या नया क्रिएट हो रहा है। दोनों चीजें हो रही है। आई हैव टू रिमेम्बर एवरी थॉट, हर थॉट, और ये जितनी बार हम अपने आप को इसका कॉन्शियसली याद दिलाएंगे ये समझ में आता जाएगा। मे बी एकदम फर्स्ट टाइम इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन एवरी थॉट एक कॉज भी है और एक इफेक्ट भी है। वो एक एनर्जी है जो मुझे मिली है क्योंकि मैंने दी थी, एंड येट एट द सेम टाइम मैं थॉट अभी क्रिएट कर रही हूँ तो वो एनर्जी में ट्रांसमिट भी कर रहे हैं, तो वो एनर्जी हमें थॉट
0: क्या क्रिएट कर रही हूँ उस पे डिपेंड करेगा। आई रिमेम्बर अनदर लेडी हु हैड आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि उन्हें किसी से पैसे लेने थे और उन्होंने पैसे ने मना कर दिया। उन्होंने बहुत अच्छी दोस्त थी उनके, उन्होंने पैसे मना कर दिया कि नहीं हम दे चुके हैं या कुछ था। तो शी केम टू मी, आई वॉज वॉकिंग एंड शी सेड कि मुझे एक बात का जवाब दो कि क्या ये मेरा कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है या ये नया अकाउंट क्रिएट हुआ है, अब उनको चुकता करना पड़ेगा फिर आगे। मेरा उनका तो आप भूल जाओ, लेकिन मतलब मुझे ये लगा कि आपसे मैं पूछती हूँ कि इसका जवाब क्या होगा। मेरा जवाब ये था कि आपका हो सकता है जो भी था अकाउंट वो सेटल हो गया, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि अगर आप इरिटेट होती रही क्योंकि ये थॉट आपके साथ है, या तो हम ये समझ लें कि वो अकाउंट सेटल हो गया तो देन फिनिश हो गया,
1: एग्जैक्टली
0: यू नो, फॉरगेट हो गया कि खत्म हो गया बस। लेकिन अगर वो साथ साथ रहा कि उसने मुझे पैसे ऐसे नहीं दिए, मेरे देने हैं, तो एक नया अकाउंट क्रिएट हो,
1: तो दोनों चीजें हो रही है ना साथ साथ, सेटल भी हो रहा है तो हमें समझ में आता है कि ये इफेक्ट है, लेकिन एक कॉज भी है क्योंकि नेक्स्ट क्रिएट हो रहा है। उन्होंने नहीं दिया वापस, सेटल, लेकिन मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, क्रिएशन। अब इस समझ में लेना, पक्का कर लेना अपने साथ कि अब जो मैं डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी क्रिएट कर रही हूँ वो वापस आएगी।
0: तो अच्छा, एक बार क्रिएट हो गई, दो बार, हम एक्चुअली कंटिन्यूस क्रिएट करते रहते हैं, तो दो बार क्रिएट हो गई तो चलो तैयार हो जाएंगे हम, लेकिन कहीं जैसे ही समझ में आए, आई थिंक वी शुड स्टॉप दैट।
1: इसीलिए कार्मिक फिलोसफी, हमारी बाकी सारे जो हमने रिस्पॉन्सेज देखे हर्ट को, वो सामने उसकी कोई उसकी आवश्यकता नहीं होगी अगर सिर्फ ये याद रहे कि जो हो रहा है वो मेरी ही करने का रिजल्ट है। फिर आप देखना, चलते फिरते सारा दिन कहीं ठोकर लग जाती है, कहीं गाड़ी से सर टकरा जाता है, कहीं गाड़ी ही किसी के साथ जोर से लग जाती है तो गाड़ी को बहुत जोर से लग जाता है। कितनी छोटी छोटी बातें होती है जो हम देखते हैं कि पहले मुझे घंटा घंटा वो बात डिस्टर्ब करती थी, यू नो, कल ही मेरे साथ हुआ कि मेरी गाड़ी को जोर से लग गया, बड़ा सारा, मतलब बहुत बड़ा डेंट आ गया उसके अंदर, बहुत जबरदस्त। मे बी अर्लियर आई वुड टेक अ कपल ऑफ आवर्स to forget that incident, you know, and because it was a big one, you know, kafi bada hai. So and it's a new car and it's a big one. So pehle baar baar main shayad usko dekhti rahu, acha itna bada, meri galti thi, ye tha, wo tha. Matlab it's okay, understanding, realization ki theek hai aage se kaise chalana hai. Lekin ek hai wo ho gaya, तो वो एक इफेक्ट खत्म हुआ. अब बार बार सोचना उसके बारे में क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, ये हो गया. दिस इज क्रिएटिंग न्यू थॉट्स. अब नेगेटिव एनर्जी तो ना क्रिएट करो, और वो तो सेटल हो गया. अब नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करना मतलब, और अभी तो भोगना हो ही रही है थोड़ी सी, अब उसकी भोगना तो और बहुत ज्यादा,
0: और वो आएगी, वो वापस
1: आएगी. तो ये अंडरस्टैंडिंग से चलने से हमें आधा मिनट लगता है बात को फिनिश करने.
0: इनफैक्ट यहाँ एक और मैं आपसे बात शेयर करना चाहूंगी कि ज्यादातर लोगों के साथ जब एंगर, जब हम इस प्रोसेस में है कि गुस्सा नहीं करना है और गुस्सा कर देते हैं, उसके बाद अब उसके साथ फिर रहते हैं कि उफ गुस्सा क्यों किया, गुस्सा क्यों किया. सो आई थिंक अगेन दैट इज क्रिएटिंग मोर, यू नो, नेगेटिव.
1: दैट्स व्हाई जितना जल्दी हो उसको स्टॉप करना पड़ता है, क्योंकि हमें रियलाइज करना होगा कि अब जो क्रिएट कर रही हूँ वो भी वापस आएगा. तो पहला वाला जो वापस आया वो पसंद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी फुल स्टॉप लगा दो, नहीं तो अब जो क्रिएट कर रहे हो वो भी थोड़े टाइम के बाद फिर वापस आएगा. लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मेरा बिलीफ सिस्टम है कि लोग मुझे हर्ट करते हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है. ये इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि बार बार सुनने और समझने के बावजूद हम उसको क्रिएट करते हैं. मुझे औरों ने हर्ट किया, उन्होंने जो ये बात की वो मुझे अच्छी नहीं लगी. अब ये कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस में फिट हुआ हुआ है, और सबकॉन्शियस में बिलीफ्स के फॉर्म में ये पास्ट से हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ये बिल. अब क्या होगा, एवरी टाइम मेरी नेचर बन जाएगी रिएक्टिव बनने की, आपकी वजह से ये हुआ.
0: क्यों, मैं कहूंगी मेरा नेचुरल रिएक्शन,
1: मेरा नेचुरल. क्यों नेचुरल रिएक्शन है, क्योंकि वो यहाँ पर रिकॉर्डेड है. तो एवरी टाइम समबडी सेज समथिंग टू मी, आपकी वजह से हुआ, आपकी ना. एवरी टाइम आई से आपकी वजह से हुआ, वो जो रिकॉर्डिंग है वो और भी स्ट्रॉन्ग, और भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी. अब क्या होगा, एवरी टाइम मैं आपसे मिलती हूँ तो मेरा वो जो इम्प्रेशन रिकॉर्ड किया हुआ है वो वापस स्क्रीन पर पॉप अप हो जाता है, और मेरा बिहेवियर उसी तरह आपके साथ होता है. आपकी वजह से मुझे तकलीफ हुई, आपकी वजह से मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ दर्द हुआ. तो मेरा जो रिलेशनशिप है आपके साथ वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म होने लग जाता है, और मेरा जो संस्कार है वो स्ट्रांग होने लग जाता है.
0: हाँ, हर कोई जो दूसरा है. हाँ.
1: अब क्या होगा, आप जब मिलेंगे तब तो वो इमर्ज हो ही जाएगा. धीरे धीरे वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपसे जुड़ा हुआ भी कोई मिलेगा जो आपसे रिलेटेड है, आपके फ्रेंड्स है, उनको देख कर भी मेरे को आपकी याद आएगी. फिर वो संस्कार इमर्ज हो जाएगा, और थोड़ा करते करते वो इतना पक्का हो जाएगा कि मैं जिसको भी मिलूं मेरा ये संस्कार एकदम स्ट्रांग हो जाएगा इनकी वजह से. तो उससे क्या होगा, मेरे रिलेशनशिप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सभी के साथ फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अपना स्ट्रांग ये एनर्जी बार बार जो ट्रांसमिट की है वो मेरे पास वापस आ रही है. मैं बार बार ट्रांसमिट कर रही हूँ आपकी वजह से हुआ, फिर आपसे जो भी मुझे मिलता है मैं फिर उसको रीअफर्म करती हूँ आपकी वजह से हुआ. सो एवरी टाइम आई क्रिएट दैट एनर्जी, मतलब कई बार हम सोचें कि इसका रिजल्ट कब मिलेगा, जो हम एनर्जी क्रिएट करते, एक रिजल्ट तो उसी टाइम मिलता है, क्योंकि जैसे ही मैंने ये थॉट क्रिएट की आपकी वजह से ही हो रहा है, दर्द मुझे होता है, तो इंस्टेंट रिजल्ट तो मुझे उसी टाइम मिल जाता है. ये इंस्टेंट कर्मा है कि मैंने जैसे ही थॉट क्रिएट किया, गुस्से का थॉट क्रिएट किया कोई भी, उसका दर्द सबसे पहले
0: वक्त
1: मुझे मिलता है. तो जब आपको देने के लिए वो पहले मेरे से क्रॉस होता है तो वो पहले मुझे मिलता है, तो पहला रिजल्ट तो मुझे तभी मिल गया, फिर वो आप तक गया, आपसे फिर आएगा, तो अब क्या होगा, दो बार मिला. तो कितना नुकसान हम सारा दिन में कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं हमें रोक के अपने आप को, संस्कार को चेंज करना पड़ेगा. कैसे, बिलीफ सिस्टम को चेंज करने से. कई बार संस्कार कईयों का होता है चिंता करने का,
0: बहुत ज्यादा,
1: और उसको बहुत प्यार से कहते हैं ये तो कंसर्न है, ये तो लव है. लेकिन वरी बार बार ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए. क्यों, क्योंकि पास्ट के कुछ अनुभव रिकॉर्ड किए हुए हैं, और उस पास्ट के हिसाब से फ्यूचर को देखना शुरू करते हैं कि पास्ट में हुआ था मतलब फ्यूचर में भी हो गए. तो क्या होगा, फ्यूचर कुछ नया बनता ही नहीं है, क्योंकि पास्ट की हर्ट फ्यूचर पर प्रोजेक्ट होती जाती है, नहीं मेरे साथ तो बुरा ही होगा, नहीं मेरे बच्चे तो टाइम पे नहीं आए मतलब कुछ गलत ही हुआ है, नहीं आज तो कुछ, तो एवरी टाइम दैट वरी का जो संस्कार है चिंता का
0: वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है,
1: तो वो बार बार इमेज सामने
0: और इनफैक्ट अमेजिंग थिंग इज कि चिंता को हम इतना नेचुरल मानते हैं, उसे हम मानते ही नहीं कि वो कोई प्रॉब्लम है या कहीं ना कहीं हमें परेशान कर रही है।
1: अब हमें उसको रोक कर कट करना पड़ेगा कि एफर्ट करना पड़ेगा अपने ऊपर कि हर चीज जो मुझे समझ में आ रही है गलत होने वाली है वो नहीं, एवरी टाइम सेइंग द वर्ल्ड इज बैड, द वर्ल्ड इज लाइक दिस, लाइफ इज मिजरेबल, नो चेंज, कॉन्शियसली अपने थॉट्स को शिफ्ट करके लाइफ इज ब्यूटिफुल, लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू क्रिएट व्हाटएवर आई वांट टू क्रिएट, आई एम क्रिएटिंग पेन, it's my choice,
0: so let's create happiness, let's create love. That's actually the I think the underlined statement of the day. Sister Shivani, aaj ek bahut hi different aspect ko humne liya, lekin aisa aspect jisko hum har roz sun rahe the, har roz mante the, lekin samajh mein hi nahi aa pata tha ki kis karmic philosophy ko hum implement kaise karenge isi karmic philosophy ko. Aaj ki puri baat cheet ke liye aapka bahut bahut dhanyawad. हमने बात की थी रिवेंज की, हमने बात की थी पनिशमेंट की, रिफॉर्म की, फॉरगिवनेस की और फॉरगेटफुलनेस की, लेकिन अगर हम कार्मिक फिलॉसफी को मानते हैं, ये मानते हैं कि अगर मैं हर्ट हो रहा हूँ, जो हुआ जिसने हर्ट किया वो तो एक अलग बात हो जाती है, अभी मेरा हर्ट होना या मुझे गुस्सा आना भी आगे इसका भी मुझे अकाउंट सेटल करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये थॉट मुझे रोक सकता है उस पूरी पेन में जाने के लिए. एंड लेट्स क्रिएट हैप्पीनेस, लेट्स क्रिएट लव. आज इसी बात पर आपसे लेते हैं विदा. अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका हर बार की तरह हम स्वागत करते हैं. आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर है 9999344555, 9999344666, 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. आपको बता दें कि आपके बहुत सारे ईमेल्स और फ़ोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं, बहुत से ऐसे सवाल हैं जिन्हें हम अपनी आने वाली कड़ी में शामिल करेंगे और मिलकर जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे. अब दीजिए इजाज़त, ओम शांति.

दबाव और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए।

0: फ्लाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं। क्योंकि अब जब हम वाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: एक सौ 107.8 FM रेडियो मधुबन पर आप सुन रहे हैं यशस्वी भारत कार्यक्रम। और आज के हमारे गेस्ट का हम स्वागत करेंगे। सबसे पहले यशस्वी भारत के इस खास मेहमान का स्वागत इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि ये वैसे तो खास है ही, लेकिन इन्होंने अपनी खासियत के द्वारा एक बहुत बड़े समाज के उस वर्ग का जीना आसान किया है जिनके प्रति लोगों की कई भ्रांतियां होती हैं। अक्षय भटनागर एक ऐसा नाम है जिसने अपने नाम का यथार्थ परिचय लोगों को दिया है। और अक्षय भटनागर जी के साथ उनकी माता जी प्रतिभा भटनागर जी भी आज हमारे साथ हैं। आप दोनों का हम हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार अक्षय जी, नमस्कार प्रतिभा जी।
4: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
3: प्रतिभा जी आप कैसे हैं?
4: मैं बहुत अच्छी हूँ।
3: तो हमारा यशस्वी भारत कार्यक्रम बड़ा खास है क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए हम हमारे श्रोताओं तक उन लोगों को पहुंचाते हैं, उन लोगों की कहानियां पहुंचाते हैं जो कि कुछ भी करके किसी भी एक फील्ड में, किसी भी एक एस्पेक्ट में जीवन का कुछ करके एक उदाहरण तैयार किया है। और वो इतने उदाहरणीय बने हैं कि भारत सरकार ने राष्ट्रपति सम्मान द्वारा उनको सम्मानित किया है। तो हमारे अक्षय भटनागर जी जो है वो न केवल राजस्थान का गौरव है लेकिन साथ ही साथ भारत में भी उन्होंने अपना यश फैलाया है। आपने खेलों के द्वारा एक विशेष व्यक्तित्व है, आप एक स्पेशल चाइल्ड होने के बावजूद भी आपने खेल के द्वारा अपना नाम, अपने परिवार का नाम और राजस्थान का नाम आगे बढ़ाया है, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय जी आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी फेवरेट हॉबीज क्या है, आपको क्या क्या करना पसंद है?
5: चेस खेलना पसंद है।
3: अच्छा, और कब से खेल रहे हैं आप चेस?
5: 2 साल से। हाँ, तो चेस ही खेलता हूँ सिर्फ।
3: और पहले क्या क्या खेलते थे?
5: पहले शॉटपुट खेलता था, जेवलियन, डिस्कस।
3: और ये सब खेलने में आपका रुचि कैसे हुआ? लोग तो ज्यादातर क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, तो आपकी रुचि जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, शॉटपुट थ्रो, इन सब में कैसे आई?
5: सही,
3: आपको किसने बताया कि ये खेल बहुत अच्छा होता है, ये खेलना चाहिए? आपके माता पिता ने बताया?
5: हाँ।
3: तो दोस्तों अक्षय जी के साथ उनकी माता प्रतिभा जी भी हमारे बीच में है। आइए सुनते हैं उनसे कि अक्षय जी की कहानी क्या रही है अब तक की। प्रतिभा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने न केवल अक्षय जी को अक्षय बनाया लेकिन तमाम अक्षय जो आज भारत में है उन सब तक आपने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है अपने बेटे के जरिए कि कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और जहां उम्मीद की रोशनी है वहां पर जरूर उजाला होता है। और उस उजाले से फिर सिर्फ उस वे एक व्यक्ति, उस एक परिवार का नहीं लेकिन समाज का दिग्दिशा बदल सकता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो रेडियो मधुबन के पूरे परिवार की तरफ से।
4: थैंक यू सो मच जो आप हमें ये अवसर दिया।
3: प्रतिभा जी आपसे जानना चाहेंगे आपकी कहानी साथ ही साथ अक्षय जी की कहानी, क्योंकि ये कहानी तो जुड़ी हुई लगती है बिल्कुल, इसलिए अगर आप सुनाएं ये कहानी तो बहुत अच्छा होगा।
4: बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि हमारा जीवन तो इसी के आसपास ही गुजरता है। 92 में इसका बर्थ हुआ था और 2-3 साल तक तो हमें ज्यादा कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ था, लेकिन हाँ स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट इसका नहीं हुआ था जैसे कि दूसरे नॉर्मल बच्चों का होता है। बोलना नहीं सीख पाता था, अपनी बात नहीं बता पाता था, लोगों से मिक्सअप नहीं होता था, हम अगर कोई पूछे तो जवाब नहीं देता था। तो हमें लगा कि क्या सुनाई नहीं देता क्या इसको जो ये जवाब नहीं देता। फिर हम इसे एक बार हॉस्पिटल भी ले गए, वहां पे इसका ऑडियोमेट्री टेस्ट हुआ, तब पता चला कि सुनाई देने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वहाँ पे एक स्पेशल एजुकेटर थी जो स्पेशल स्कूल में भी जाया करती थी, उन्होंने बताया कि इससे सुनाई देने की समस्या नहीं है बल्कि इसे ऑटिज्म है। ये 96 की बात है, 96 में आप खुद भी समझ सकते हैं कि ऑटिज्म को लेके क्या जानकारी थी, जब आज 2024 में ही जानकारी बहुत ही कम है, या तो जिनके बच्चे ऐसे हैं उन्हें पता है, या फिर जो इस फील्ड में काम करते हैं या डॉक्टर्स, इवन सारे डॉक्टर्स तक को आज भी नहीं पता ऑटिज्म के बारे में इन डेप्थ नॉलेज।
3: आई थिंक नॉलेज से भी ज्यादा ज्ञान होना एक चीज है, लेकिन समझ होना उस चीज के बारे में ये बहुत बड़ी चीज होती है। कईयों को पता भी होगा ऑटिज्म क्या है, उसके मरीज या जो लोग उससे ग्रसित हैं वो कैसे होते हैं, ये सब पता होगा मोटा मोटी, लेकिन वास्तव में उसको समझ पाना ये थोड़ा मुश्किल होता है। और मैं समझता हूँ आपके परिवार के लिए भी ये मुश्किल रहा होगा।
4: बहुत मुश्किल, क्योंकि देखिए ये सच्चाई है कि कोई भी पेरेंट्स ऐसा बच्चे की कामना नहीं करते, ना कोई ऐसा प्रे करते कि हमें कोई चैलेंज्ड बच्चा दीजिए। तो ये हर पेरेंट्स के लिए बहुत ही डिसहार्टनिंग होता है कि किस तरीके से हमारे साथ मतलब ऐसे बच्चे का जन्म हुआ, और उनके लिए ये ज्यादा तकलीफ देह नहीं होता कि हम ऐसे बच्चे को पालेंगे, बल्कि तकलीफ सबसे ज्यादा इस बात की होती कि ये बच्चा खुद कितने संघर्षों के साथ अपना जीवन निकालेगा, ये सबसे बड़ा है। जब तक हम है तब तक तो ठीक है, हम बहुत फूलों की तरह से इन्हें रखेंगे, लेकिन दिक्कतें जो इस समाज में आती है इन बच्चों को, वो एक कड़वी सच्चाई है कि इनकी लाइफ में अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है तो वो इस समाज की जागरूकता का अभाव है। अगर समाज जागरूक हो, संवेदनशील हो, तो शायद इतनी तकलीफें ना हो इनके जीवन में भी और हमारे जैसे अभिभावकों के जीवन में भी।
3: और विशेष करके भारत जैसे देश में जहां पर इस प्रकार के केसेस को समझ पाना हमारे समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि इस विषय में जानकारी का अभाव है। इस विषय में जानकारी का अभाव तो एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के द्वारा या हमारे नीतियों में भी कुछ ऑटिज्म से रिलेटेड पेशेंट्स के लिए स्पेशल प्रावधान हो, ऐसा भी बहुत कम देखा जाता है। तो जब 92 में अक्षय जी का जन्म हुआ और जब आपको कुछ वर्षों में पता चला कि ये एक, मैं कहूंगा समस्या नहीं कह सकते अब इसको, क्योंकि ये एक प्रकार का चुनौती है, क्योंकि समस्या जो है वो हमें कुछ, वो हमारे प्रॉब्लम्स की वजह से आती है, लेकिन चैलेंजेस जो है वो हमको और ऊंचा उठा सकती है, हमें और पक्का बना सकती है। तो इस चुनौती का फिर सामना कैसे किया, कैसे अक्षय जी की परवरिश में आपने क्या क्या चीजें निहित की जिसकी वजह से आज अक्षय जी आज इतने आगे बढ़ पाए हैं?
4: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऑटिज्म को लेकर के जो लोगों का समझ है उसका दायरा बहुत कम है इवन आज भी, और सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने यही था 96 में। हम खुद जब ये शब्द हमने सुना तो मेरे लिए शब्द एकदम अनजाना था कि इसका मतलब क्या होता है, और जब मैंने डिक्शनरी में इस वर्ड का मीनिंग पढ़ा आकर के घर पे, तो उसमें था कि अपनी मनमानी करने वाला, डिक्शनरी में यही कुछ था। तो मैंने कहा इससे क्या मतलब निकलता है, लोग बाग होते हैं जो अपनी मनमानी करते हैं,
3: हर कोई करता है अपनी मन की।
4: हाँ, फिर उन्होंने मुझे जो स्पीच थेरेपिस्ट थी उन्होंने एक किताब दी थी मुझे कि आप ये घर जाके पढ़िएगा। मैं वो पढ़ रही थी तो उसके अंदर एक एक लाइन जैसे जैसे मैं पढ़ती जा रही थी लग रहा था हाँ अच्छा ऐसा ही तो करता है, हाँ ऐसी जिद करना, अपनी बात नहीं समझा पाना, बहुत ज्यादा टेंशन एंग्जाइटी। फिर एक जगह मैंने पढ़ा एक दो पेज के बाद इट इज नॉट क्यूरेबल, आई वॉज टोटली शैटर्ड। आप समझ सकते हैं कि कोई भी अपने बच्चे के मामले में ये शब्द नहीं सुनना चाहता। तो मेरी भी वही एक सामान्य जो इंसान होता है उसी की तरह से मेरी भी प्रतिक्रिया थी। फिर लगा कि ऐसे तो कैसे चलेगा, और आगे पढ़ो देखते हैं कुछ और निकलता है क्या। जब उस मतलब बहुत ज्यादा एकदम फट पड़ी थी मैं, लेकिन फिर आगे हिम्मत जुटाई और आगे पढ़ना शुरू किया, तो कुछ लाइनों बाद ही लिखा था बट इट इज मैनेजेबल। तो लगा अच्छा मैनेज तो हो सकता है, तो थोड़ी सी उम्मीद जगी। हालांकि ये जो दौर था और ये वाला जो मूवमेंट था ये बहुत भूल नहीं सकती मैं उस मूवमेंट को, लेकिन अब कब तक हम इसी वाले सिचुएशन में रहते। दो चार दिन बाद अपने आप को जब संभाला, क्योंकि मैं देख रही थी कि मेरे डिप्रेस होने या रोने धोने से घर का वातावरण भी एकदम डिसअपॉइंटमेंट हो चुका है वहां पे,
3: और मुझे लगता है वो प्रभाव अक्षय जी पर भी पड़ता होगा ना। क्योंकि वो दिल से तो आपसे जुड़े हुए हैं और वो भावनाओं को समझ सकते हैं कि वो तो साधारण किसी भी व्यक्ति के साथ होता है कि अगर उसके अभिभावक स्पेशली उसकी माँ जब उदास होती है उस व्यक्ति पे, उस बच्चे पर उसका असर अक्सर दिखता है। माँ अगर रोती है तो बच्चे के आंख से आंसू अपने आप ही आ जाते हैं, माँ उदास है तो बच्चे बच्चा भी उदास हो ही जाता है, तो माँ का तो कनेक्शन डायरेक्टली दिखता है बच्चे के साथ। तो आपको इस वजह से अपने को उभारना भी था इस समस्या से।
4: बिल्कुल उसी
3: तो
4: टाइम
3: कौन
4: दो
3: से
4: चार
3: ऐसे
4: दिन बाद।
3: टिप्स, जी कौन से ऐसे टिप्स आपने अपनाए अपने लिए, जो कि आज मान लीजिए किसी माँ को जो सुन रही है, या कोई पिता जो सुन रहा है इस एपिसोड को, जब उसके सामने कभी ऐसी परिस्थिति आती है, तो आपने क्या क्या चीजें की जो उनके लिए मददगार हो सकती है उनके जर्नी में?
4: सबसे पहला कि स्वीकार करो कि हाँ आपके बच्चे के साथ एक चुनौती है, क्योंकि अगर हम डिनाइल मोड पे आएंगे तो हम वो प्रयास नहीं करना चाहेंगे जो हमें करने चाहिए, और हम जितना देर लगाएंगे उतना ही बच्चे की परिस्थितियां बद से बदतर होती जाएंगी। तो स्वीकार करना सबसे बड़ी बात है कि हाँ हमारे बच्चे के साथ कोई चैलेंज है, अब हमें इसके ऊपर काम करना है। दूसरी चीज, हम खुद जाने कि ये दिक्कत क्या है और इसके ऐसा क्यों होता है और हम क्या कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, तभी आपकी परिस्थितियां बदलेगी। अगर सिर्फ अपनी किस्मत को या भगवान को दोष देना शुरू किया तो उसका कोई हल नहीं निकलने वाला। और तीसरा ये है कि जो भी परिस्थितियां हैं तो कुछ ऐसे लोगों को संपर्क करिए या मिलिए जो कि इस दौर से गुजर चुके हो या उन्हें कुछ नॉलेज हो। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ कोई ऐसा नहीं मिला जो इस दौर से गुजर चुका हो, क्योंकि 96 की बात है, तब तक ज्यादा अवेयरनेस थी नहीं, और उस टाइम तक अगर कानून की भी बात करें तो कोई ऐसा कानून था ही नहीं इन बच्चों को लेकर के जो था, तो हमें वो तो कोई नहीं मिला। लेकिन हाँ इस फील्ड में काम करने वाले लोग जरूर हमें मिले और जिन्होंने हमें गाइड किया कि ठीक है बच्चे के साथ जो भी है लेकिन वो स्पेशली एबल्ड है, यानी उसके साथ कुछ खासियतें भी हैं जो शायद आप और हम में
3: जी
4: नहीं
3: जी
4: होती, तो उन खासियतों को ही पता लगा करके और उस बच्चे को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ
3: जी
4: से मैं मानती हूँ कि पेरेंट्स अगर इस चीज को मान ले और इस तरीके से आगे बढ़े तो मान के चलिए उनके बच्चे भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं और लोगों के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं।
3: ये बहुत जबरदस्त तीन बातें आपने बताई। एक तो सत्य को स्वीकार करना, जितनी देर तक हम सत्य को नकारेंगे, सत्य का जो बल है वो हमको बलवान नहीं बनाएगा। हम किसी एक सपने के सहारे बैठे रहेंगे और वो सपना हमें बल नहीं देता, सत्य हमें बल देता है। तो स्वीकार करने की शक्ति। दूसरा जो आपने बताया कि खुद को ज्ञान ज्ञान से भरना या इंफॉर्मेशन से भरना कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, और तीसरी बात ज्ञानियों से अनुभवियों से मिलना। ये तीन चीजें जो आपने बताई, मैं समझता हूँ ये केवल ऑटिज्म के क्षेत्र में नहीं, किसी भी क्षेत्र में ये काम कर सकती हैं। आपने जैसे
4: बिल्कुल
3: जीवन का एक मंत्र दे दिया। मैं यहाँ जानना
4: बिल्कुल
3: चाहूंगा कि आपने उस दौरान अक्षय जी में कौन सी वो चीजें देखी जो कि उनकी खासियत थी?
4: जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी अपने सारे जो भी श्रोता है कि ऑटिज्म के लक्षण क्या होते हैं, ताकि वो अगर कहीं आसपास देखे या अपने बच्चे में कुछ ऐसा देखे तो समझ सके कि हाँ इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है, क्योंकि तभी हम इन बच्चों को सहयोग दे पाएंगे। तो इसके कुछ एक खास लक्षण होते हैं, जैसे कि नजर से नजर मिला के बात नहीं कर पाते ये लोग, अपनी ही दुनिया में मगन होते हैं, और बच्चों की तुलना में इनका जो बोलचाल की भाषा या समाज के साथ मिलना, लोगों के साथ मिलना जुलना, उसमें इन्हें थोड़ा दिक्कत होती है, झिझक होती है, या ये अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं कुछ चीजों को लेकर के। खास तौर पे इमोशनली और सेंसरी इनको चैलेंजेस थोड़े ज्यादा होते हैं, जैसे किसी को हो सकता है कि रोशनी से दिक्कत हो, तेज लाइट से दिक्कत हो, शोर से दिक्कत हो, तो वो अपने कानों के आगे हाथ लगा लेगा, आंखों के आगे हाथ लगा लेगा, या किसी को कोई गोदी ले या छुए तो हो सकता है वो तब अनकंफर्टेबल महसूस करे। यानी कि जो हमारे ये फाइव सेंसेस होते हैं, ये हो सकता है कोई एक एरिया चैलेंज में हो और इस वजह से हमारे बच्चों को अनकंफर्टेबल फील होता है। तो ये कुछ खास इसकी विशेष वो होती है लक्षण। फिर ये हुआ कि मैंने अक्षय में क्या विशेषताएं देखी, तो जब मैं, जैसा मैंने बताया कि पहले तो हमें इसको समझना ही शुरू किया कि हाँ, फिर तो वो पूरी किताब ही पढ़ डाली क्या क्या करना चाहिए, जो गाइडेंस हमें मिला और फिर जो स्पीच थेरेपिस्ट ने हमें गाइड किया, तो अपने आप को ट्रेंड करके और फिर मैंने इसके साथ काम करना शुरू किया कि कैसे आई कांटेक्ट बढ़ाऊं, कैसे इवन इसको अपना नाम तक बताना नहीं आता था। वो ईको लेलिया वाली सिचुएशन थी कि अगर ऐसे बच्चों से पूछा जाता है आपका नाम क्या है तो वो वही रिपीट करते हैं आपका नाम क्या है। तो हमें ट्रेनिंग ली कि जवाब कैसे इनसे मिले जो हम चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें होती है जब आप अपनी बात नहीं बता पाते, इवन अपने पेरेंट्स को भी। तो ऐसे बच्चे भी फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, रोते हैं, क्योंकि जब आप अपनी बात नहीं समझा पाएंगे तो फिर फिजिकल भी होते हैं कि गुस्से में कोई चीजें उठाना, फेंकना या फिर चिड़चिड़ा होना। तो वो सारी चीजों के लिए जरूर जरूरी है कि हम अपने बच्चे को अपने जो नीड्स हैं वो एक्सप्रेस करना सिखाए। तो वो चीज मैंने फिर शुरू करी इसके साथ, बकायदा ट्रेनिंग लेकर के धीरे धीरे धीरे धीरे फिर ये आगे बढ़ा। मुझे कुछ एक चीजें इसमें जो जब इसको जान लिया और समझ लिया कि हाँ ये इसका चैलेंज है, तो फिर वो मैं ढूंढती थी कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे ये खुश होता है या ये कहीं पे ध्यान देता है। तो वहां मैंने देखा कि ये टीवी देखता है, तो बहुत लंबा समय तक टीवी देखता है, और उसमें भी ये क्या देखता था, क्रिकेट मैच आता था तब। ये तब की बात है जब ये मुश्किल से 5-1 साल का होगा, क्योंकि 92 में इसका जन्म हुआ था, 96 में पता चला। 1 साल तो हमें, मतलब 5-7 महीने तो हमें सोचने समझने में और स्वीकार करने में ही लग गए। फिर उसके बाद चीजें ढूंढना, एक्सप्लोर करना कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो देखा कि वहां बड़ा कंफर्टेबल और शांति से बैठता है, जबकि पढ़ाई ये करता नहीं था कोई भी, क्योंकि कंसंट्रेशन ही नहीं था, फोकस ही नहीं था। तो मैंने देखा कि अगर इसका क्रिकेट में इंटरेस्ट है और दूसरे एड आते हैं तो उसमें इंटरेस्ट, तो वहां मैंने इससे कम्युनिकेशन डेवलपमेंट शुरू किया कि कोई एड आ रहा है तो ये क्या आ रहा है अक्षय, ये कार आ रही है, ये चॉकलेट देख वो ब्राउन कलर की, वो स्मॉल तो वो बिग, और क्रिकेट मैच आता था तो अरे ये इंडिया है। उस टाइम ये कोई कंट्रीज के नाम नहीं जानता था क्योंकि स्पीच ही नहीं थी ढंग से, तो ये लेकिन वो इसका इंटरेस्ट एरिया था क्रिकेट और एडवर्टाइजमेंट। तो वहां हमने इससे बात करना शुरू किया, तो धीरे धीरे लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ और ये चीजों को ध्यान भी देने लगा और रेस्पॉन्ड भी करना सीखा।
3: जी, ये काफी लंबा सफर है और मैं तो समझता हूँ एक एपिसोड कभी भी इस पे काफी नहीं होता, इसमें बहुत बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपसे दोबारा सवाल पूछूंगा, उसके पहले मैं अक्षय जी से सवाल पूछना चाहूंगा। अक्षय जी, आप राजस्थान के पहले वो व्यक्ति हैं जो ऑटिस्टिक होने के बावजूद भी एक स्नातक हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आपने पढ़ाई की है तो, और आप जॉब भी करते हैं। आप आपको पढ़ने में सबसे अच्छा क्या लगता है?
5: नहीं बताऊं, टाइपिंग।
3: अच्छा, और जॉब में आपको क्या पसंद है? टाइपिंग। आप कितना तेज टाइप कर लेते हैं?
5: ज्यादा तेज से नहीं कर पाता, ठीक ठीक स्पीड।
3: जी, वेरी गुड। और आपके कितने दोस्त हैं जो
5: टाइप के लिए
3: आपके,
5: तो कोई भी नहीं है,
3: अच्छा, टाइपिंग के लिए कोई भी नहीं है?
5: नहीं भी पता नहीं, दोस्त शायद एक ही जना होगा शायद।
3: अच्छा, उनका नाम क्या है? आप रेडियो में
5: नहीं
3: श्रोताओं को अपने दोस्त के बारे में बताना चाहेंगे?
5: नहीं अभी ये भी जो इलाहाबाद में रहती है ना, बॉयफ्रेंड जो इलाहाबाद में रहती है।
3: ओके, जो इलाहाबाद में रहते हैं वो आपके दोस्त हैं?
5: हाँ, जो इलाहाबाद की जो लेटी रहती है वो है दोस्त।
3: जी, बहुत बढ़िया। और आपने, आपको क्रिकेट बहुत पसंद था बचपन में?
5: क्रिकेट खेलना पसंद है। 2006 इसके बाद में छोड़ दिया था क्रिकेट, अगर में वहां पिच पे पानी फेंक आता पिच पे।
3: और क्या क्या करते थे बताइए जरा।
5: और है ना, मेरे को मैं ना तेज बॉल से डरता था, फील्डिंग से डरता था, भागता था फील्डिंग से, तेज बॉल आ रही मैं हार जाता था और मैं हार के खेलता था, जो तेज बॉल आती थी तो डर जाता था, हार के खेलता था।
3: जी, और इसलिए फिर आप क्रिकेट से अलग, फिर आपने डिस्कस थ्रो, शॉट पुट थ्रो, जेवलिन थ्रो खेलना शुरू किया,
5: हाँ,
3: और उसमें तो फिर आपको अवार्ड मिला, उसमें आपको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, आपको बहुत कुछ मिला, उसके बारे में बताएंगे?
5: और है ना, और सबसे पहले है ना मुझे स्टेट अवार्ड मिला था, मैंने पैर एथलीट जीत लिया था, 800 मीटर का ब्रॉन्ज मेडल जीता, 1500 मीटर का गोल्ड मेडल जीता, और उदयपुर में डांस का थर्ड प्राइज जीता।
3: कैसे जीत लिया आपने इतना सारा? कितना मेहनत करना पड़ा आपको? हार्ड
5: क्योंकि
3: वर्क
5: बीए
3: करना
5: ग्रेज
3: पड़ा?
5: क्योंकि बीए ग्रेजुएशन
3: हाँ, क्योंकि आपने उसके लिए पढ़ाई की, मेहनत की।
5: हाँ। और इसके बाद मुझे नेशनल अवार्ड मिला था, केविन के मास्टरी अवार्ड मिला था, फिर जयपुर रत्न अवार्ड मिला था, ब्रांड एम्बेसडर बना था।
3: तो कैसा लगा जब आपको अवार्ड मिला
5: सही लगा।
3: और लोग? हाँ जी,
5: और है ना, जो सितंबर 2019 में मैं वहां गया था मुंबई, भाई ना यूथ फॉर चौक का रोल मॉडल आइकॉन अवार्ड मिला था
3: और उसमें मुंबई में कैसा लगा आपको जब आप गए थे? जी
5: मुंबई में। सही तो लगा, पर मुंबई में वहां पे भीड़ बहुत ही, रात को ट्रैफिक जाम लग गया था, बारिश आ गई थी।
3: मुंबई की बारिश तो बहुत फेमस है और मुंबई की भीड़ भी उसके बारिश से ज्यादा फेमस है।
5: हाँ
3: और कहाँ कहाँ गए आप? मुंबई भी गए हैं,
5: और
3: और
5: है ना,
3: कहाँ कहाँ गए हैं?
5: और अहमदाबाद गया था, सोमनाथ मंदिर गया था, दीघा दीप में सी गया था, अहमदाबाद में कातरी लेक गया था इसके बाद।
3: जी, तो सोमनाथ मंदिर देखा आपने? आपको कैसा लगा
5: हाँ
3: वो?
5: सही लगा।
3: आपको पता है सोमनाथ मंदिर जो है भारत के पहले पहले मंदिरों में से एक है, तो आप तो बहुत
5: हाँ
3: भाग्यशाली है कि आपने सोमनाथ मंदिर देखा हुआ है।
5: हाँ और इसके बाद मैंने ना टैलेंट हब में डांस का इस वजह से प्राइज जीता था, रायपुर में नेशनल मेडल जीता था, जोधपुर में स्टेट गोल्ड मेडल जीता।
3: क्या बात है! आप कैसा डांस करना पसंद करते हैं? कौन से गीत पे डांस करना पसंद करते हैं?
5: या
3: कौन से गाने पे आप डांस करते हैं?
5: वे दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड मावल हारी। हाँ
3: अरे वाह, बहुत बढ़िया।
5: और है ना, और इसके बाद है ना मैंने बेंगलोर में नेशनल मेडल जीता, पटना में ब्रॉन्ज मेडल जीता।
3: जी, आपको ये सब किसने सिखाया? इतना सारा खेलना, डांस करना, पढ़ाई, ये इतना सारा किसने सिखाया? मुझे तो इतना सारा कुछ नहीं आता।
5: मम्मी ने करवाया था, पापा मम्मी ने। हाँ
3: आपके पापा मम्मी को अगर मैं बोला उनको डांस करना आता तो वो तो बोलेंगे हमें नहीं आता, आपको कैसे आ
5: हाँ
3: गया,
5: हाँ
3: आपने
5: और
3: कैसे
5: इस
3: सीखा?
5: हाँ अभी डांस मैंने डांस क्लास में सीखा।
3: अच्छा,
5: और
3: मुझे तो
5: इसके
3: लग
5: बाद, और
3: जी
5: इसके बाद मैंने
3: बताइए
5: ना मार्च 2020 में वहां चेन्नई गया था, निपबैठ था प्रोग्राम।
3: जी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इतना सारा टैलेंट एक व्यक्ति में केवल भगवान ही भर सकता है। ना उसके
5: हाँ
3: माता पिता उसमें भर सकते हैं, ना उसके टीचर्स भर सकते हैं, ना उसके दोस्त भर सकते हैं, ना वो खुद अपने आप में इतने टैलेंट भर सकता है। ये केवल ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है, तभी संभव होता है। तो अक्षय जी, दोबारा हम आपसे बात करेंगे, तब तक हम एक बार प्रतिभा जी से भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना?
5: हाँ हाँ
3: प्रतिभा जी, जैसे कि अक्षय जी ने बताया और आपने भी पहले इस चीज का जिक्र किया कि ऑटिस्टिक बच्चों में खासियत ढूंढना बहुत जरूरी होता है, और यहाँ तो ढूंढने की आवश्यकता नहीं, यहाँ तो भरमार है खासियत की। केवल पढ़ाई नहीं, लेकिन खेलकूद भी, खेलकूद नहीं लेकिन सांस्कृतिक उपलब्धि भी, हर प्रकार का इनमें एक, मैं देखता हूँ, एक पूरा स्पेक्ट्रम है, पूरा रेंज है इनके पास। ये रियली बहुत बड़ा गिफ्ट मानता हूं मैं। आपका क्या विचार है इस बारे में?
4: ऑटिज्म को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है बेहतर तरीके से, यानी कि स्पेक्ट्रम बहुत सारी चीजें एक साथ प्रभावित होती है लाइफ की, और इसी
3: जी
4: तरह से बहुत सारे टैलेंट भी हो सकता है जैसे अभी आपने जिक्र किया। पर ऐसा नहीं है कि ये टैलेंट शुरू से ही था, हम खुद ढूंढना शुरू किया कि आखिर इसे क्या पसंद है। तब जैसा मैंने
3: जी
4: बताया इसे क्रिकेट पसंद, तो फिर हमने उस क्रिकेट के जरिए इसकी सारी पढ़ाई करवाई, वरना मुझे ऐसा
3: जी
4: लगता था कि ये क्या कभी पढ़ाई कर पाएगा जीवन में,
3: और
4: कैलकुलेशन नहीं
3: ये
4: आते
3: बहुत इंटरेस्टिंग बात है
4: था।
3: कि अगर क्रिकेट के जरिए कोई पढ़ सकता है तो क्रिकेट खेलने से बच्चों को मना नहीं करना चाहिए।
4: मैं
3: साधारण
4: आपको
3: तौर पे कोई
4: शॉर्ट
3: पढ़
4: में,
3: ही नहीं सकता है क्रिकेट के
5: हाँ मैं
3: जरिए, लेकिन
5: आपको
3: आपने
5: बताती हूँ
3: क्रिकेट के
5: कि
3: जरिए पढ़ाया। जी
5: क्रिकेट से ये कैसे पढ़ा कि जब ये टीवी देखा करता था तो इंडिया के साथ ऑब्वियसली कोई ना कोई अपोजिट कंट्री होती थी, तो ये उस कंट्री का नाम जानने लगा। फिर इसको ये कंट्रीज के नाम धीरे धीरे सारे आ गए, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, जो भी अपने होते थे ये, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। फिर आप देखिए मैथ्स कैसे सीखा, जो काउंटिंग करना नहीं जानता था, मैं थक गई थी कि शायद कभी जिंदगी में नहीं कर पाएगा ये मैथ्स। तो एक जैसे ये मैच देखता था तो एक ओवर में कहता था अब उसको इतने रन बनाने, तो मैं इनका एक ओवर में कितनी बॉल हुई तो बोलता है 6, तो उसको पता चला कि 6 बॉल होती है। फिर धीरे
3: जी
5: धीरे इसको ये कि 6 बॉल पे कितने रन बनाने हैं, या इस मतलब 140 रन बनाने हैं तो कितने हिसाब से, तो ये बताता था। इसको उस टाइम कोई आइडिया नहीं था मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का, वो मैंने बताया कि ऐसे डिवाइड कर दो। धीरे धीरे टेबल सीखना शुरू किया इसने, तो वो सारी पढ़ाई, इवन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, वो सब इसने क्रिकेट से सीखी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डेवलपमेंट हुआ तो फिर वो बाकी पढ़ाई भी आसान हो गई इसकी। तो वो टीवी
3: जी
5: का ये सदुपयोग किया। हम लोग क्या टीवी के जरिए बच्चों को आइडल बना देते हैं, लेकिन हमने टीवी से लर्निंग शुरू करी इससे। और ये जो डांस वगैरह था इसके लिए हमें इसके साथ जूझना पड़ा, हर जगह इसके साथ मैं जाती और वहां जब तक ये सीखता था टीचर को पहले बताते थे, क्योंकि इन बच्चों में इंस्ट्रक्शन जो है वो लेना थोड़ा दिक्कत होता है इनको, क्योंकि अपनी दुनिया में मगन होते हैं, तो हो सकता है कि कंसंट्रेट होकर के सुने ना, तो टीचर को मैं बताती थी तो फिर मैं खुद इसे रिपीट करती थी। तो धीरे धीरे मतलब पुश करना होता है इन बच्चों को, तब जाके आप जान पाओगे कि इनका इंटरेस्ट कहाँ है। और इवन हमें डेवलप करना पड़ता है, इसका ना डांस में इंटरेस्ट था ना गेम्स में था, हमें पुश करना पड़ा और मोटिवेट करना पड़ा कि देखो अच्छा जैसे इनके नाम आते वैसे आपका भी आएगा, फिर अपन वहां चलेंगे घूमने का शौकीन शुरू से था। तो हमें
4: सभी, मैं अपनी बात नहीं कर रही, सभी पेरेंट्स को, अगर आप बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनका इंटरेस्ट ढूंढना भी पड़ेगा, और अगर नहीं है तो डेवलप भी करना पड़ेगा, और साथ में आपको पूरा डेडिकेटेड होकर के इनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो यकीन मानिए कोई ऐसी वो नहीं है दिक्कत कि आपका बच्चा आगे ना बढ़े। हो सकता है कोई पढ़ाई में, कोई म्यूजिक में अच्छा होता है, कोई डांस में होता है, तो सबके लिए कुछ ना कुछ अलग होता है, वो हमारे साथ भी है, कोई किसमें
3: आई थिंक ये बात आपने बहुत अच्छी बताई कि चाहे कैसा भी बच्चा हो, चाहे किसी विशेष परिस्थिति से जूझ रहा हो या साधारण बच्चा हो, हर बच्चे में कुछ ना कुछ एक तोहफा ईश्वर भेजता ही है। उस तोहफे को पहचान पाना ये माँ बाप का, उसके आसपास के लोगों का पहला कर्तव्य है, ये उनका ड्यूटी बनता है कि हम पहचाने हमारे आसपास में बच्चों में कौन कौन सी चीजें हैं जिनके जरिए उनको हम उनका आत्मसम्मान बढ़ा सकते हैं, उनका उनके प्रति, खुद के प्रति जो सम्मान है वो बढ़ा सकते हैं। मैं कहीं पर पढ़ रहा था, वो ये था कि अगर कोई भी आपको सम्मान नहीं देता है, दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है जो मैंने आज पढ़ी और मैं चाहता था कि इसको किसी के साथ शेयर करूं, लेकिन कौन किसके साथ शेयर कर सकता है ये पता ही नहीं चलता, लेकिन भगवान कुछ ऐसा ड्रामा बना देता है कि आज इसको शेयर करने का मौका मिल रहा है, वो भी अक्षय जी और प्रतिभा जी के साथ। मैंने पढ़ा था कि भले कोई भी आपका सम्मान न करे, याद रखना ईश्वर आप पे पूरा भरोसा रखता है। तो आप सोचिए, अगर ईश्वर आप पे भरोसा रखता है तो फिर किसी के सम्मान की क्या आवश्यकता है। उस भरोसे के दम पर हम कितने भी बड़े परिस्थिति को, चुनौती को पार कर सकते हैं। जैसा भरोसा प्रतिभा जी ने ईश्वर पर रखा, ईश्वर ने उन पर रखा, तभी उनके परिवार में एक ऐसा तोहफा भेजा, और उस तोहफे का कदर समझ करके उस तोहफे को आज इस मुकाम तक पहुंचाना कि भारत में कई बच्चे, उनके जैसे बच्चे जो हैं उनको देख करके, उनसे सीख करके आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे ऐसे एक माँ के लिए वाकई में हमारे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद निकलता है, ऐसे परिवार के लिए हमारे दिल से बहुत बहुत उद्गार निकलता है। प्रतिभा जी, यहाँ पर मुझे एक और चीज सुनने का मन करता है कि ऐसी कई चीजें होंगी अक्षय जी की जो कि वो खुद से करना पसंद करते हैं, जो कि आपने या किसी और ने उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया है, उन्होंने खुद ही पिकअप किया है उस चीज को, ऐसी कौन सी नेचुरल उनकी फेवरेट्स हैं?
4: जैसे डांस हुआ, इसको ये बाकी सारी चीजें हो सकता है ये मेरे कहने से करता रहा हो, लेकिन डांस इसमें जब एक बार शुरुआत हो गई, हालांकि उसमें भी हमें इसको लगाना पड़ा, पर अब जो शुरुआत होगी तो एक यही ऐसी चीज है जो ये पूरे दिल से करता है, और इसके लिए अगर कहा जाए तो स्टेज तोड़ू परफॉर्मेंस होती है इसकी, और इसमें अपना पूरा स्ट्रेस भूल जाता है। मैं कहती हूँ कि हमारे बच्चों को हम जितना एक्सपोजर देंगे और जितना इंटरेस्ट डेवलप करेंगे ना, इनकी लिए लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी, क्योंकि तो जैसा मैंने बताया इसमें पहले से बहुत सारे एंजाइटी स्ट्रेस के इश्यूज होते हैं, तो अगर आपको कोई अपनी रुचि और ऐसा शौक डेवलप करने का एरिया मिल जाए, बहुत फायदा होता है हमारे बच्चों को। दूसरा, हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं और अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, तो ऐसा
3: और लोगों की खुशी देखते हैं वो देखते हैं कि लोग खुश हो रहे हैं उनको देख करके। हाँ। और वो खुशी एक ऐसी चीज है, वो एक ऐसा बेबाक मूक भाषा है जो कि व्यक्ति समझ लेता है कि कोई व्यक्ति मेरे से जेन्युइनली खुश हो रहा है या कोई व्यक्ति दिखावे से खुश हो रहा है। खुशी को छुपाया नहीं जा सकता, खुशी पहुंच ही जाती है।
4: जी बिल्कुल, और इनकी जिंदगी में खुशी की सबसे ज्यादा जरूरत है।
3: जी, एक और चीज जो मुझे यहाँ जानना है कि जैसे एक होता है कि डांस करना खुद में दूसरों के लिए, दूसरा होता है कंपटीशन। ये जो खेल में ये जाते हैं, यहाँ तो एक कॉम्पिटिशन या दूसरे लोग भी हैं या एग्जाम देने बैठते हैं, जनरली लोगों को एग्जाम से डर लगता है या कॉम्पिटिशन से डर लगता है, या जैसे ये प्रतियोगिताएं हो रही हैं, खेलकूद की भी प्रतियोगिताएं हो रही है, इसमें एक लेवल ऑफ एंग्जाइटी होता है कि भाई क्या होगा अगर मैंने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, किसी ने मेरे से बेहतर परफॉर्म कर लिया तो थोड़ा सा ईर्ष्या भी आ जाता है, कभी इन चीजों को कैसे डील करते हैं आप?
4: शायद ये गॉड गिफ्ट है कि ऐसे बच्चों के अंदर ईर्ष्या की भावना मैंने देखी नहीं है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल भी हूँ, मैं बेसिकली साइकोलॉजिकल काउंसलर और स्पेशल एजुकेटर हूँ, तो मैंने देखा नहीं कि ज्यादा इन लोगों में कोई ईर्ष्या जैसी होती है। हाँ, कई बार एक घबराहट सी वो तो हम में भी होती है, पर इनमें शायद कमी देखी है मैंने, वो घबराहट भी है, तो अपना कर करा के, क्योंकि अपनी दुनिया में लीन होते हैं, तो जो इनको करना करा और आ गए वापस, बस हम इधर उधर देख करके ज्यादा टेंस होते हैं, लेकिन ये तो अपने टारगेट पे फोकस रखते
3: हैं। ये एकदम अर्जुन की तरह होते हैं जो एक टारगेट पे फोकस्ड होते हैं, बाकी हम जो होते हैं हम खुद को सामान्य समझते हैं, लेकिन हम गैर जरूरी चीजों से इतने प्रभावित हो जाते हैं और हम फिर भी खुद को सामान्य कहते हैं। ये बहुत बड़ा
4: बिल्कुल
3: सीखने जैसा पाठ है इनके जीवन से।
4: बिल्कुल। और बस एक चीज जरूर है कि इनको एक मॉरल सपोर्ट होना जरूरी है। जब ये कहीं अकेले जाते हैं या कोई नई जगह जाते हैं, तो वो फियर ऑफ एंजाइटी और फियर ऑफ न्यूनेस की कोई नई जगह वो जरूर इनमें रहता है। तो हम पहले से मेंटली प्रिपेयर इन्हें कर दें, अगर कि हम यहाँ चल रहे हैं और यहाँ ये होगा, चीजें पहले से इनके लिए स्पष्ट अगर कर दी
3: जी
4: जाए तो दिक्कतें थोड़ी कम होती है।
3: जी अमूमन ये देखा गया है कि व्यक्ति जब किसी समस्या से जूझता है और जब उस पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे बड़ी खुशी होती है। बट अक्षय जी के और इनके जैसे कई बच्चों के केस में ऐसा होगा कि वो विजय प्राप्त करके भी उतने ही खुश है जितना समस्या में होते हुए खुश होते हैं, क्योंकि वो उससे काफी परे रहते हैं और उनके लिए वो मोमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है जिस मोमेंट में वो होते हैं, वो इतना पीछे का
4: बट
3: याद
4: सही
3: नहीं रखते। जी
4: कह रहे
3: जब
4: हैं।
3: इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा था या जब इनको स्टेट लेवल रिकॉग्निशन मिल रहा था, तो उसके लिए आपने इनको कैसे प्रिपेयर किया? क्योंकि राष्ट्रीय सम्मान के लिए तो व्यक्ति को एक डेकोरम के साथ पहुंचना होता है, एक मेंटल प्रिपरेशन करना पड़ता है, तो उसके लिए कैसे आपने प्रिपेयर किया? थोड़ी सी उस घटना को बताएं।
4: हाँ, ये हमारे लिए एक सपना था जो सच हुआ, कभी सोचा ही नहीं था। उस टाइम तो जब हमने इसके साथ काम करना स्टार्ट किया तो छोटी छोटी चीजों के लिए हम जूझ रहे थे कि कैसे हाँ करना सिखाएं, कैसे ना करना सिखाएं, कैसे चीजें मांगना सिखाएं। तो कहाँ सोचा था कभी कि कोई नेशनल अवार्ड या स्टेट अवार्ड मिलेगा। पर जब जब धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो पता चला भाई ये तो बहुत ही स्पेशल है। और पढ़ाई भी शुरू हुई इसकी। और आपको इसका मैं बताना चाहूंगी कि CBSE में उससे पहले कभी ऑटिस्टिक बच्चा, मतलब ये स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कई सुविधाएं मिलती हैं। पर जब ये 9th में अपियर हुआ तब इसका फॉर्म भरना था और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट था हमारे पास, लेकिन ऑटिज्म उस टाइम CWSN में जुड़ा हुआ नहीं था। तो वहां हमने इन लोगों को CBSE को लेटर भेजा और उन्होंने पहली बार अक्षय के कारण ऑटिज्म को चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड में जोड़ा। तो वहाँ एक शुरुआत हुई। फिर उसके बाद हमारे राजस्थान में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में जो ऑटिज्म था इसके बारे में, क्योंकि उस टाइम तक कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं थी, तो इनको MR यानी मेंटल रिटार्डेशन में डाला जाता था। तो वहाँ हमारा एक संघर्ष शुरू हुआ कि वुमेन राइट कमीशन में एक वाद दायर किया, तब वहां से शुरुआत हुई। करीब 3 साल बाद उन लोगों ने माना कि 99 में एक एक्ट आ चुका है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, तो जिसके जरिए ऑटिज्म एक डिसेबिलिटी अलग मानी गई है। तो हमारा यही कहना था कि कम से कम जो डिसेबिलिटी है उसका सर्टिफिकेट जारी किया जाए, कहीं और डिसेबिलिटी का ना किया जाए। तो ये छोटी छोटी चीजों के लिए जब हम उलझ रहे थे तो हमने कहाँ सोचा था कि कोई नेशनल अवार्ड मिलेगा। लेकिन जब इन बाधाओं को पार करते हुए आगे आए धीरे धीरे धीरे धीरे, तो चीजें एकदम सामने आती गई। और वहां पता चला कि कई चीजें ऐसी है जिनके लिए काम करना जरूरी है, क्योंकि जितने भी नियम थे कानून थे वो सब शारीरिक जो हमारे दिव्यांग साथी होते हैं उनके हिसाब से बने हुए थे, 95 का एक्ट। फिर उसके बाद में हमारा बड़ा संघर्ष स्टार्ट हुआ कि इनको भी वो चीजें पहुंचानी है, वो सुविधा जो इनके लिए जरूरी है। तो एक बेसिक नीड जो इनकी पूरी हो, रीजनेबल अकोमोडेशन जिसे हम कहते हैं, कि इनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के हिसाब से चीजें कुछ फेवरेबल हो, तब जाकर के फिर वो संघर्ष शुरू हुआ। कई नियम भी बने हमारे राजस्थान में। और उसके बाद फिर पढ़ाई इसका, मतलब इसको कॉलेज में, आपको आश्चर्य होगा कि इसको कॉलेज में एडमिशन देने से ही मना कर दिया था, कि जो हमारे जयपुर के कॉलेज थे दो कॉलेज ने मना किया जब हम एडमिशन के लिए गए, बोले हम इन बच्चों को एडमिशन नहीं देते। ये 2011 की बात है। फिर हमने इसको लेकर के कमिश्नर कोर्ट होती है वहां पे वाद दायर किया। मतलब हमें हर जगह संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि ये ज्यादातर पहला रहा हर चीजों में, तो जो पहला होता है उसके संघर्ष ज्यादा होते हैं।
3: जी
4: कोई दरवाजा खोलना है तो बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है।
3: लेकिन
4: तो
3: इनकी
4: वहाँ
3: वजह से कितने लोगों के लिए दरवाजा खुल गया।
4: वो बहुत एक संतुष्टि का विषय है कि ये एक कारक बना जिसकी वजह से बाकी बच्चों को भी एक सहज रास्ता मिल रहा है। तो ये बहुत खुशकिस्मत है कि शायद इसके जरिए ही और बच्चों की भी तकलीफें कम हो रही है। और जब इसने ग्रेजुएशन किया तो ये राजस्थान का पहला ऑटिज्म प्रभावित ग्रेजुएट बना। तो कहाँ तो एडमिशन ही नहीं दे रहे थे कॉलेज वाले, और एक कॉलेज ने हिम्मत करके एडमिशन दिया, तो वहां उसने इतिहास रच डाला। फिर जाके जब इसे नेशनल अवार्ड आगे मिला तो वो हमारे लिए एक बहुत गर्व का विषय था। मतलब कोई भी माँ बाप और खुद ये बहुत एक्साइटेड था। और आप कह रहे कैसे प्रिपेयर किया, तो हमने इसे बताया, आपको नेशनल अवार्ड मिल रहा है जो कि सबसे बड़ा अवार्ड होता है अपने हिंदुस्तान का, और वहां पे जो अपने प्रेसिडेंट है वो देंगे आपको अवार्ड। तो पूरी ड्रेस वगैरह 1 हफ्ते पहले से शॉपिंग की तैयारियां शुरू हुई थी मुझे, ये तो कपड़ों का बड़ा शौक है तो जैकेट कुर्ता ये लूंगा, और इस तरह से पूरी ड्रेस कि चार तीन इवेंट है तो तीनों के लिए अलग अलग इसके लिए कपड़े लेने इसको अपनी पसंद के। और फिर जब हम दिल्ली गए तो वहाँ हर चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर हमने इसे किया था, और मुझे लग रहा था शायद ये स्टेज के ऊपर हो सकता है घबराए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और ये बहुत कंफर्टेबल होकर के वहां गया, और इसने बल्कि वहां पैर छुए जो अपने वेंकैया नायडू जी थे उनके पैर छुए, तो एक बहुत अच्छा लगा। और जब हॉल पूरा गड़गड़ाहट से गूंज उठा तालियों की गड़गड़ाहट से, तो कितना गर्व महसूस हुआ, वो कोई भी पेरेंट्स और हम सोच सकते हैं कि वो कितना गर्व की बात है, इसे रोल मॉडल का पुरस्कार मिला।
3: जी, ये आप जब सुना रहे हैं तो आपके आवाज में जो खुशी है, आपके आवाज में जो गर्व है, वो मेरे कानों तक नहीं, मेरे दिल तक पहुंचा, तो मैं समझता हूँ मैं श्रोताओं के भी दिल तक पहुंच रहा है। यहाँ मैं अक्षय जी से सवाल पूछना चाहूंगा। अक्षय जी, जब आप दिल्ली गए राष्ट्रपति जी से पुरस्कार लेने के लिए, तब आपको कैसा लगा?
5: मतलब ये नायडू थे,
3: हाँ, फिर क्या हुआ, कैसा लगा? वो
5: सही
3: याद है,
5: लगा।
3: वो टाइम याद है, कैसे क्या क्या हुआ था?
5: हाँ, राष्ट्रपति से अवार्ड मिला था 3 दिसंबर 2018 को नेशनल, क्योंकि
3: क्यों मिला था?
5: बीए ग्रेजुएशन।
3: अच्छा, और
5: और
3: दिल्ली में मिला था आपको या बॉम्बे में मिला था?
5: दिल्ली प्लेन
3: दिल्ली में। कैसे गए थे आप दिल्ली?
5: से
3: कैसा लगा प्लेन का सफर?
5: सही लगा।
3: बादलों में से देखने में अच्छा लगता है?
5: हाँ, और है ना, और है ना, मैं ना जून है ना 2022 में वहां बेंगलोर गया था वहां।
3: बैंगलोर भी गए हैं आप 2022 जून में,
5: हाँ,
3: और बैंगलोर कैसा लगा आपको, अच्छा लगा?
5: बेंगलोर तो अच्छा लगा। बेंगलोर कई बार जा जा चुका हूँ, तीन ती, तीन तीन चार चार बार। बेंगलोर
3: अच्छा, आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है? बैंगलोर। आप बैंगलोर बार बार जाना चाहेंगे?
5: हाँ,
3: और जयपुर में सबसे अच्छा क्या लगता है? जयपुर तो बहुत सुंदर है अपने आप में, पूरा दुनिया आता है जयपुर देखने के लिए। आपको जयपुर में सबसे अच्छा क्या लगता है?
5: हवा महल।
3: हवा महल। वेरी गुड, उसको तो देखने के लिए।
5: हवा महल ही विशाल जीतती। टी
3: अच्छा, और बैंगलोर में सबसे अच्छा क्या लगता है?
5: गार्डन।
3: टी
5: हाँ
3: गार्डन। और दिल्ली में
5: हाँ
3: क्या क्या अच्छा लगा आपको?
5: कुतुब मीनार।
3: कुतुब मीनार अच्छा लगा। और राष्ट्रपति भवन में जब आप गए, तो जब आपको पुरस्कार दिया तो सबने ताली बजाई,
5: हाँ
3: और आपके मम्मी बता रहे थे कि वो टाइम इतने लोगों ने इतनी खुशी दिखाई, वो कैसा लगा आपको वो समय?
5: सही लगा।
3: ऐसा फिर से होने वाला है फ्यूचर में?
5: हाँ, और इसके बाद है ना नवंबर 2022 में वहां ऑस्ट्रेलिया ब्रेस ब्रेसबेन गया था,
3: ब्रिस्बेन
5: ओपनिंग
3: गए थे आप
5: सेरेमनी
3: ऑस्ट्रेलिया
5: होती।
3: में?
5: वहां जेवलिन में सिल्वर मेडल जीता, डिस्कस में गोल्ड मेडल जीता, शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीता।
3: वेरी गुड, आप तो देश में नहीं विदेश में भी जाकर के आपने कितने
5: मैं तो
3: मेडल्स
5: पहला
3: जीते हैं।
5: फॉरेन कंट्री ऑस्ट्रेलिया गया हूँ,
3: पहला फॉरेन कंट्री ऑस्ट्रेलिया गए हैं,
5: ब्रिस्बेन।
3: बहुत बढ़िया। और अकेले गए थे या मम्मी पापा भी साथ में थे? अच्छा,
5: वहाँ इंडिया का टाइम अलग, ऑस्ट्रेलिया का टाइम अलग अलग, 4.5 घंटे का डिफरेंस है आगे घड़ी।
3: वाह, 4.5 घंटे का डिफरेंस है। तो आपके साथ आपके मम्मी पापा भी गए थे?
5: केवल मम्मी गई थी, पापा को छुट्टी नहीं मिलती ऑफिस की।
3: देखो, पापा अगर आपके जैसे खेल कूद में थोड़े होशियार होते तो उनको भी छुट्टी मिल जाती है ना।
5: हाँ, और इसके बाद है ना फरवरी 2023 में अलवर में स्टेट गोल्ड मेडल जीता था।
3: वेरी गुड, जब आप विदेश में गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, तो आपको वहां पर जब आपने खेला, तो वहां पर तो और भी लोग थे, सिर्फ इंडियन लोग नहीं थे, विदेश वाले भी थे, तो आपको कैसा लगा?
5: सही। और है ना जो जून में फ्रांस में इंटरनेशनल होने वाला था ना, मेरे को भी फ्रांस से जाना चाहिए था, मेरे को मम्मी के साथ जाना चाहिए था फ्रांस।
3: तो अभी आप आएंगे, यहाँ पैरालंपिक्स होने वाला है, उसके लिए आएंगे फ्रांस में?
5: कब?
3: पैरालंपिक्स फ्रांस में है ना, ओलंपिक्स के बाद पैरालंपिक्स होता है, तो उसके लिए आप आने
5: ओके।
3: वाले हैं? आप फ्रांस आना चाहते हैं? फ्रांस बहुत अच्छी जगह है, आना चाहते हैं?
5: हाँ, आना चाहते हैं मैं।
3: बिल्कुल, हमारी तो शुभेच्छा है कि आप देश का नाम हर देश में जाकर के रोशन करें। इंडिया कैसा
5: हाँ,
3: लगता
5: सही
3: है आपको, भारत कैसा लगता है?
5: लगता है इंडिया। सही, अच्छा लगता।
3: अच्छा, और आप विदेश में ऑस्ट्रेलिया भी गए और इंडिया में भी रहे, तो आपको इंडिया में कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी?
5: इंडिया में, मैं इंडिया में बेंगलोर और चेन्नई।
3: अच्छा, और इंडिया का,
5: और है ना लास्ट ईयर मई में वहां चेन्नई गया था, डिपेंड प्रोग्राम था, पॉन्डिचेरी भी गया था वहां से लौटते टाइम।
3: आप तो मेरे से भी ज्यादा घूमे हुए हैं, सबसे ज्यादा आपने इतना घूमा है पौंडीचेरी। आप तो एक एक शहर का नाम ऐसा बता रहे हैं जैसे मेरे को लग रहा है पूरा इंडिया का मैप बनता जा रहा है मेरे सामने। एक चीज आप
5: मैं
3: बताइए, आपको भारत की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है, भारत आपको क्यों पसंद है?
5: क्योंकि इंडिया ऐसे ही है पसंद, इंडिया तो।
3: हाँ, क्योंकि इंडिया तो इंडिया है, इंडिया जैसा कुछ भी नहीं है ना।
5: और है ना मैं तो चेन्नई कई बार जा चुका हूँ, 3 बार।
3: और आपको खाली टाइम में क्या करना पसंद है,
5: क्या
3: जब आप खेल नहीं रहे हैं, जब आप डांस नहीं कर रहे हैं, जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो जब आप फ्री होते हो उस टाइम पे आप क्या करना पसंद करते हैं?
4: खाली बैठते टाइम क्या करते हो?
5: मेडिटेशन।
3: वेरी गुड, आपको मेडिटेशन भी करना आता है, कैसे
5: हाँ,
3: करते हैं आप मेडिटेशन, बताएंगे हमारे श्रोताओं को?
5: ईयरप्लग लगा के, ये
3: फिर क्या करते हैं आप उसमें,
5: पे लगा के मेडिटेशन
3: कितनी देर कर लेते हैं आप मेडिटेशन?
5: 10 मिनट।
3: वेरी गुड, 10 मिनट। तो कई लोग साधारण चुपचाप बैठ भी नहीं सकते, आप तो मेडिटेशन कर लेते हो, तो बहुत बड़ी बात है।
5: हाँ, और इसके बाद है ना लास्ट जून में कैलकाटा, वहां भी गया था।
3: अच्छा, कलकत्ता भी आप होकर के आए हैं, आपने
5: हाँ
3: पूरा भारत घूम लिया है।
5: हाँ अभी
3: अच्छा, अभी अब फिर हम वापस प्रतिभा जी से बात करते, फिर आपके पास आएंगे, है ना।
5: और है ना, और इस साल है ना केएबीसी में जाने की बारी है। इस साल कौन बनेगा करोड़पति में? अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पे।
3: वो तो आप पक्का जाएंगे और आप ही करोड़पति बनेंगे।
5: इस साल केबीसी में सिलेक्शन हो जाए, वहां वहां मुंबई जाने को फिर से मिले मुझे केबीसी में, कौन बनेगा करोड़पति?
3: बिल्कुल, हमारी शुभेच्छा है, उसमें जरूर जाएं। और जिस दिन आप जाए उस दिन बारिश नहीं होना चाहिए बॉम्बे में, और भीड़ भी
5: हाँ
3: कम होनी चाहिए उस दिन।
5: फिर मुंबई में बारिश तो अक्टूबर में चली जाती है, बारिश सितंबर के लास्ट वीक में।
3: लेकिन हम मुंबई वालों को बोलेंगे कि अक्षय जी आ रहे हैं तो बारिश नहीं करवाएं, ठीक है ना।
5: बारिश तो हाँ
3: अभी हम मम्मी से बात करते हैं। प्रतिभा जी, आपको मैं समझता हूं, अगर अगर आप आज बैठ करके इस बात को सोचें, तो अक्षय जी के इस विशेष चुनौती ने न केवल उन्हें विशेष बनाया है, लेकिन आपके परिवार को भी बहुत विशेष बनाया है। और उनके जरिए जिन अनुभवों को आपने किया है, मैं समझता हूँ भारत में किसी भी सामान्य परिवार में ऐसे अनुभव नहीं होते हैं, भले वो चुनौती वाले अनुभव हों, लेकिन चुनौतियों के अलावा जो खुशी के क्षण हैं, जो गौरव के क्षण हैं, वो भी इतने नहीं होते जितने आपके परिवार में आए। आपने इस पूरे जर्नी में, आपने, आपके हस्बैंड ने किस तरीके से खुद को तैयार किया, या कैसे आपने खुद को प्रिपेयर किया, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा।
4: जैसा कि मैंने बताया, स्टार्टिंग में जब पता चला तो एकदम टूट गए थे, लेकिन फिर वही डिसाइड किया कि जीवन में दो रास्ते हैं, या तो हंस हंस के चीजों का सामना करो या फिर रो करके सब कुछ खत्म कर दो, तो पहला रास्ता ज्यादा सही है। और फिर यही ठाना कि जैसे इसकी बहन है वो इससे 5 साल बड़े, कि जैसे उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं वैसे इसको भी बढ़ाना है। और फिर हमारी जो यात्रा शुरू हुई वो आज दिन तक जारी है। मैं एक बात सारे ही लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में कोई ऐसा विशेष बच्चा है तो आपकी जिंदगी असाधारण बन जाती है, जिसमें चुनौतियां भी बहुत ज्यादा होती है, खुशी के पल तो बहुत थोड़े आते हैं कभी कभी, जो हमारे को जीने के लिए एक जिसे कहते हैं ना सपोर्ट सिस्टम है और ऑक्सीजन की तरह से है, बाकी चुनौतियां बहुत ज्यादा रहती है क्योंकि समाज में इन लोगों के प्रति जागरूकता का अभाव है। और दूसरे समाज का जो माइंडसेट है वो भी कुछ ऐसा है कि हम जो ये लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, खास तौर पे ऑटिज्म और बौद्धिक दिव्यांगता के बारे में अगर मैं बात करूँ तो लोगों को लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, और लिटरली इनके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो अपने आप ही पेरेंट्स को बहुत ज्यादा तोड़ता है। लेकिन हमें बस यही है कि हम अपने बच्चों को जितना हो सकता है आगे बढ़ाए और समाज की सोच भी बदले। और मैंने फिर यही शुरू किया कि पहले तो खुद कानून पढ़ा, और कानून पढ़ने के बाद इनके अधिकारों के लिए जंग भी छेड़ी, और हर जगह चाहे से वो हमारा खुद का राजस्थान हो या भारत सरकार, हर जगह अपनी बात पहुंचाई और रखी, और चीजें सकारात्मक हुई। ऐसा नहीं है नहीं होता, लेकिन हाँ बहुत बरसों लगते हैं चीजें चेंज होने में। तो थोड़ा सा सिस्टम अगर हमारे इन बच्चों को लेकर के संवेदनशील हो तो वो बहुत अच्छा है। और आज मैं वही कर रही हूँ कि मैं राजस्थान में गेस्ट फैकल्टी के रूप में जितने भी सरकारी संस्थान है, चाहे वो हमारा ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल हो जयपुर का, या फिर राजस्थान पुलिस एकेडमी हो, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान हो, खुद सचिवालय हो जहाँ मेरा बेटा पोस्टेड है, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किए खास तौर पे, जिसमें हम सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करते हैं कि नया जो दिव्यांग अधिकार कानून आया है 2016 में उसकी जानकारी देके, इसमें 21 विकलांगताएं हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, उसकी जानकारी देते ताकि जो बच्चे या जो व्यक्ति अगर स्कूलों में पढ़ रहे तो उन्हें वो सारे अधिकार मिले जो इन कानून के जरिए उन्हें मिले हैं, या फिर अगर किसी कार्यस्थल पर या ऑफिस में कोई दिव्यांग काम कर रहा है तो वहां भी उसके प्रति जो एक रवैया है कर्मचारियों और अधिकारियों का वो संवेदनशील होना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने जो सब कुछ सहा है और सामना किया है उसके बाद हमने ये जाना कि जागरूकता ही सबसे बड़ी पहली और सबसे बड़ी चीज है। आज अगर हम जागरूक हो जाएंगे तो नजरिया हमारा जो सोचने का नजरिया वो जरूर बदलता है, और अब हम उसी दिशा में लगे हुए हैं। हमारी अपनी खुद की हम संस्था है जो कि अभिभावकों के द्वारा ही शुरू की गई है, और हम जगह जगह ये प्रोग्राम करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम भी करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं।
3: संस्था का नाम भी बताएंगे, संस्था का नाम थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को।
4: हाँ, हमारी जो संस्था है उसका नाम है सपोर्ट फाउंडेशन फॉर ऑटिज्म एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारे राजस्थान का अधिकारियों का प्रशिक्षण संस्थान है, इसके करिकुलम में जो इनको ट्रेनिंग दी जाती है अधिकारियों को और वहाँ कर्मचारियों को, उसके ट्रेनिंग करिकुलम में हमने ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को डलवाया ताकि जो ट्रेनीज आए, देखिए जो नियम या कानून बनते हैं उसको इम्प्लीमेंट किसको करना है, ब्यूरोक्रेसी को ही करना है। तो ब्यूरोक्रेसी अगर सेंसिटाइज हो, वो जाने कि ऑटिज्म क्या है, बौद्धिक दिव्यांग का है या दूसरी शारीरिक दिव्यांगों की तकलीफ क्या है और इनके लिए क्या नियम बने, पर उनको जानकारी मिले और फिर वो संवेदनशील हो, तो आप मान के चलिए ये सिस्टम बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकता है। और हम उसी पे पूरे डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं। जो हमारा मिशन है वो है मिशन एडवोकेसी अवेयरनेस और एम्पावरमेंट।
3: आपने जब ये बात कही कि ब्यूरोक्रेसी अगर अवेकेंड है या अगर वो जागरूक है तो वो अपने नीचे के स्तरों पे भी बदलाव ला सकते हैं, और इसलिए एक बहुत अच्छा रास्ता अपनाया आपने कि जो अधिकारी है उनके प्रशिक्षण के द्वारा ही आप उनको परिवर्तन का एक जरिया दे रहे हैं, जिसके द्वारा वो अपने नीचे के तब्दों में स्ट्रैटेजीज में चेंजेस ला सकते हैं, लोगों में चेंजेस ला सकते हैं। क्योंकि मैं कहूँ आप थोड़ा ठीक से इनके साथ पेश आए और एक सरकारी अफसर अपने नीचे के अधिकारियों को कहे कि आप इनसे ऐसे पेश आए तो जरूर असर करता है।
4: बिल्कुल सही है।
3: इसमें एक और चीज मुझे ये जानना था कि जैसे आप ट्रैवल भी करते हैं इनके साथ और घर का माहौल या सिटी का माहौल तो इनका जाना पहचाना माहौल होता है, तो ये उसको कई तरीके से खुद ब खुद ही डील कर सकते हैं। लेकिन जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे फ्लाइट में चाहे ट्रेन में, जहां पर बहुत सारे अनजान चेहरे हैं और बहुत सारे अनजान एक्सपीरियंसेस हैं, फॉर एग्जांपल लंबा सफर ट्रेन का हो या फिर फ्लाइट का अचानक से हवा में उड़ना, ये सब चीजें जब होती हैं तो उसके लिए आप इनको कैसे प्रिपेयर करते हैं या उस समय इनका कैसे वो होता है?
4: शुरुआत में तो बहुत दिक्कतें आती थी जब ये छोटा था, तो इवन हमें ट्रेन में भी कहीं जाना होता था तो जैसे जयपुर से दिल्ली, तो वो 5-6 घंटे भी हमारे लिए बहुत बैड एक्सपीरियंसेस देके जाते थे कि कैसे हम इसको शांत करके बिठाएं या कंफर्टेबल फील कराएं। फिर धीरे धीरे हमें समझ आने लगा कि इनको एंगेज करना जरूरी है, तो कुछ ना कुछ चीज इसके हाथ में हम देते थे जिससे ये अपना टाइम पास करता था, और फिर धीरे धीरे इसकी आदत होने लगी जैसे जैसे समझ बढ़ती है। ये सिर्फ अक्षय के साथ है, सभी बच्चों के साथ है, इवन हम लोगों के साथ की धीरे धीरे जैसे हमें एक्सपोजर और हम बाहर जाते तो हम अभ्यस्त होने लगते हैं। और इनकी तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि अपनी एक खोल में ही बंधे रहते हैं, जब बाहर निकलते तो इन्हें घबराहट होती है क्योंकि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो हमें वो सिखाना है कि सोसाइटी के साथ जाके कैसे इंटरेक्ट करना है। हालांकि मैं ये नहीं कहती कि 100% ये कर पाते, लेकिन ये आगे निकले तो सही, हम इन्हें मौका तो दे, और जितना बाहर लेके जाएंगे वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। अब इसे कहीं कोई ज्यादा इतनी दिक्कत नहीं होती, चाहे वो एयर ट्रेवल हो, ऑस्ट्रेलिया जब हम गए तो करीब 15-16 घंटे से भी ज्यादा का सफर रहा था हमारा, जो मेरे लिए बहुत टायरिंग था, लेकिन ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि मुझे जाना है। ये होता है कि कई बार ओवर एग्जर्शन, घर में तो एक कंफर्ट जोन में रहते हैं पर बाहर जाते हैं तो समय पे कई बार खाना भी नहीं मिल पाता, टाइम पे रेस्ट नहीं मिल पाता, और एक जो एंग्जाइटी आप बोल रहे हैं घबराहट लोगों से मिलने में वो होती है, तो वो इसे ऐसा नहीं, इसे नहीं होता, होता है लेकिन हम किसी ना किसी तरह से उन चीजों को मैनेज करते हैं, खुद भी मैनेज करने की कोशिश करता है। जैसे ये मेडिटेशन जब ज्यादा दिक्कत में होता है तो खुद अपनी ईयर प्लग लगा करके मेडिटेशन करता है ताकि अपने आप को रिलैक्स फील करे। अब जो भी परिस्थितियां उसमें किस तरीके से अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जिया जाए वो तो हमें सिखाना ही होगा अपने बच्चों को। और बस यही है, मैं इस प्रोग्राम के जरिए इस पूरी सोसाइटी से जो भी सुन रहे हैं मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी। एक लेख था जिसके अंदर से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑटिज्म और बौद्धिक दिव्यांगों के लिए या किसी भी दिव्यांग के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती, तो उसका जवाब ये था समाज। यानी ये समाज है हमारा जो

0: सबसे बड़ी समस्या व्यक्ति के लिए उसके तन से कम उसके मन में ज्यादा आता है, और वो मन की समस्या जो है उसके जन जो उसके आसपास में होते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। समाज अगर थोड़ा समझदार बन जाए तो किसी के लिए भी रहना या उस अपनी परिस्थितियों से पार हो पाना मुश्किल नहीं है। आपके परिजनों ने भी इसमें आपको बहुत साथ दिया या कैसा रहा उनका शुरू शुरू का, या आज कैसा है, कैसा रहा आपका सफर?
1: हम लोगों की पहले तो जॉइंट फैमिली थी, तो मेरे जो फादर इन लॉ थे वो खुद एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे। हालांकि वो ऑटिज्म वगैरह का था, मैं ही सुना था उस टाइम किसी ने भी, 96 की बात है तो नेचुरली इतना ज्यादा कुछ पता ही नहीं था, पर उन्होंने काफी सपोर्ट किया। और उसके बाद फिर जब हम न्यूक्लियर फैमिली के रूप में शिफ्ट हो गए फादर इन लॉ के बाद, तब मेरे हस्बैंड ने पूरा कोऑपरेट किया और मेरी जो डॉटर है वो भी इसको बहुत गाइड किया करती थी। बल्कि इसने इसके अंदर जो भी एम्बिशियस आई वो सब उसको देख के ही आती थी कि जैसा दीदी ने किया वैसे ही मैं भी करूंगा। तो वो भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए टर्निंग पॉइंट रहा। दूसरे, जब मैं ये मानती हूँ कि जब आप कोई संघर्ष शुरू करते हो और आपने कोई एक टारगेट बना लिया है, तो एक तो फिल्म का डायलॉग था ये कि जब आप किसी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो जो सारी कायनात है वो उसी दिशा में आपको सपोर्ट करती है। ये सच्चाई मैं अपने जीवन से ये मानती हूँ कि हमें कहीं ना कहीं ऐसे भगवान के भेजे हुए एंजल्स मिले जिन्होंने हमें हमारे इस रास्ते को थोड़ा आसान बनाया। और अगर समाज में जागरूकता का अभाव कम है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ना जानते हुए भी संवेदनशील है, तो वही है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। समाज के लोग अगर हमारे साथ जुड़ते हैं और ये सिस्टम भी इन चीजों को लेकर के थोड़ा अपनी जो दायित्व है उसको बेहतर तरीके से जाने समझे, तो चीजें इतनी दिक्कत ना हो जो हम कहते हैं कि दिव्यांगता एक अभिशाप है, शायद वो ना रहे अगर हम इन चीजों पे गौर करें और ध्यान देते।
0: अभी आपने लोगों को एक ऐसा महामंत्र दिया जो कि मैं समझता हूँ हम जानते हैं लेकिन कभी उस पर हम गौर नहीं करते हैं, और जितना हम इस पर गौर करना भूल जाते हैं इतना हम हमारे आसपास में ऐसे लोगों के लिए समस्या खड़ी कर देते हैं। तो ये जो एक सद्भावना है दिल में, ये होना दिमाग में, ये समझ होना कि मैं अपने आप को किस प्रकार से रखूं ताकि सामने वाले को मदद मिल सके, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी सहायता हो सके, ये बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे अक्षय जी के पास उनकी बहन है और भी लोग हैं जो उनको प्रेरित करते हैं, ऐसे श्रोता साथियों आपके भी आसपास में कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं, अगर आप उनके लिए एक सहयोगी बन करके उभरते हैं तो उनको बहुत बहुत सुकून मिलेगा कि कोई है हमारे साथ खड़े होने वाला। अभी हम वापस जाएंगे अक्षय जी के पास कुछ सवाल पूछने के लिए। अक्षय जी, आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है?
2: ये है ना, ये छोले भटूरे पिज्जा
0: छोले भटूरे पिज्जा, वेरी गुड। इंडिया का भी है और विदेश का भी है। और रंगों में सबसे अच्छा रंग क्या
2: कलर
0: लगता है? रंगों में सबसे पसंदीदा रंग कौन सा है?
2: हरा कलर,
0: हरा क्यों पसंद है आपको?
2: क्योंकि आदानी हो जाए।
0: अच्छा, और जगह में तो आपने बताया आपको बैंगलोर सबसे ज्यादा पसंद है ना?
2: हाँ, और है ना दिसंबर में वहां भी गया था, जमशेदपुर सफल अवार्ड मिले थे मम्मी के साथ।
0: जमशेदपुर भी गए हैं हम तो। आप जितनी भी जगह जाते हैं हर जगह का आपको कुछ ना कुछ अच्छा लगता होगा, है ना?
2: हाँ, और है ना लास्ट मुझे समाज ने अवार्ड दिला था ग्लोबल एक्सीलेंसी।
0: हाँ, और आप अपने जैसे जो साथी हैं आपके या आप जानते हैं जिनको आप जो भी सुन रहे हैं आज, उनको अगर आप कुछ बोलना चाहें, कुछ गुड विशेस देना चाहें या कुछ उनको अच्छा बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे,
2: पता नहीं,
0: क्या करना चाहिए? अगर कोई खेलने जा रहा है तो उसको क्या करना चाहिए?
3: मेहनत करनी चाहिए।
2: मेहनत
0: मेहनत करनी चाहिए। और आप मेडिटेशन करते हैं तो लोगों को मेडिटेशन भी करना चाहिए, है ना?
2: हाँ
0: मेडिटेशन करते तो आपको कैसा लगता है?
2: सही। क्या
0: सही लगता है। आप भगवान से भी बातें करते हैं?
2: क्या
0: भगवान से बात करते हैं आप?
2: हाँ,
0: क्या बोलते हैं आप उनको?
2: मालूम नहीं, बता नहीं हूँ क्या बोले। तो
3: सही
2: करता है ना मेरा
0: हाँ
2: मन,
0: तो
2: मेरा मन अच्छा ये सब।
0: और आप कभी माउंट आबू आए हैं?
2: एक ही बार आए हो माउंट आबू? माउंट आबू
0: माउंट आबू तो आपके घर के ज्यादा नजदीक है, आपको माउंट आबू जल्दी आना चाहिए। आप माउंट आबू आएंगे तो आप हम लोगों से सबसे मिल सकते हैं वहां पर,
2: आपका भाई माउंट आबू
0: आप जब बोलेंगे।
2: इसी साल
0: हाँ बिल्कुल, इस साल
2: इतना
0: आना जरूरी।
2: सितंबर।
0: माउंट आबू में पहाड़ है, झरने हैं, जंगल है, जानवर है। जानवर पसंद है आपको? कौन सा जानवर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?
2: पता नहीं, हम

0: ओ
1: और
0: कैट,
1: घर पे पेंटिंग भी करता हूँ, चेस भी खेलता हूँ।
0: आपकी पेंटिंग कभी आप दिखाइएगा हमें जरूर।
1: और है ना, मेरा 20 तारीख को दूसरा टूर्नामेंट है चेस का, झाला नाम है।
0: अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, चेस खेलना आपको किसने सिखाया?
1: कोच ने सिखाया था, चेस के सर ने, टीचर
0: अच्छा,
1: ने, कोच ने।
0: चेस में तो इतना सोचना पड़ता है, मेरे को ही कभी कभी ऐसा लगता है कि बाप रे, मेरे से नहीं होगा। आपने कैसे कर लिया इसको? डिफिकल्ट
1: सीखा
0: है
1: है,
0: चेस या आसान है,
1: आसान है सबके
0: सबके लिए या सिर्फ आपके लिए?
1: लिए।
0: देखिए श्रोता साथियों, अक्षय जी कह रहे सबके लिए चेस खेलना आसान है। आप
1: और है ना, चेस में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट खेलूंगा, फिर स्टेट, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल खेलूंगा चेस में।
0: बिल्कुल, हम सबकी ये शुभकामनाएं कि आप इंटरनेशनल तक जाएं, और केवल चेस में ही नहीं, जो भी चीज आप करें उसमें आप पूरे विश्व भर में भारत का नाम रोशन करें। आखिरी सवाल आपसे ये पूछना था कि आपको आपके नाम का मतलब पता है, अक्षय शब्द का मतलब पता है?
1: पता नहीं,
0: अक्षय मतलब वो जो कभी भी फिनिश नहीं होता है, जिसका कभी एंड नहीं होता है, जो हमेशा
1: हाँ,
0: चलता रहता है।
1: वे भी। और मेरे को ना, मेरे को इस स्ट्रेस हो रहा है, एनजाइटी हो रही है, मैं बहुत परेशानी में हूँ।
0: हाँ, लेकिन आप तो इतने बहादुर हैं ऑलरेडी, आपने इतना सब कुछ किया तो आपकी एंजाइटी, आपकी परेशानी जल्दी खत्म हो जाएगी। हम सब आपके साथ हैं,
1: कितने दिन में?
0: बहुत जल्दी, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे खत्म हो जाएगी। हम सब आपके लिए गुड विशेस रखते हैं, हम सब आपके लिए अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, और भगवान भी आपके लिए अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, तो आपकी एंग्जाइटी, आपकी परेशानी एकदम ऐसे चुटकी बजाते खत्म हो जाएगी, ठीक है ना? प्रतिभा जी, अक्षय जी से बात करके तो बहुत अच्छा लगा, और आपसे बात करके भी बहुत कुछ जानने सीखने को मिला। आप अगर कोई ऐसा मैसेज देना चाहें हमारे श्रोताओं को, जो एक माँ के तौर पे आप देना चाहती हैं, या एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पे आप देना चाहती हैं, और एक दोस्त के तौर पे देना चाहती हैं, तो क्या वो मैसेज होगा?
1: एक इंसान के तौर पर ही मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि माँ एक इंसान है, सोसाइटी में भी हम लोग सब एक इंसान है। तो हमारे अंदर, हम कितनी ही ईश्वर की पूजा करते हैं, तो ईश्वर भी हमें यही कहता है कि हर इंसान को इंसान के प्रति बहुत प्रेम और दयालु होना चाहिए। वही चीजें हमें रखनी चाहिए। हमारे घर में ही कोई दिव्यांग हो तभी हमारी सोच बदले, ये जरूरी नहीं है। हमें वैसे भी ऐसे इंसानों के प्रति जिन्हें ज्यादा प्रेम और स्नेह की जरूरत है, उनके प्रति संवेदनशील होना ही चाहिए। यही ईश्वर की शायद सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि हम ही इन्हें जाने अनजाने में न जाने कितना दुख और तनाव दे जाते हैं, जो इनके दिमाग में घर करता रहता है, और वो इनके अभिभावकों को बहुत तोड़ता है, और इन्हें तो खैर तोड़ता ही तोड़ता है। और अगर एक सच्चाई देखा जाए, क्योंकि मैं इस फील्ड में बरसों से काम कर रही हूँ, हमारे जैसे अभिभावकों का सबसे बड़ा जो दुख है या सोच है, वो यही है कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। क्योंकि ये
0: जी
1: लोग इस समाज से इतना नहीं लड़ सकते या जूझ सकते जैसा आप और हम कर सकते हैं, तो वो ऐसा समाज हम क्यों ना बनाए जहाँ पे इन लोगों के लिए जीना थोड़ा आसान हो, चीजें थोड़ी बेहतर हो। फूल, अब आप हम देखते हैं कि अलग अलग रंग के फूल भगवान ने बनाए हैं, तो ऐसे इंसान भी हर अलग अलग है, किसी में कोई कमी है तो वो खूबी भी तो है साथ। तो ऑड वन
0: जी
1: आउट वाला हमारा जो रवैया है वो नहीं हो, जो भी है जैसा भी, उसको हम बहुत आगे बढ़ावा दें, दिल से उसको एक सपोर्ट करें और उसकी बाधाएं दूर करें, ऐसे समाज की हम कल्पना करें। और ये असंभव नहीं है, ये हो सकता है, सिर्फ अपने को चेंज करना है।
0: ये एक मुझे याद दिलाता है इस चीज का कि भविष्य का डर हर एक को होता है, चाहे वो दिव्यांग हो या ना हो, भविष्य से लोग अक्सर डरते हैं। और इसका एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि उनको अपने में उतना भरोसा नहीं होता, या अपने आसपास में इतना वो भरोसा देख नहीं पाते हैं कि उससे वो कनेक्ट कर सके। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि कुछ लोगों को विशेष आवश्यकता होती है भविष्य की प्रूफिंग करने की, तो कभी आपका भी संकल्प चलता है ऐसा कि क्या ऐसा किया जाए, या कुछ ऐसे आइडियाज सामने रखे जाए जो समाज अपने में धारण करे, जिससे अक्षय जी और या उनके जैसे जो एक समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उनको सहयोग मिल सके?
1: जी हाँ, हम लोग देखिए, जैसा मैंने बताया कि समाज का नजरिया कैसे चेंज हो, तो पहली चीज तो अवेयरनेस, उस पर हम डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं। और हर जगह हम सिर्फ दिव्यांगों और दिव्यांगों के अभिभावकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सामान्य जन, ब्यूरोक्रेसी, जैसा मैंने बताया, इन सबको हम, जिसे कहते हैं कि इंक्लूसिव सेटअप में काम करते हैं, ताकि वो भी हो, दिव्यांग भी हो, और वो लोग समझे जो ब्यूरोक्रेट्स है, राजनेता है, सरकार के प्रतिनिधि और समाज के लोग, वो सब जुड़े हमारे बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ, उनकी सुने उनको समझे, इसके प्रोग्राम हमारे करते रहते हैं। और अभी फिर 3 अगस्त को हमारा जयपुर में जवाहर कला केंद्र में ऐसा ही एक प्रोग्राम है म्यूजिकल, जिसके अंदर हमारे दिव्यांग बच्चे भी गाएंगे, उनके अभिभावक भी गाएंगे, और सामान्य जो शौकिया कलाकार है वो भी है ना, इन लोगों के साथ मिलके इनका हौसला बढ़ाने वाले हैं। तो ये तो हम जागरूकता के लिए कर रहे हैं। और रही बात दूसरा कि हम इस पे भी काम कर रहे हैं, करीब 7-8 महीनों से कुछ पेरेंट्स इस चीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं हमारे साथ, कि कुछ ऐसा कम्युनिटी लिविंग का हम करें जहाँ पे ऐसे पेरेंट्स एक साथ रहें और फिर एक दूसरे के साथ जॉइंट फैमिली की तरह से अगर रहे, तो कल को हम कोई एक पेरेंट्स ना भी रहे तो कम से कम दूसरे ही उनके बच्चों को संभाले। पर बहुत सारे
0: जी
1: चैलेंजेस आते हैं, आर्थिक भी संसाधनों की कमी है होती है, तो पर उम्मीद करते हैं कि एक दिन इस दिशा में कुछ कर पाए, और सरकार से भी इस दिशा में हम चाहेंगे कि कुछ मदद मिले, और कुछ ऐसे संवेदनशील लोग जो कि अच्छे अच्छे चीजों से जुड़े हुए हैं वो भी इस दिशा में हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए सोचे कि कुछ हो सके। हम तो अपने लेवल पे कर ही रहे हैं प्रयास, पर बिना समाज के कुछ भी चीज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो सबको इन चीजों के बारे में सोचना ही
0: जी
1: चाहिए।
0: और पूरा विश्व एक परिवार जब हम ये कहते हैं, तो ये
1: बिल्कुल
0: सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसको समझने और दिल
1: बिल्कुल
0: से इसको जीने की बात है। पूरा विश्व, पूरा
1: बिल्कुल
0: समाज हमारा परिवार है, और इस वजह से अगर कोई भी चाहे तो कुछ भी एक बदलाव ला सकता है। किसी का डायरेक्ट कनेक्शन होना इसमें आवश्यक नहीं है।
1: सही बात
0: प्रतिभा
1: है।
0: जी, आपसे बात करते हुए बहुत बहुत अच्छा लगा। आप वाकई में बहुत प्रतिभावान हैं, इस वजह से ईश्वर ने आपका नाम आपके माता पिता के द्वारा प्रतिभा रखवाया, और आपको ही चुना अक्षय जी का नाम अक्षय रखवाने में, क्योंकि जैसे कि उनका नाम का अर्थ है अक्षय, जिसकी कभी जो कभी क्षय नहीं होता। एक ऐसा स्पिरिट, एक ऐसा जज्बा जो लोगों को छू जाता है और उन लोगों को भी प्रभावित करता है कि वो भी आगे बढ़े। आपको वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं चाहूंगा कि आप कभी दोबारा हमारे साथ जुड़े, और भी ऐसी जो अनुभव की बातें हैं वो हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि इस विषय में जागरूकता लाना वाकई में हमारा कर्तव्य बनता है, और इस कर्तव्य को रेडियो मधुबन जरूर निभाना चाहेगा। उम्मीद करेंगे कि आप इसका अवसर हमें जरूर देंगे।
1: नहीं बिल्कुल, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि रेडियो मधुबन तो वैसे ही इतने अच्छे कार्यों से जुड़ा हुआ है, और जो ब्रह्म कुमारी संस्थान है मैं उसके बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। अक्षय हर शनिवार को वहां जाता है, पहले तो ये रोज जाया करता था। जब ये बहुत ज्यादा तनाव में था तो वहां जो दीदी है उन्होंने इसको बहुत संभाला, और जो मुरली करवाते हैं उसके जरिए इसको बहुत मॉरल सपोर्ट मिला, और आज भी जैसा इसने बताया वही ये सुनता है। तो आपके जरिए तो वैसे ही बहुत अच्छे स्पिरिचुअल के काम हो रहे हैं, कि किस तरह से हम हमारा पर्सनैलिटी ग्रोथ हो और हमारी एक सोच विचार बहुत पवित्र हो। तो आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा अवसर आपने हमें दिया, और आपके श्रोताओं के जरिए हम सीधे कनेक्ट हो पाए अपनी बात कहने के लिए। और यकीनन अगर आप दोबारा भी कभी हमें बुलाना चाहेंगे तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि आप हमारे इस जागरूकता मिशन में आप हमारे सहयोगी बन रहे हैं। सच में दिल से बहुत बहुत आभार।
0: आभार तो ऊपर वाले का, जिसने इस
1: बिल्कुल
0: सुंदर दिन का एक पहले से प्लानिंग किया हुआ था, और मैं समझता हूँ हमारे श्रोता साथियों को वो मासूमियत, वो प्यूरिटी, वो पवित्रता, वो निश्चलता, वो भा जाएगी जब वो इस एपिसोड को सुनेंगे, क्योंकि ईश्वर का जो प्यार है या ईश्वर का जो स्वरूप है वो इसी निश्चलता में है, वो इसी बेदाग सादगी में है जो कि अक्षय जी में है। और इस सादगी को संभाल करके उसको आगे बढ़ाने में जो आपने, आपके परिवार ने मदद किया है, उसके लिए मैं समझता हूँ ईश्वर भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता रहेगा। आपका,
1: धन्यवाद।
0: अक्षय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ बात किए, हमको बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा? फिर दोबारा कभी आप बात करना चाहेंगे हमारे साथ? बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जो आप मेडिटेशन करते हैं ना, कान में लगा करके सुनते हैं, वो जरूर करते रहिएगा, उससे आपका एंग्जाइटी, आपकी परेशानी एकदम ऐसे खत्म हो जाएगी।
2: हाँ
0: ठीक है,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मित्रांशिवाय आयुष्य अपूर्णच, हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर करायचं.
1: तेरे जैसा यार कहां, ऐसा यार आना.
0: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं.
2: लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा.
0: मनात बीट्स वाजल्या की शरीर अपोप थिरकत. त्याच सोबत
3: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध.
0: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा.
1: पहला नशा, पहला खुमार.
0: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
4: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन, जहां हम विचारों की गहराइयों में उतरते हैं, ज्ञान के नए आयाम खोजते हैं और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मनन करते हैं. इस कार्यक्रम में हम दर्शन, संस्कृति, विज्ञान, समाज और आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा करते हैं. हमारा उद्देश्य है आपके मन में नए विचारों का संचार करना और आपको चिंतन की एक नई दिशा देना. तो आइए ज्ञान की इस रोशनी में आगे बढ़ें और नए दृष्टिकोणों को समझें. ज्ञान चिंतन, एक नई सोच, एक नई दिशा. नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन. आप सुन रहे हैं ज्ञान चिंतन. हमेशा की तरह आज मैं फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं. बदलती हुई जीवन शैली, तेज होती रफ्तार और बढ़ती अपेक्षाओं के इस दौर में एक विचार बार बार हमारे मन में प्रश्न बनकर उभरता है, क्या आधुनिक सुविधाओं के बीच हम सच्चा सुख पा रहे हैं? शायद इसी प्रश्न का उत्तर छिपा है एक सरल लेकिन गहरे सूत्र में. सरल जीवन, उच्च विचार. हाँ मित्रों, यही है हमारा आज का विषय, सरल जीवन, उच्च विचार. आज का युग अत्यंत तेज, चमकदार और प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है. चारों ओर सुविधाओं की भरमार है. तकनीक ने जीवन को आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ साथ तनाव, असंतोष और बेचैनी भी बढ़ती जा रही है. ऐसे समय में महात्मा गांधी द्वारा दिया गया यह विचार पहले से अधिक कहीं प्रासंगिक प्रतीत होता है. सरल जीवन का अर्थ अभाव या त्याग नहीं है, बल्कि आवश्यकता और अनावश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करना है. आज हम अक्सर वही खरीदते हैं जिसकी हमें वास्तव में जरूरत नहीं होती, केवल दिखावे या दूसरों से आगे निकलने की चाह में. अधिक वस्तुएं, अधिक खर्च और अधिक अपेक्षाएं, यही आज के तनाव का बड़ा कारण बनती जा रही हैं. सरल जीवन हमें सिखाता है कि कम में भी संतोष पाया जा सकता है और सादगी में भी सुख छिपा है. वहीं उच्च विचार जीवन को सही दिशा देने का कार्य करते हैं. उच्च विचार का अर्थ है सकारात्मक सोच, नैतिक मूल्यों में विश्वास और मानवता के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण. आज जब स्वार्थ और त्वरित सफलता की होड़ है, तब उच्च विचार हमें ईमानदारी, करुणा, सहनशीलता और सहयोग जैसे गुणों की याद दिलाते हैं. आज की युवा पीढ़ी पर कैरियर, प्रतिस्पर्धा और सफलता का विशेष दबाव है. इस दौड़ में मानसिक शांति और संतुलन अक्सर पीछे छूट जाता है. सरल जीवन, उच्च विचार का सिद्धांत यह समझाता है कि सफलता केवल धन या पद से नहीं मापी जाती, बल्कि आंतरिक संतोष और मानसिक शांति से भी आंकी जाती है. पारिवारिक जीवन में भी यह सूत्र अत्यंत उपयोगी है. संवाद की कमी, अपेक्षाओं की अधिकता और समय का अभाव रिश्तों को कमजोर बना रहा है. सरल जीवन अपनाने से समय मिलता है और उच्च विचार अपनाने से संबंधों में प्रेम, सम्मान और समझ बनी रहती है. पर्यावरण के संबंध में भी यह विचार अत्यंत आवश्यक है. अति उपभोग ने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है. यदि हम सरल जीवन अपनाएं और उच्च विचारों के साथ संसाधनों का उपयोग करें, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रख सकते हैं. कार्यक्षेत्र में भी सरलता और उच्च विचार दीर्घकालिक सफलता का आधार बनते हैं. ईमानदारी, पारदर्शिता और संवेदनशील नेतृत्व न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ाता है. प्रिय श्रोताओं, अंततः सरल जीवन, उच्च विचार कोई पुरानी कहावत नहीं, बल्कि आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है. जब जीवन सरल होता है तो मन शांत होता है, और जब विचार ऊंचे होते हैं तो जीवन सार्थक बनता है. आइए हम सब अपने दैनिक जीवन में इस सूत्र को अपनाएं और स्वयं भी सुखी बने तथा समाज को भी सकारात्मक दिशा दें। इन्हीं विचारों के साथ मैं विवेक जैन आपसे विदा लेता हूं। अपने भीतर जाकिए, स्वयं को जानिए और इस यात्रा का आनंद लीजिए। फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें इसी तरह प्यार से। खुश रहें, खुशियां बांटें। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि यह चर्चा आपके मन को स्पर्श कर गई होगी और इसने नए विचारों को जन्म दिया होगा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर एक नई सोच और विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। खुश रहें, खुशियां बांटें। नमस्कार।
5: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
6: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
5: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, मैं हूं पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: Awakening with Brahma Kumaris।
2: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी, वेलकम टू बीइंग शक्ति।
3: ओम शांति। थैंक यू सो मच।
2: आपसे मेरी बात हो रही थी अबाउट दैट आर्टिकल जो न्यूज़पेपर में पढ़ा था,
3: ऑल इन द माइंड।
2: हाँ, तो उसका थोड़ा कुछ रह गया है आगे का एक स्टेप। Sure. वो पढ़ना चाहूंगा। थॉट इज मोर पावरफुल देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, कलर और साउंड। इट इज द स्टार्ट ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। थॉट कैन ट्रांसफर without any boundaries of time, space or distance. As we all know, when light travels through space, by the time it reaches us, it takes a long period of time and it also diminishes. It's the same with sound. But thought has no such limiting factor. Sitting here, I can transfer a thought across the globe.
3: हम कितनी बार ऐसा सोचते हैं ना कि वो तो हमारे सामने थोड़ी है, अभी वो तो बहुत दूर है। क्या उनके बारे में भी सोची हुई बात उन पर असर करेगी? वो दूसरे शहर में है, दूसरे देश में है, अभी वो अपने ऑफिस में है, हम घर पे हैं। क्या अभी भी असर करेगी उनके ऊपर जो हम सोच रहे हैं? The science is now giving us the answer.
2: But science has said one step ahead also, जो कि हमारे पहले से शास्त्र में भी लिखा था। इस लाइन में तो उसने बोल दिया across the globe कि जिसके बारे में नहीं सोचूं मैं, वैसे भी मैं बैठकर एक गंदी सी thought, समझो बहुत ही एक cruel thought, angry thought, violent thoughts भेजूं, तो वो जो weaker minds है वो कैच कर ही लेते हैं। अननोन वीकर माइंड्स,
3: बिकॉज हमारी थॉट्स वाइब्रेशन है यूनिवर्स में।
2: जी,
3: इट्स लाइक हम ही एनर्जी क्रिएट करते हैं और हमें ही उसके अंदर जीना है और वो सब उसके प्रभाव में आने वाले हैं। तो माय एवरी थॉट, दैट्स व्हाई नॉट ओनली जस्ट अफेक्ट्स मी, इट अफेक्ट्स द पर्सन फॉर हुम इट वॉज क्रिएटेड एंड इट अफेक्ट्स द यूनिवर्स। इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं ना, हर संकल्प का थॉट स्व पे, सामने वाली आत्मा पर, मतलब जिसके लिए सोचा है, और प्रकृति पर, हर चीज पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड?
2: मैं अगर सिर्फ छोटे से घर की बात करूं,
3: हाँ?
2: मैं अपनी समझो बहू के बारे में गलत सोचूं,
3: हाँ?
2: तो बहू के साथ साथ वो बेटे के पास भी जाएगी, उसके पति के पास भी जाएगी, मेरी वाइफ के पास। एटमॉस्फेयर कितना पूरे घर का वातावरण खराब होता है।
3: पूरे घर का वातावरण तो एटमॉस्फेयर खराब होता
2: एक
3: है।
2: एक एग्जांपल दो, वैसे अगर उसको एक्सपैंड करते जाओ तो वहां से पूरा ग्लोबल, मतलब वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड।
3: इसीलिए परमात्मा कहते हैं आपका हर थॉट सृष्टि को या तो सतो प्रधान बना सकता है या तमो प्रधान बना सकता है।
2: लास्ट टाइम जब आप पढ़ रहे थे मुरली में,
3: हाँ?
2: तो आपने कहा था कि आप बच्चे जो है जगत परिवर्तन करने
3: विश्व
2: वाले,
3: विश्व कल्याणकारी आत्माएं।
2: ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड द मीनिंग। देखो किस चीज का मीनिंग कब समझ में आता है।
3: विश्व कल्याणकारी आत्मा इसलिए नहीं कि आप विश्व को चेंज कर देंगे, वी कांट चेंज द वर्ल्ड, लेकिन व्हेन वी चेंज then we are contributing towards creating a better world.
2: It's almost like changing also, helping
3: like
2: the change.
3: Changing. Yes, absolutely. आज आप देखो अगर overall सब लोग चाहते हैं कि एक you know world ऐसा हो जहाँ peace है, harmony है, love है। क्या ये युद्ध चल रहा है, क्यों झगड़े चल रहे हैं, क्यों गलत हो रहा है? Everyone wants that. Intention बहुत अच्छी है, intention बहुत अच्छी है, भावना बहुत अच्छी है, लेकिन वो चाहने से नहीं होगा ना, सिर्फ उसके लिए कुछ करना पड़ेगा।
2: तो जितनी भी आपकी कैपेसिटी है,
3: हाँ,
2: उस हिसाब से हम लोग करें।
3: अपनी कैपेसिटी मतलब आपकी कैपेसिटी कितनी अच्छी थॉट क्रिएट करने की है, तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से थॉट क्रिएट करना। आपकी कैपेसिटी कितनी पावरफुल थॉट क्रिएट करने की है, अपनी कैपेसिटी से थॉट क्रिएट करना। आर थॉट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू मेक द वर्ल्ड व्हाट द वर्ल्ड इज टुडे। आज हम सब जिम्मेवार हैं इस विश्व की हालत के लिए।
2: तो शायद इसीलिए लोग जब कहते होंगे ना कि जो ऋषि मुनि वगैरह सब जो मेडिटेशन में बैठकर पूरी धरती के ऊपर प्यार पीस भेज रहे हैं,
3: तपस्या का वाइब्रेशन,
2: तो मैं सब हंसता था उनके ऊपर, बैठ के हमको भेज रहे।
3: परमात्मा हमेशा कहते हैं कि द्वापर युग से जितने भी संत महात्माएं ऋषि मुनि सब जिन्होंने तपस्या की, तो परमात्मा हमेशा कहते उनकी तपस्या ने, उनकी पवित्रता की शक्ति ने इस सृष्टि को थमा के तो रखा। कि एक तरफ नेगेटिव एनर्जीज भी तो कितनी बड़ी ना द्वापर युग से, वायलेंस टेरर हेट्रेड ये सब बढ़ा, लेकिन परमात्मा कहते इनकी पवित्रता की शक्ति, इनकी तपस्या की शक्ति ने सृष्टि को थमा कर रखा।
2: जैसे कहते हैं ना घर में, इस औरत ने, इस बहू आकर पूरे घर को इसने अकेले ने संभाल लिया।
3: yes.
2: जैसे किसी घर में कोई मतलब स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ना भक्ति है, ना कुछ है, चल रही है लाइफ, तो कोई एक बहू आ जाती है, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करती है।
3: एक जना आता है ना, एक जना पूरे घर के वातावरण को चेंज करता है।
2: Either ways.
3: हम या तो उसको सत्व प्रधान बना सकते हैं या हम उसको तमो प्रधान बना सकते हैं। आज हम अपनी दुनिया को भी या तो स्वर्ग बना सकते हैं या हम नर्क बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हम यहाँ क्या बना रहे हैं। जैसी हमारी यहाँ संकल्प वैसी सृष्टि। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि संकल्प से सृष्टि रची। इस लाइन में कितनी पावर है, संकल्प से सृष्टि रची। जब हम कहते हैं संकल्प से सृष्टि रची, इट डजंट ओनली मीन कि एक संकल्प आया तो सृष्टि बन गई, यू नो, बिकॉज हम उस लाइन को ऐसे लेते हैं। संकल्प से सृष्टि रची, कि एक थॉट क्रिएट किया, दुनिया बनाते हैं और दुनिया बन गई। संकल्प से सृष्टि रची मतलब जैसा आपका संकल्प वैसी आपकी सृष्टि। संकल्प से सृष्टि रची, तो
2: जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।
3: क्योंकि जैसा संकल्प वैसी वृत्ति, जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।
2: ओके,
3: सिंपल। जैसा थॉट वैसा एटीट्यूड, वृत्ति जैसा एटीट्यूड वैसा नजरिया, दृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ये सिर्फ एक नहीं है ना, क्योंकि शास्त्रों में क्या कहते हैं, ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची। परमात्मा कहते हैं आपके सबके संकल्प से सृष्टि रची। ब्रह्मा मीन्स रचयिता, क्रिएटर। हर आत्मा अपने संकल्प का क्रिएटर है, हर आत्मा अपने संकल्प का क्रिएटर है। जैसा संकल्प हम क्रिएट करेंगे वो वाइब्रेशंस रेडिएट होंगे। अब क्योंकि एक बहुत बहुत बहुत बड़ा, इनफैक्ट हम कह सकते ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस बॉडी कॉन्शियसनेस में है, अहंकार वश संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, तो क्योंकि हम में से मेजोरिटी के थॉट्स वैसे हैं, आज हमारी सृष्टि वैसी है, जिसको हम कहते कलयुग है। हम इसको कहते कलयुग है। अगर हमें सतयुग चाहिए, हमें वो न्यू ब्यूटीफुल वर्ल्ड क्रिएट करना है, तो वो वर्ल्ड अपने आप नहीं आएगा। एवरीबडी सेज वी वांट अ न्यू वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड मींस अ बेटर वर्ल्ड। वी डूइंग सेमिनार्स, वी डूइंग प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स, सोशल वर्क, क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड। हमें एक नई दुनिया लानी है, हम सबको लानी है।
2: लोग समझते हैं न्यू वर्ल्ड मीन्स कि पूरा खत्म हो जाएगा, आग लग जाएगी, मर जाएंगे, फिर नई दुनिया। इट्स लाइक अ न्यू ईयर और चेंजिंग ओवर अ न्यू लीफ।
3: वेरी ट्रू। ऑन विच मीन्स कि आज जैसा हम सोच रहे हैं उसका रिजल्ट ये सृष्टि ऐसी है, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि एक डिफरेंट सृष्टि हमें चाहिए, एक बेटर वर्ल्ड हमें चाहिए, फिर हम अपने आप से पूछें बेटर वर्ल्ड में हमें क्या चाहिए। What am I talking about when I am saying better world, क्या चाहिए better world में?
2: सारी दुनिया तो शांति मांग रही है ना,
3: शांति मांग रही
2: है, peace मांग रही
3: है। आज छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल में प्रोजेक्ट बनाते हैं, we want a better world, बड़ा प्यारा सा एक ग्लोब बनाएंगे, उसमें सब लोग हाथ पकड़ के खड़े हैं, we want a better world.
2: Nobody wants stress,
3: ठीक है। बेसिकली जब हम कहते हैं better world, तो हम कहते हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो, राइट, यूनिटी हो, हार्मनी हो। छोटे छोटे बच्चे भी ये डायग्राम बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं। अब सिर्फ उसको एक लाइन और नीचे लेके जाना है, द वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय माई थॉट्स, ये सृष्टि मेरे संकल्पों से बनती है, तो जैसी सृष्टि चाहिए वैसे संकल्प क्रिएट करना शुरू कर देते हैं।
2: अब समझ में आया मेरे, वेरी गुड। मैं इतने दिन से सोच रहा था, मैंने किताब में पढ़ा था कि लाइफ इज द मैनिफेस्टेशन
3: ऑफ योर थॉट्स,
2: तो मुझे आज एकदम क्लियर हो गया।
3: एंड नॉट ओनली द लाइफ, योर लाइफ,
2: आई एम टॉकिंग अबाउट माई लाइफ,
3: हमारी लाइफ इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर थॉट्स। वो तो हम देख ही रहे हैं इतने दिन से, वो तो प्रैक्टिकल दिखता है। दिस वर्ल्ड इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर थॉट्स, सृष्टि की क्वालिटी, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू सिट बैक, अपने अपने ड्रॉइंग रूम में बैठे और शिकायत करते रहे दुनिया के बारे में। दुनिया ऐसी है जी, दुनिया ऐसी है जी, वो लोग वैसे हैं, वो ऐसे हैं, यहाँ टेरर हो रहा है, यहाँ वायलेंस है, वो युद्ध कर रहा है। दिखने में कुछ लोग करते हुए दिखेंगे वो, कि ये कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ लोग भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सृष्टि पर तमो प्रधानता अति को पहुंच चुकी है, एक्सट्रीम पर पहुंच गई है। आज प्रकृति भी, प्रकृति में भी वो सतो प्रधानता नहीं रही जो पहले थी।
2: एक्चुअली
3: है ना,
2: हमारी वजह से,
3: हमारी
2: थॉट्स की वजह से,
3: हमारी थॉट्स की वजह से। तो अब प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है, इस दुनिया को भी सतो प्रधान बनाना है। तो इट्स वेरी इजी टू से टेररिज्म खत्म करो, हम चाहते हैं कि दुनिया में टेररिज्म खत्म हो। यस, हम चाहते हैं कि दुनिया में टेररिज्म खत्म हो, उसके लिए काम भी करें, लेकिन उससे भी सूक्ष्म एक काम जो हम सब करें, अपने मन का टेररिज्म पहले खत्म करें। जब तक हम मन के अंदर का टेरर खत्म नहीं करेंगे, बाहर कोई किसी और पे हमला करता है, हम यहाँ सारा दिन अपने पे अटैक करते हैं, जब अगर हम सब अपने अंदर के टेरर को खत्म करें, इस दुनिया से टेरर खत्म हो जाएगा।
2: मैं थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था ऑन पोल्यूशन, सीधा मेरा थॉट गया यहाँ के पोल्यूशन को पहले निकालो।
3: सिंपल,
2: तो यहाँ के पोल्यूशन को निकालोगे तो दुनिया में पोल्यूट कौन करेगा।
3: सिंपल, आज अभी प्रोजेक्ट बनाया है कि हमें स्वच्छ भारत बनाना है। इंटेंशन कितनी ब्यूटीफुल है, इंटेंशन बहुत ब्यूटीफुल है, वी वॉन्ट अ ब्यूटीफुल क्लीन कंट्री। यस, लेकिन ब्यूटीफुल क्लीन कंट्री के लिए अब हम क्या करेंगे, हम सड़क साफ करेंगे, हम मोहल्ले को साफ करेंगे, विच इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल कि वो हमें करना है, लेकिन ब्यूटीफुल क्लीन कंट्री तब बनेगा जब यहाँ गिरे हुए एक एक कचरे को उठाएंगे। आज देखो कितनी अवेयरनेस है, लोग अटेंशन रख रहे हैं। देखो जैसे ही एक इंटेंशन में आया, हम अटेंशन रखना शुरू कर देते हैं। सो मेनी टाइम्स नाउडेज आई मीट पीपल एंड आई माई सेल्फ ऑल्सो सी कि पहले अगर कुछ इजीली फेंक भी देते थे, गाड़ी में खाया, किसी ने कुछ फेंक दिया, ऐसे ऐसे खाया रख दिया, अभी एकदम से अटेंशन रहता है। नहीं, स्वच्छ भारत अभियान, दिस इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स इट।
2: गोल्फ कोर्स से वापस आ रहा था तो कुछ जेब में पिस्ते पड़े थे, पिस्ताशूज, तो मैं छिलके निकाल निकाल के खा रहा था। पहले खिड़की मैंने खोल के ऐसे किया, फिर रोक के उसी थैली में डाल दिया। मैंने बोला बाद में खत्म तो होने वाला ही है,
3: क्योंकि आज हमें अवेयरनेस है कि हमारे ये प्रोजेक्ट चल रहा है ना हमारे देश में, हम सब उसको कंट्रीब्यूट करेंगे। कुछ लोग चाहे वो राजनेता है चाहे वो धर्म नेता है, कुछ लोग देश को नहीं बदल सकते, कुछ लोग इस समाज को, इस दुनिया को नहीं बदल सकते। इट विल ओनली हैपन व्हेन एवरीवन कम्स टुगेदर, इट विल ओनली हैपन। 1000 पीपल कैन नॉट चेंज अ कंट्री ऑफ 100 करोड़ पीपल, इट विल हैव टू बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ 100 करोड़ पीपल। 1000 लोग क्या कर सकते हैं, उन 100 करोड़ लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि चलिए लेट्स गेट टुगेदर एंड डू दिस। लेकिन हम सोचें वो लोग देश को बदल दें, ये लोग देश को बदल दें, ये होने वाला,
2: हम सब मिलके करेंगे।
3: एंड दैट इज आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर नाउ, विच इज द पावर टू कोऑपरेट, सहयोग देने की शक्ति। क्या हम सब मिलकर इस कार्य में सहयोग देने के लिए रेडी हैं? विच विल स्टार्ट विद यहाँ। अगर हम सारा दिन याद रखें, मेरे संकल्पों से दुनिया बनती है, मेरे संकल्पों का प्रभाव इस पूरे विश्व पर पड़ रहा है, और जैसे आपने कहा इस विश्व पर तो पड़ ही रहा है। जैसे आपने कहा ना, फेंकने वाले थे फिर नहीं फेंका क्योंकि ध्यान था, वैसे ये भी ध्यान रहेगा ना तो बहुत सारी थॉट्स क्रिएट करने से रुक जाएंगे कि नहीं, व्हाट एम आई डूइंग।
2: बोलने वाला था लेकिन नहीं बोला,
3: बस
2: खाने वाला था ये गलत चीज नहीं खाई।
3: अब एक स्टेप और पीछे जाएंगे, सोच रहा था रोक दिया, सोच चल रही थी रियलाइज हुआ याद आया बंद कर दिया। एक स्टेप ही तो पीछे जाना है सिर्फ,
2: पहले सोच के बीच में आ जाता थॉट,
3: अब
2: सोच से थोड़ा पहले भी आ जाता है कि ये सोच
3: वो
2: पुल करता है थोड़ा, छोड़ो हटा
3: बस, इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हमें लगता था कि वो ये कैसे होगा, ये तो बहुत मुश्किल है, कुछ भी नहीं है।
2: मैंने दादियों को बोलते हुए सुना, एक दिन टीवी खोला था, बोले कभी नहीं बोलना ये बुरा है, दादी जानकी ने ये कहा था ये बुरा है कभी नहीं बोले, ठीक हो जाएगा।
3: हाँ
2: ठीक हो जाएगा,
3: हाँ।
2: उनके स्टाइल में जो बोले ठीक हो जाएगा,
3: हाँ।
2: तो वो मेरी समझ में नहीं आया था इतना कि मैं बोला सबको ठीक हो जाएगा, बोले तो हो कैसे हो जाएगा,
3: हाँ।
2: लेकिन एक कितनी अच्छी दुआ दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं।
3: एंड दादियां भी कहती हैं,
2: हाँ। इतना बुरा है,
3: हाँ।
2: तो कितनी बड़ी मतलब श्राप बद्दुआ,
3: आशीर्वाद का ऑपोजिट हो गया ना, मतलब हमारी हर थॉट किसी के लिए एक आशीर्वाद बन सकती है, और यही हमारी रॉन्ग क्वालिटी ऑफ थॉट किसी के लिए एक आशीर्वाद का ऑपोजिट भी तो बन सकती है ना। ये बुरा है, ये है ही ऐसा, ये तो पहले से ही ऐसा है, ये नहीं बदल सकता, ये तो ऐसा ही रहेगा, इसको कितना भी समझाओ ये समझता ही नहीं है, इसका तो संस्कार ही ऐसा है। द पावर,
2: दादी जानकी की छोटी सी लाइन कि किसी को मतलब बुरा बोलना ही नहीं,
3: हाँ।
2: बोलना हमेशा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा,
3: और ये एक एक लाइन उनके लिए ब्लेसिंग बन जाएगी, ये जो हम बहुत
2: उनके लिए ब्लेसिंग बन जाएगी और मेरा मन शांत हो जाएगा,
3: तो अपने लिए भी ब्लेसिंग बन जाएगी।
2: वहाँ स्टॉप हो गया ना मन बोलने के लिए, ठीक हो जाएगा जब बोल दिया तो आगे क्या बोलेगा मन।
3: व्हेन यू ब्लेस अदर्स द फर्स्ट पर्सन हु गेट्स ब्लेस्ड इज मी मायसेल्फ, आई कांट ब्लेस एनीबॉडी विदाउट ब्लेसिंग मायसेल्फ, नॉट पॉसिबल। जो हम जैसे हम हर बार सुनते हैं, जो हम दूसरे को देंगे पहले अपने को मिलेगा, तो दूसरे को आशीर्वाद दिया मतलब एक बहुत प्योर एलिवेटेड थॉट क्रिएट की, जैसे ही वो क्रिएट की पहले वो एनर्जी हमें मिली। अब यही ऑपोजिट कर दो, दूसरे को अगर आशीर्वाद का ऑपोजिट दिया, अब सिर्फ फर्क ये होता है आशीर्वाद जब हम देते हैं मतलब ब्लेसिंग देते हैं, हम बड़े कॉन्शियसली देते, कॉन्शियसली मतलब वी आर अवेयर कि हम किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं। यू नो, जैसे सपोज आपके घर में बच्चे आपको मिलने आए काम पर जाने से पहले, तो आप ब्लेसिंग देंगे, राइट? आप देंगे ना, बहुत बढ़िया होगा, तुम्हारा आज बहुत अच्छा होगा, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, ये हम ब्लेसिंग्स कॉन्शियसली देते हैं। ये हम कॉन्शियसली ब्लेसिंग्स देते हैं ना। अब जब हम ब्लेसिंग दे रहे हैं हम अवेयर हैं कि मैंने आशीर्वाद दिया, लेकिन जब हम आशीर्वाद का ऑपोजिट देते हैं हम अवेयर नहीं होते, क्योंकि हमने हमें क्या लगा था कि अगर ये आशीर्वाद है कि तुम्हारा सब अच्छा हो, तो हमने सोचा था आशीर्वाद का ऑपोजिट क्या होगा कि तुम्हारा सब बुरा हो, तो ऐसा तो हम किसी के लिए जल्दी जल्दी तो क्रिएट नहीं करता ऐसे कोई भी, तो हमने कभी रियलाइज नहीं किया कि हम कभी आशीर्वाद का ऑपोजिट भी क्रिएट करते हैं। लेकिन आशीर्वाद का ऑपोजिट ओनली मीन्स एन एनर्जी जो दूसरे को डिसएम्पावर करेगी।
2: मीन्स
3: एक ब्लेसिंग क्या होती है, एक एनर्जी जो दूसरे को इम्पावर करेगी। हम महात्माओं के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं, राइट? अब वो हम उनके पास क्यों जाते हैं कि वो हमारी कैपेसिटी से भी ज्यादा एक पावरफुल थॉट हमारे लिए क्रिएट कर देते हैं, हमारे बारे में क्रिएट करते हैं। सपोज आप एक काम शुरू करने वाले हैं नया, ठीक है, आप कितने आशीर्वाद लेकर आएंगे काम शुरू करने से पहले, कहते हैं ना हम बड़ों का, पेरेंट्स का, महात्माओं का, हम कहते आशीर्वाद लेकर आते हैं फिर काम शुरू करेंगे, ठीक। अब आप गए उनके पास, चाहे माता पिता के पास चाहे संत महात्माओं के पास, तो उन्होंने थॉट क्या क्रिएट करनी है हमारे लिए,
2: भला हो,
3: हाँ,
2: आपका अच्छा हो,
3: हाँ,
2: जरूर अच्छा होगा फल,
3: तो सफलता आपकी ये निश्चित है। तो जैसे ही वो हमारे लिए वो थॉट क्रिएट करते हैं, अगर हमारे माइंड में कोई एक एलिमेंट ऑफ डाउट भी था सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट या सक्सेस ऑफ द बिजनेस या सक्सेस ऑफ द मैरिज, यू नो, रिश्ते में भी लोग पहले आशीर्वाद लेने जाते हैं, तो जैसे ही महात्मा जी आशीर्वाद देते हैं ना, उसके बाद हमारा माइंड एकदम साइलेंट हो जाए, जी उन्होंने कह दिया
2: अब हो जाएगा,
3: अब हो जाएगा, ये एक्चुअली उनके कहने से तो होने नहीं वाला है, ये उनके कहने से हमने क्या लगता है, उन्होंने कहा तो वहाँ मैजिक होगा, उनके कहने से बिजनेस में मैजिक नहीं होता है।
2: आपके मन में,
3: उनके कहने से जिसने उस ब्लेसिंग को रिसीव किया उसके मन में मैजिक क्रिएट हो जाता है कि उसका मन यहाँ था, अब वो एक पावरफुल ब्लेसिंग बनने से वो यहाँ पहुंच गया, विच मीन्स उन्होंने अपनी ब्लेसिंग से हमें एम्पावर कर दिया। अब सपोज वो ही महात्मा जी कहें आपको, जब आप जाएं उनके पास और वो कहे देखो करके शुरू करो, देखते हैं क्या होता है रिजल्ट, इतना भी इजी लग नहीं रहा है जो आप करने की सोच रहे हो, फिर भी करके देखो, कर लो, लेकिन ध्यान रखना पिछली बार तो तुम्हारा गड़बड़ हो गया था सारा।

0: तो श्राप ये नहीं होता तुम असफल हो, तुम फेल हो जाओ, तुम्हारा बुरा हो, श्राप ये नहीं है। श्राप मीन्स हमारी कोई भी ऐसी थॉट या एनर्जी जो हमें और सामने वाले को डिसएम्पावर करती है, एंड ब्लेसिंग मीन्स हमारी कोई भी थॉट और एनर्जी जो हमें और सामने वाले को एम्पावर करती है।
1: लेकिन सिस्टर जब मोटिवेशन 100% हो तो कोई दुनिया का बंदा कोई ऐसी थॉट नहीं है जो आपको डिसएम्पावर
0: वो सकते। इसलिए क्योंकि हम उस समय इतने एम्पावर्ड हैं, हम सेल्फ इतना एम्पावर्ड है जो हमें उस समय किसी और की थॉट का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा।
1: अगर ऐसा होता तो मैं जाके आशीर्वाद मांगने भी नहीं जाता, मतलब तो मैं बैठा हूँ डायरेक्ट बात करता भगवान से, मेरा काम होगा।
0: वेरी ट्रू। लेकिन ब्लेसिंग्स और ब्लेसिंग्स का ऑपोजिट जो हम देख रहे हैं कि सारा दिन में हमारी नॉर्मल थिंकिंग, ब्लेसिंग्स मांगने जाने की बात नहीं है, हमारी जो नॉर्मल थिंकिंग है एक दूसरे के लिए, अपने लिए नॉर्मल रोज, वो रोज की हमारी थिंकिंग या तो एक ब्लेसिंग बन सकती है या एक ब्लेसिंग का ऑपोजिट बन सकती है, या तो वो किसी के लिए एक दुआ बन सकती है या वो किसी के लिए एक श्राप बन सकती है, डिपेंडिंग ऑन वो मुझे और उनको या इम्पावर करती है या डिसएम्पावर करती है। हम बहुत इजीली बैठकर दूसरों के लिए ऐसी थॉट्स क्रिएट कर देते हैं, ये है ऐसा, ये चेंज नहीं होता, ये बदलेगा क्या, इसको कभी समझ आएगा क्या, इसको तो समझ ही नहीं आता चाहे कितनी बार भी समझाऊं। हमारी एक एक थॉट या तो ब्लेसिंग बनेगी या ब्लेसिंग का ऑपोजिट बनेगी, वो या तो एनर्जीज को बढ़ाएगी, एनर्जीज को घटाएगी। एक स्पेसिफिक ब्लेसिंग और स्पेसिफिक कर्स तो हर एक को दिखता है कि ये एक ब्लेसिंग दिया, ये किसी ने बद्दुआ दी, जैसे हम बोल देते हैं वर्ड बहुत कैजुअली, लेकिन कितनी थॉट्स में नेगेटिव एनर्जी जो है वो भी तो ब्लेसिंग की ऑपोजिट एनर्जी है। सारा दिन में हम कितनी इजीली अपने लिए ये कह देते हैं, कई बार मेरे से ये नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल है,
1: मेरा विल पावर इतना
0: है ही नहीं, स्ट्रोंग नहीं है, मेरी विल पावर अच्छी नहीं है। सपोज अगर कोई महात्मा जी हमें कह देते तुमसे ये नहीं हो सकता, तुम्हारी विल पावर अच्छी नहीं है, तो हम उसको क्या समझते, ये हमें क्या मिला,
1: आशीर्वाद तो नहीं था,
0: आशीर्वाद का ऑपोजिट था ना। अगर दूसरों की कही हुई सोची हुई बात हमारे लिए आशीर्वाद या श्राप बन सकती है, तो हमारी हर सोच भी हमारे लिए और दूसरों के लिए या तो आशीर्वाद या श्राप बन सकती है। ध्यान से सोचे, ध्यान से सोचे। हम हर बार देखते हैं, पिछली बार आपने कहा साइंटिफिकली प्रूफ कि हमारी हर थॉट उन तक पहुंच रही है, तो हमारी हर थॉट दूसरे के लिए क्या एक ब्लेसिंग है या एक नेगेटिव एनर्जी है, तो वो एक ब्लेसिंग की ऑपोजिट एनर्जी है, एंड जो एनर्जी ब्लेसिंग की उनको जा रही है वो ब्लेसिंग पहले मुझे मिल रही है।
1: वो कहते हैं ना, बी केयरफुल व्हाइल थिंकिंग बिकॉज यू आर लिसनिंग,
0: यू आर द पर्सन ओनली हुज लिसनिंग, दूसरा तो सुने या नहीं सुने, कई बार दूसरा कैच करे या नहीं कैच करे, हम उसके प्रभाव से नहीं बच सकते। खुद खुद को दुआ दें, खुद खुद पर श्राप ना कर दें इस तरह की थॉट्स क्रिएट करके, ये हमें अटेंशन। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट ये कि हमारे संकल्पों से हमारी सृष्टि बनती है, हमारे संकल्प का इतना महत्व है, दैट्स द पावर ऑफ माय एवरी थॉट, कि मेरे संकल्प से ये सृष्टि, फिर मेरे संकल्प से ये सृष्टि, फिर मेरे संकल्प से मेरे आसपास जो सारे हैं वो सृष्टि, और फिर मेरे संकल्प से ये पूरी दुनिया, ये सृष्टि बनती है। तो कैन आई अफोर्ड टू क्रिएट रॉन्ग थॉट्स?
1: बिल्कुल नहीं,
0: बिल्कुल नहीं। दैट्स द पावर ऑफ एवरी थॉट विच वी नीड टू रिमेम्बर ऑलवेज,
1: एंड टू रिमेम्बर दिस इसके लिए प्लीज एक मेडिटेशन करवा दीजिए।
0: जरूर, सिट बैक कंफर्टेबली, लुक एट योरसेल्फ, अपने आप को देखे, आई द बीइंग, आई एम अ रेडिएटर ऑफ एनर्जी, हर क्षण मेरा हर संकल्प, हर थॉट इस प्रकृति पर, इस सृष्टि पर प्रभाव डाल रहा है। माय एवरी थॉट इज कॉन्फिडेंट।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं डिजिटल जागरूकता के ऊपर। आज का हमारा विषय है डिजिटल जागरूकता। आज के इस डिजिटल युग में विशेष रूप से शिक्षा, संचार और मनोरंजन के लिए हमारी जो तकनीक हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है, इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के चलते हमारी दिनचर्या कई बदलाव इसमें आई है। हालांकि इस तकनीक की विकास के साथ साथ हमें डिजिटल जागरूकता और वेलनेस की आवश्यकता है, इसकी हमें महसूसता भी हो रही है। डिजिटल वेलनेस का मतलब है तकनीक का संतुलित और समझदारी से उपयोग करना, ताकि मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सके। एक होता है डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है हम सभी जो शारीरिक स्वास्थ्य, हाँ, स्वच्छता के लिए जो भी हम खाने से पहले अपने हाथ धुलाई करते हैं, रोजाना सुबह स्नान करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, वैसे डिजिटल युग में अगर हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है तो डिजिटल स्वच्छता अपनाने की जरूरत है। मोबाइल के उपयोग के बाद हमें उसमें कैद नहीं होना है, बल्कि उससे बाहर निकलना है। हमें अभिमन्यु नहीं बनना चाहिए जो चक्रव्यूह के अंदर तो घुस गया पर निकल नहीं पाया, बल्कि हमें क्या बनना है, अर्जुन। अर्जुन की तरह बनना है जो घुस कर निकलना भी जानता है। एक होता मानसिक स्वास्थ्य। लगातार स्क्रीन पर समय बिताते रहने से तनाव, चिंता और अवसाद का खतरा बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर तुलना करने, हाँ, नकारात्मक समाचारों के संपर्क में आने से अत्यधिक जो है सूचना के भार से मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। डिजिटल वेलनेस को अपनी, हाँ, दिनचर्या में हमें अपनाने से क्या होता है, मानसिक स्थिति को संभालने में मदद मिलती है। एक होता शारीरिक स्वास्थ्य। लंबे समय तक बैठने और स्क्रीन के सामने रहने से शारीरिक जो है स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। यह मोटापा, आंखों की समस्याएं और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इसमें एक और बात होती है सामाजिक संबंध। डिजिटल युग में लोग एक दूसरे से संवाद करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, लेकिन इसने वास्तविक जीवन में सामाजिक संबंधों को भी क्या किया है, प्रभावित किया है। अक्सर लोग वर्चुअल इंटरेक्शन को प्राथमिकता देते हैं, जिससे वास्तविक मित्रता कमजोर होती जा रही है और संबंधों में दरार आ रही है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर आपसे आकर मिलती हूँ। और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और हमारे आगे की चर्चा जारी रखते हुए हम चलते हैं। आज का हमारा विषय है डिजिटल जागरूकता। एक होता है डिजिटल वेलनेस के लिए सरल उपाय, अतिरिक्त ऐप्स हटाएं। डाउनलोड किए गए 70% ऐप्स हमारे उपयोग में नहीं आते हैं। ऐप्स की जो संख्या है जितनी अधिक होगी वे मोबाइल को क्या करेगा, मोबाइल और दिमाग पर उतना ही अधिक जगह लेंगे, मोबाइल उतना ही अधिक अव्यवस्थित हो जाएगा। जो ऐप हम ढूंढना चाहते हैं वह अधिक कठिन हो जाएगा। कम ऐप्स अधिक स्पष्टता और उच्च उत्पादकता का होता है। एक होता है कि लोग ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका न करना अधिक लाभदायक है। ये हमें लाभ देगा कि हम इसका इस्तेमाल बिल्कुल ही ड्राइविंग के दौरान जो है बंद कर दें। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन के कारण ध्यान भटकने से या तो खुद का या तो दूसरों को चोट पहुंचाने का कारण बन रहे हैं। यदि हम बात करने में व्यस्त हैं तो हमारी आंखें देख रही है लेकिन देखते भी देख नहीं रही है, क्योंकि मस्तिष्क दृश्य को उतनी सटीकता से ग्रहण नहीं कर रहा है जितना उसे करना चाहिए। यही कारण है कि गाड़ी चलाते समय संदेश भेजना, देखना और बात करना, विशेषकर उनके लिए जो भावनात्मक रूप से क्या है आवेशित हो, जो खतरनाक होता है। जो इसमें क्या होता है, एक होता है वेबसाइट घड़ी का प्रयोग करें। इसमें ज्यादातर क्या होता है, लोग बिस्तर पर सिर के पास मोबाइल रखकर इसे अलार्म के रूप में उपयोग करते हैं। यह आदत जो है मोबाइल से निकलने वाले जो हानिकारक रेडिएशन के कारण हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालकर हमारी नींद को क्या करता है, प्रभावित करती है। एक पारंपरिक जो है अलार्म घड़ी खरीदें, इसमें क्या करना है स्नूज लगा दें और जो अपने आप वो रुक जाती है, उसे कार्य क्षमता न हो और आपको अलार्म बंद करने की है, बंद करने के लिए भी जागने के लिए है मजबूर ना करें। एक होता है स्क्रीन फ्री, नाश्ता दोपहर और रात का भोजन करें। हमारा मन मस्तिष्क और शरीर एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, लगातार एक दूसरे से संवाद करते रहते हैं। जब हम स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और खाने से ध्यान हटा देते हैं तो अपने मस्तिष्क को बता रहे होते हैं कि हमारे लिए सूचनाएं खाने से अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम खाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मस्तिष्क जो है पेट को संकेत भेजता है कि भोजन महत्वपूर्ण है, इसलिए भोजन को ठीक से पचाने और इसे ऊर्जा में बदलने के लिए आवश्यक पाचन जो है पाचक रस उत्पन्न करें। इसी कारण से भारतीय संस्कृति में मौन रखकर भोजन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को

नमस्कार। तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है डिजिटल जागरूकता। होता है एक समय में एक गैजेट, हमें क्या करना है, एक समय में एक गैजेट का ही उपयोग करना है। मानव मस्तिष्क एक ही समय में दो कार्य नहीं कर सकता। अधिकतम जो भी उपयोगिता के लिए एक साथ कई गैजेट का उपयोग करने के बजाय एक समय में एक गैजेट का उपयोग करना सीखें। नोटिफिकेशन बंद करें। सूचनाएं जो है बंद करने से बड़ा अंतर आ सकता है। हर बार जब फोन पर कोई सूचना आती है तो यह ध्यान भटकाती है और उस ध्यान को एकाग्र करने में क्या होता है, मानसिक ऊर्जा का एक हिस्सा बर्बाद हो जाता है। जितनी अधिक सूचनाएं प्राप्त होगी भटकाव उतना ही अधिक होगा और उत्पादकता जो है कम होगी। इसे कुछ दिनों तक आजमाएं और सकारात्मक प्रभाव स्वयं देखें। एक होता इंटरनेट उपयोग करने की सीमा निर्धारित करें। सोशल मीडिया अत्यधिक जो है उलझाने वाला है। इसकी उलझाने की प्रकृति के कारण हम यह निर्णय नहीं कर पाते कि हमने स्क्रीन के सामने कितना समय बिताया है। बिना सोचे समझे स्क्रीन पर उंगली घुमाना, लक्ष्यहीन तरीके से घूरना और बिना रुके देखना समय की बर्बादी है। हम अपने खाते यानी कि अकाउंट जो होता है, एक खाते की जांच करने के लिए केवल 2 मिनट खर्च करने की इच्छा से शुरुआत करते हैं और अंततः 2 घंटे खर्च कर देते हैं। एक होता है स्क्रीन नीचे की ओर रखना। हाँ, फ्लिप जो होता है मोबाइल कवर, उसका जो कवर को उपयोग करें, इससे अधिक सूचना मिलने पर ध्यान भंग नहीं होगा। यदि मोबाइल पर फ्लिप कवर नहीं है तो फोन की स्क्रीन वाला जो हिस्सा है हमेशा नीचे की ओर रखें। इससे हमारा जो बार बार मोबाइल संभालने का आकर्षण कम हो जाता है। एक होता डिजिटल जो उपवास, इसे कुछ दिनों के लिए बंद रखने के लिए हमें क्या करना है। उपवास में कैंसर रोधी गुण होते हैं। डिजिटल उपवास से कैंसर रोधी इसमें गुण होते हैं। हर हफ्ते एक पूरे दिन के लिए सभी प्रकार के स्क्रीन से दूर रहकर और प्रियजनों से प्रियजनों के साथ रहें, उनके साथ समय बिताकर डिजिटल उपवास करने से मदद मिलती है। शुरुआती कुछ घंटे बहुत अधिक बहुत मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम स्क्रीन मुक्त समय का आनंद लेना शुरू कर देंगे। मस्तिष्क को अपने सर्वोत्तम कामकाज और विकास के लिए डिजिटल साइलेंस की आवश्यकता होती है। एक होता है स्क्रीन पर टाइम का जो एक कंट्रोल करना। स्क्रीन टाइम कंट्रोल ऐप इंस्टॉल करें। यह क्या करता है, स्मार्टफोन पर अंतर्निहित जो सुविधा है वो प्रत्येक ऐप के लिए स्क्रीन समय को सीमित करना, समय बर्बाद किए बिना स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में काफी मदद कर सकता है। एक है प्रत्येक मिनट के बाद, प्रत्येक मिनट के बजाय हमें क्या करना है, घंटे में सोशल मीडिया चेक करें। कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इसकी जांच करते हैं। लगातार जांच करने की इच्छा को कम करें। कम करके हम क्या करते हैं, उत्पादकता जो है वो काफी हद तक हम बढ़ा सकते हैं। अनुभव और रिसर्च से पता चलता है कि पहले 20 सेकंड में जांच करने की इच्छा सबसे अधिक होती है। यदि हम इन
पहले 20 सेकंड पर काबू पा सकते हैं तो मन को उस ऐप से हटाना आसान हो जाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग भी शुरू करने से पहले यह तय करें कि कितना समय ऑनलाइन में बिताना है। समयबद्ध खरीदारी अनावश्यक तनाव, समय और धन खर्च को कम करने में मदद कर सकती है। यदि हम सोशल मीडिया की लत पर काबू पाने के बारे में गंभीर हैं, तो सोशल मीडिया हमें ऐप में लंबे पासवर्ड का उपयोग करें उससे ताकि इससे क्या फायदा होगा, जब भी हम उस ऐप को चेक करना चाहें तो पासवर्ड टाइप करना पड़े, तो लंबा जो हम रखते हैं अपना पासवर्ड, तो उसको टाइप करने में हमें समय लगता है, तो हम सोच समझ कर टाइम से ही उसका उपयोग करेंगे। एक होता है प्रत्येक दिन कम से कम 45 मिनट व्यायाम करें, या सप्ताह में कम से कम 4 दिन शारीरिक व्यायाम। वो शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाता है। ये इंटरनेट की लत के विकल्प या सहायक उपचार के रूप में व्यायाम काफी कारगर है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अवसाद चिंता को कम करने जैसे मनोवैज्ञानिक लाभ है। एक होता है सोने से कम से कम 1 घंटे पहले मोबाइल फोन का उपयोग ना करें। इसका प्रयोग ना करने से सो जाने के लिए हमारे जो मस्तिष्क और शरीर को आराम करने की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क मेलाटोनिन जो नामक एक नींद हार्मोन होता है जारी करता है, जो शरीर को आराम देने में मदद करता है। लेकिन जब हम देर रात तक मोबाइल पर लगे रहते हैं, देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, फिर खेलते हैं, तो मस्तिष्क मेलाटोनिन के जो स्त्राव है में वो देरी करता है, और परिणाम स्वरूप नींद आने में देरी होती है। गहरी नींद और पर्याप्त नींद के लिए सोने से कम 1 घंटे पहले हमें किसी भी प्रकार की स्क्रीन से दूर रहना चाहिए। किसी मुद्रित पुस्तक से कुछ भी पढ़िए। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है डिजिटल जागरूकता। एक होता मोबाइल फोन का प्रयोग कम से कम जागने के एक घंटे बाद तक ना करें, है ना। भारतीय संस्कृति में क्या है, जागने के बाद पहले एक घंटे में प्रार्थना करने, जप करने, कुछ सकारात्मक पढ़ने आदि के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसका कारण यह है कि इस पहले घंटे के दौरान हम जो भी भोजन जो भी कुछ हम करते हैं, जो भी भोजन और दिमाग को हम खिलाते हैं, वो क्या होता है, वह सूक्ष्म रूप से हमारे पूरे दिन को प्रभावित करता है। यदि इस दौरान दिमाग का को हम व्हाट्सएप से, फेसबुक से आदि से हम अगर बेकार की सूचनाओं से अगर हम दूर रखें, न भरें ये सब, अगर हम ये भर देंगे तो बाकी जो दिन भर का जो मूड है वो अच्छा नहीं रहेगा। सोशल मीडिया का उपयोग करते समय इसकी प्रभावशीलता और नकारात्मकता के प्रति जो भी जागृत है, नकारात्मक सामग्री से दूरी बनाए और सकारात्मकता को बढ़ावा देने वाले संदेशों पर ध्यान केंद्रित करें। इसका निष्कर्ष क्या है? डिजिटल जागरूकता हमें सिखाती है कि कैसे हम तकनीक का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के साथ सामाजिक संबंधों को भी हम मजबूत कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसलिए यह अत्यंत आवश्यक भी है। आवश्यक तो है ही कि हम डिजिटल वेलनेस के महत्व को समझे और इसे जीवन का एक हिस्सा बनाए। तो आपको पता चल गया कि हमें डिजिटल सामानों का जो भी उपयोग करना है किस तरह करना है। तो हमेशा इस बात का हमें ध्यान रखना है, जितनी भी बातें इसका हमें बहुत मुख्य रूप से हमें इसका ध्यान रखना है। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या। यहां नहीं कर सकते, यहां नहीं कर सकते। क्यों स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई, क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं, सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट, देन नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर, एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ख्वाबों का सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ख्वाबों के सफर इस कार्यक्रम में। जी हाँ, मैं हूँ आपका हम सफर सनी, लेकर आया हूँ ये प्रोग्राम, रेडियो प्रोग्राम ख्वाबों का सफर। और हमारे साथ आज के खास मेहमान इस एपिसोड में जुड़ने वाले हैं विभा जी। जी हाँ विभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार सनी, आपको और हमारे ख्वाबों का सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: जी बहुत ही अच्छा लगा आपके अंदाज को देख कर, हमें खुशी हुई। और मैं चाहूंगा कि आप कार्यक्रम की शुरुआत में जो आप सुनाने वाले हैं, किस गीत को लेकर आई है और कौन सा गीत आप सुनाने वाले हैं?
2: पहला गाना है मेरे पास, ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, ये बहुत ही सुंदर गाना है।
1: क्या बात है?
2: ये रखी दुनिया तक एक दूजे के साथ होने का वादा किया जा रहा है इस गाने में। प्यार है, प्यार के भाव है, अपनायत है और साथ निभाने का अटूट वादा है। जमाना अगर कुछ भी कहे तो क्या, मगर तुम न कहना हमें बेवफा। बिछड़ के चले जाएं कहीं, ये ना समझना मोहब्बत नहीं।
1: जी, ये 1954 का जो फिल्म है शर्त, इस एल्बम का ये गाना है। तो मुझे लगता है कि उस समय का 50s का, मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कौन हीरो थे, किसने गाया था, लेकिन फिर भी इसके संगीतकार और गीतकार के बारे में तो बता ही सकता हूँ। HS बिहारी साहब ने इसे लिखा था, हेमंत कुमार साहब ने इसे आवाज दी थी और हेमंत कुमार साहब ही इसके संगीतकार भी रहे। तो चलिए, ये बहुत ही खूबसूरत गाना है जो आपने याद कराया कार्यक्रम के शुरुआत में। मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को बहुत ही अच्छा फील कराएगा। तो आइए सीधे गाने की तरफ चलते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब ये है कि आपने जीते जी अपने आप को मार डाला है। तो हम चाहते हैं कि ख्वाबों के सफर इस कार्यक्रम को सुनकर आपने अंदर जिंदा दिली लाइए। आइए आगे बढ़ते हैं। विभा जी, कैसे हैं आप?
2: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तो गाने को बहुत एंजॉय किया।
1: क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही अच्छा गीत आपने याद कराया था और ये हेमंत कुमार साहब का खूबसूरत जो आवाज है वो सुनने का बहुत ही अच्छा लगा मैं। एंड ऐसे जो गीतकार संगीतकार हैं अब नहीं है और इसका गम है, लेकिन उनके गाने हैं तो उन्हें याद करने में और उनकी बातों को, उनके लहजे को सुनने में एक अलग फील आता है। तो अगला गाना कौन सा है आपके पास विभा जी?
2: अगला गाना है मेरे पास एक मोटिवेशनल सॉन्ग है, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुमको चलना होगा। यहाँ माझी गाना जैसे किश्ती बढ़ाते हुए माझी वो गाना गा रहे हैं।
1: हाँ।
2: और इसमें भाव है दुनिया चलने का ही नाम है, सभी चलने हैं, चांद तारे नदिया और हमें भी चलते रहना है का संदेश है। चलने से ही मंजिल मिलेगी, रुकावटें आए भी तो क्या है, भाव में रहते रहना है। पूरा चलेगा तो चल देगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना हो।
1: विभा जी बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये गाना सुनकर एक बहुत ही एंजॉय करेंगे। और मुझे लगता है ये गाना जो है 1970s का आपने याद कराया है, सफर इस एल्बम का है और इंदिवर साहब ने इसे लिखा था, मन्ना डे साहब ने गाया था। कल्याण जी आनंद जी का बहुत ही खूबसूरत संगीत से सजा ये अगला गाना हमारे सभी श्रोताओं के लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही प्यारा सा गाना आपने सुना, सफर 1970 में आई फिल्म का आपने गाना सुना, और इस फिल्म के कलाकार थे राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, फिरोज खान और अशोक कुमार। जी हाँ, उस समय ये गाना जो है बहुत पॉपुलर रहा, और इस सफर एल्बम का जो सभी गाने जो है बहुत ही हिट थे। लेकिन हम लोग आज जो आपको गाना सुना है वो भी एक मोटिवेशनल गाना है, जैसे कि विभा जी ने बताया। और ये जो है फिल्म विशेष असित सेन के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी, और बहुत ही अच्छा फिल्म था ये उस समय, जिसे आप अगर टाइम मिले तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा है फिल्म। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि अगला गाना कौन सा है विभा जी आपके पास?
2: अगला गाना मैं लेके आई हूँ, गजल है और गजल फिल्म से ही है।
1: अच्छा,
2: बड़ी बहुत ही खूबसूरत गजल है, नगमा और शेर की सौगात किसे पेश करो। और इसमें सुनील दत्त जो एक लेखक होते हैं, और इसमें शायरी बहुत बहुत ही दिल लुभाने वाले अंदाज में की हुई है।
1: अच्छा।
2: उसमें मोहब्बत है, अपनापन है, और बहुत ही खूबसूरत शायरी है इसमें। शौक आंखों के उजालों को लुटाऊं किस पर, मस्त जुल्फों की ये रात किसे पेश कर।
1: क्या बात है, चलिए बहुत ही प्यारा सा गजल आपने याद कराया है, अच्छा लगा। आज तो हम लोग जैसे मोटिवेशनल है, गजल है, और एक सूदिंग गाना आपने शुरू में हेमंत दा का हेमंत दा का सुना के आपने एक नया मोड़ ही दे दिया इस एपिसोड को। तो आइए, ख्वाबों के सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। मैं हूँ आपका हम सफर सनी, और मेरे साथ हम सफर है विभा जी, और बहुत ही प्यारे कलेक्शन उनके पास है जिसको एक एक करके वो सुना रही है। और डर मुझे भी लगता फासला देखकर, पर मैं बढ़ गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। आप सुनाए हैं रेडियो पुनीरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: जी हाँ साथियों, इस एल्बम का गजल आपने सुना, शाहिद लुधियानवी साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, मदन मोहन साहब का संगीत से सजा ये गाना आप सुन रहे थे और आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब विभा जी की तरफ चलते हैं, एक और कौन सा गाना उनका है उनके पास।
2: ये बिल्कुल ही लड़कपन वाला गाना लेके आई हूँ मैं।
1: अच्छा,
2: लैंग्वेज के डिफरेंट आप खुद ही अंदाजा लगाना इसमें क्या है। मैं लड़ गई है तो मनवा में कसक होई बेकर, इसका इसके लफ्ज भी आपको उसकी बारीकी में जाना पड़ेगा। और इसमें दिलीप कुमार बिल्कुल, अगर आप उनको पिक्चराइज करोगे जैसे वो धोती पहने हुए वो डांस करते हुए मिटकते हुए गा रहे हैं। जब किसी से नैन लग जाते हैं तो मन में कुछ होता है, इसके भाव ये हैं।
1: अच्छा,
2: एक कसरत भी होती है पर बेकरारी सी होती है अपने साधन से मिलने के लिए। तो दिलीप कुमार पूरी मस्ती में शरारत के साथ इस गीत को गा रहे हैं। और खोई गवा मनवा मेरे तिरछी नजर का हल्ला, गौरी को देख बिना निंदिया ना हमका।
1: चलिए बहुत ही अच्छा आपने इसका जो भाव है वो सुनाए। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को जो है एक जिज्ञासा हो गया होगा कि पहले गाना सुन लेते हैं। तो चलिए सीधे गाने की तरफ, खुश रहो खुशियां बांटो।
3: लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होय गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही अच्छा गाना आपने सुनाया विभा जी, गंगा जमुना इस एल्बम से। और इस फिल्म की एक बात ये रही कि जब इसका सेट तैयार करना था, एक पूरा गांव बसा दिया था डायरेक्टर साहब ने, और ऐसा वो माहौल तैयार किया था। और इसमें जो गाना आपने अभी बताया सुनाया, ये गाना भी एक गांव के इस माहौल में बनाया गया है और उसका ही फ्लेवर इसमें दिया गया है। तो ये गंगा जमुना इस एल्बम से था और शकील बनाई साहब ने लिखा हुआ, मोहम्मद रफी साहब का मस्ती भरा आवाज में ये गाना था, नौशाद साहब का संगीत से सजा। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें, एंड मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा ही लग रहा होगा। और इतना मस्ती भरा गीत सुनकर किसको अच्छा नहीं लगेगा, है ना?
2: जी बिल्कुल बिल्कुल जी। अब आप बताएं आपको कैसा लगा?
1: हाँ, मुझे मेरे पैर थिरक रहे थे। चलिए, अब अगला गाना कौन सा लेकर आई हैं आप?
2: आपके पैर कंटिन्यू थिरकते रहे इसलिए गाना अगला भी मैं मस्ती वाला ही होगी।
1: अरे
2: मैं है चैन कहाँ, दिल है वही तू है जहाँ, बहुत सुंदर गाना है।
1: क्या बात है, क्या बात है।
2: इसलिए है कि जब मैन मिल जाते हैं फिर चैन काम करता है। बस फिर तो एक प्रीतम चाहिए और प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे का साथ, बहुत ही सुंदर गाना है।
1: जी जी जी, बहुत ही अच्छा गाना आपने याद कराया है। बसंत बहार इस एल्बम से है, जो 1950s और 60s के बीच में ये फिल्म आई थी, ब्लैक एंड व्हाइट ही थी। और शैलेंद्र साहब ने इस गीत को लिखा है, लता एंड मन्नाडे साहब ने इसे गाया है, शंकर जयकिशन का संगीत से सजा। नए मिले चैन कहा, दिन है वही तू है जहां, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुना रहे हैं। और बसंत बहार इस एल्बम का जो कलाकारों की अगर बात करें तो उस समय भरत भूषण साहब बहुत ही पॉपुलर थे और उनके साथ निम्मी जो है वो भी पॉपुलर रही। ओम प्रकाश और कुमकुम इस फिल्म के कलाकार रहे और ये फिल्म भी जो है एक अलग स्टोरी जो है बताई गई थी। और ये फिल्म जो है एक इसकी जो स्टोरी है वो एक इंग्लिश फिल्म मैंने अंग्रेजी स्टोरी को ट्रांसफर किया गया था और हिंदी में उसको पिक्चराइज किया गया था। तो चलिए फिर इसके बाद ये लैंग्वेज जो है बदलता गया, फिर हिंदी में बना, तो फिर उसके बाद इस कहानी को कन्नड़ा वाले ने भी अपने उपन्यास के माध्यम से उसको वापस रिलीज किया किसी और नाम से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पास?
2: ये मैं अगला गाना भी मस्ती भरा ही दूंगी क्योंकि इसमें वो किशोर कुमार के छोटे भैया आलोक कुमार और शशिकला के साथ साथ ये गाना गा रहे हैं और उनकी शरारतें भी बिल्कुल ही किशोर कुमार की तरह हुआ करती थी। नैन तुम्हारे मजेदार जनाबे आली, तुमको हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली। तो इसमें वो शशिकला की आंखों की तारीफ कर रहे हैं और ये आंखें बोलती हैं, उनकी एक जुबान होती है इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अपनी पूरी एनर्जी के साथ अपनी प्रेमिका की तारीफ करते हुए ये दोनों ही नाचते हुए गा रहे हैं और कुल मिला के इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है और बहुत ही चुलबुला गाना है।
1: क्या बात है, क्या बात है। चलिए मुझे लगता है आप जंगली फिल्म का ये गाना याद करा है, 1961 में जो फिल्म रिलीज हुई थी और इसमें शम्मी कपूर साहब हीरो थे, सायरा बानू, शशिकला, ललिता पवार, ये और भी कलाकार इस फिल्म में थे और ये एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और इसमें सारे ही गाने हिट है। लेकिन अभी जो गाना आपने सुनाया है वो भी, आपने याद किया जो गाना वो भी बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए सीधे गाने की तरफ चलते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM पर। खाबो का सफर आप सुन रहे हैं और नैन तुम्हारे मजेदार वो जनाबे आली, आपने इस गाने को एंजॉय किया। हसरत जयपुरी साहब का लिखा था और आशा भोसले मुकेश साहब ने इसे गाया था। शंकर जयकिशन साहब का संगीत से सजा ये गाना था। तो आशा करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा। और विभा जी,
2: जी
1: कैसे हैं आप?
2: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और गाने को एंजॉय कर रही हूँ। और थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा एक हल्का फुल्का थोड़ा सा सैड सॉन्ग है, नैना घर से रिमझिम रिमझिम पिया तोरे आवन किया। इसमें है कि ये जो नैन है ना, ये भी अपने प्रीतम को हमेशा सामने ही देखना चाहते हैं, इसलिए ये थोड़े कभी बरस भी पड़ते हैं और कभी ये डिमांड करते हैं कि बस 24 घंटे प्रीतम सामने हो।
1: चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और ये जो आपने गाना याद कराया है, एक सस्पेंस फिल्म थी उस समय 1964 के करीब ये फिल्म रिलीज हुई थी, वो कौन थी। ये फिल्म जो है नाम से भी थोड़ा सा अलग ही लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक थ्रिलर है, सस्पेंस है। तो मनोज कुमार पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना, ये फिल्म भी। तो आइए सुनते हैं इस गाने को, उसके बाद फिर इसके बारे में बातें करते हैं। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: कहते हैं सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है, सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया की बात बताती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, वो कौन थी, इस एल्बम से जो 1964 में रिलीज हुई थी, राजा मेहंदी अली खान का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, मदन मोहन का संगीत से सजा आपने गाना सुना। और ये फिल्म जैसे मैंने कहा एक थ्रिलर फिल्म थी, बहुत ही सस्पेंस वाली फिल्म थी, लास्ट तक वो गुत्थी जो है खुलती नहीं है और बहुत आखिरी में वो पता चल जाता है हमें फिल्म अगर आप ध्यान से देखते हैं तब। और इसमें मनोज कुमार को एक डॉक्टर का रोल दिया है और एक रहस्यमय औरत से उसकी मुलाकात हो जाती है और फर्स्ट उसके बाद वो उसी रहस्य को सुलझाने में पूरी फिल्म में अपना टाइम उन्होंने उस रहस्य को सुलझाने में लगाई थी। तो ये एक राज खोसला साहब के डायरेक्शन में बनी बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है कि हम लोग बहुत बहुत आगे आ गए हैं, यानी कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे आ गए
1: जी
0: जी विभा जी कैसे हैं आप?
1: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा आपने कहा आखिरी मोड़ पे है, ये आखिरी गाना है मेरे पास। नैना है जादू भरे ओ गोरे तेरे, नैना है जादू भरे। तो
0: अच्छा।
1: ये जादू ही होता है आंखों में जिससे
0: हाँ
1: प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे की तरफ से चलवाते हैं, दोनों का जादू ही सा निपटा होता है एक दूसरे के बहुत करीब लाने का।
0: हाँ
1: तो ये बहुत ही खूबसूरत गाना है। हम पे छुप छुप के जुल्म करे ओ गोरी तेरे नैना भरे, नैना है जादू भरे।
0: चलिए, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है और आज बहुत सारे गाने आपने जो भी सुनाए वो आंखों से जुड़े हुए थे, हमें भी अच्छा लगा। एंड अभी आखिरी जो गाना आपने याद कराया है ये गाना बेदर्द जमाना क्या जाने, बेदर्द जमाना क्या जाने 1960 के करीब ये फिल्म रिलीज हुई थी, ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी और अशोक कुमार, निरुपमा राय और जबरीन जलील इसमें काम किया था इन लोगों ने। तो ये भी एक पारिवारिक फिल्म थी जिसमें ये कहानी बताई गई थी। तो भरत व्यास जी इस गाने को लिखे थे, मुकेश जी ने गाया था, कल्याण जी आनंद जी का संगीत से सजा ये गाना हमारे श्रोताओं के लिए आखिरी में हम लोग देंगे और जाते जाते हम लोग इस गाने को सुनाते ही जाएंगे। लेकिन साथ में मैं कहना चाहूँगा विभा जी थैंक यू सो मच हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए, और एन अक्षर वाले इतने अच्छे कलेक्शन आपने हमें सुनाए तो हमें बहुत अच्छा लगा जी।
1: थैंक यू सनी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप सबके साथ जुड़ती हूँ, ये इस पे इन गानों पे काम कर रही होती हूँ, उसको सुन रही होती हूँ और उसमें चुन चुन के रखती हूँ कि कौन सा हमारे श्रोताओं को गाना अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बड़े पुराने गाने हैं और पुराने गाने सुनने वालों का जो टेस्ट है वो ध्यान में रखते हुए हम उसको चुनते हैं। तो मैं खुद भी बहुत एंजॉय करती हूँ और अपने श्रोताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ सुनने के लिए और अपना इनपुट देने। थैंक यू अगेन।
0: थैंक यू विभा जी, बहुत ही अच्छे कलेक्शन आपने सुनाए एंड बहुत ही अच्छा लगा, हमें मजा भी आ गया और हमारे श्रोताओं को भी उतना ही आनंद आया होगा जितना मुझे। और जाते जाते एक लाइन उनके लिए कहना चाहूंगा हमारे सभी श्रोताओं को, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। आप सुना
1: जी
0: है रेडियो पुनेरी आवाज। चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, अगले एपिसोड में होगी फिर मुलाकात, तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनेरी आवाज के साथ। सलाम नमस्ते, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन नाउ, इवन अगर कल बीत गया इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक

0: लेटर ऑन शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी. मतलब माय माइंड, ये हमारा एक्सरे है.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: वेलकम बैक श्रोते हो। अमर्याद जगण्याला सुद्धा मर्यादांचं बंधन असायला हवं। अमर्याद जगण्याला सुद्धा मर्यादांचं बंधन असायला हवं। जेव्हा शरीर आणि मन थकतं तेव्हा जरासं विसावायला हवं, खरंय ना? तर जरासं विसावलं पाहिजे, जरा विसावूया, या शब्दाच्या अनुषंगानं आपण आपल्या आजच्या शोमध्ये बोलत आहोत। आणि श्रोते हो, याबरोबरच आपण आपल्या आजच्या शोमधल्या पुढच्या एका रचनेकडे वळूया, ज्यामध्ये सौ स्वाती विजय माळवदे मॅडम यांनी डोंबिवली पूर्व येथून लिहिलंय। सौ स्वाती विजय माळवदे मॅडम लिहित आहे डोंबिवली पूर्व येथून। जीवन शीर्षकाखाली मॅडम

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाएं, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहाँ कुछ गिरा, यहाँ कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
2: नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबने कई बार सुना होगा ना कि सूरज को दिया दिखाना मूर्खता होती है, ऐसे ही आज के जो हमारे अतिथि हैं उनके बारे में अगर मैं आपको कुछ ज्यादा जिक्र करूं तो मैं ही मूर्ख कहलाऊंगा, क्योंकि वो और उनकी आवाज अपने आप में किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। बात कर रहा हूं मैं हमारे प्यारे साथी दिवाकर जी का, जिनके आवाज ने देश के दिलों को छुआ है और पूरी दुनिया के दिल में जगह बनाई है। आइए दोस्तों, इस एपिसोड में भी हम दिवाकर जी से जानते हैं उनके जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में जो उन्हें यशस्वी भारत का यशस्वी पुत्र बनाता है। दिवाकर जी, दोबारा आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब आप गुरु शिष्य परंपरा में तालीम लेना शुरू किया अपने संगीत का, तो आपके गुरु ने आपको भारतीय शास्त्रीय संगीत सिखाया और आज आप हर तरीके के संगीत के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको पेश भी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत में ऐसी क्या खास बात है जो कि आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे?
3: ये इतना खूबसूरत, इतना ब्यूटीफुल सवाल है। मुझे आज इतना मजा आ रहा है आपके साथ ये सारी बातें शेयर करते हुए, क्योंकि मैं ऑनेस्टली कहूंगा इन पहलुओं पर बहुत कम बातचीत होती है किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी जगह पर मेरे साथ। तो इट्स अ प्लेजर टू यू नो रियली टॉक अबाउट ऑल दिस। थैंक यू सो मच फॉर यू नो गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। शास्त्रीय संगीत जो हमें यू नो अपनी पूरी जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उन सबसे मिला है, जो विरासत में मिला है, और हजारों सालों से जो हमारे पास है, जो उससे भी पहले वेदों में इतना प्रतिष्ठित है, इतना उसकी जड़ें हैं, यू नो उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि दैट इज द रूट ऑफ ऑल म्यूजिक बेसिकली। मतलब अगर कोई गाना है, कोई रचना बनती है, कोई चाहे वो गजल हो, चाहे वो एक प्योर यू नो एक साधा सीधा साधा भजन हो, चाहे वो एक फोक की धुन हो, उसके जो सुर हैं, उसके जो स्वर हैं, उसका जो एक यू नो पूरा वो है, वो उन सातों स्वरों से ही उत्पन्न होता है और वो किसी ना किसी राग में ही उसकी पहचान होती है, किसी ना किसी राग में उसकी एक्सप्रेशन होती है। That is the beauty of Indian classical music because that gives form to all forms of music.
2: तो अगर इसका मतलब मैं इसको ऐसे कहूँ कि ये बीज है, ये सार है, ये रूट है, तो बाकी का जो संगीत जगत आज हम देख रहे हैं वो उसका विस्तार है, वृक्ष है, राइट?
3: वो सारे वृक्ष हैं, सारे फल हैं, सारे फूल हैं जो आपको अलग अलग रंग रूपों में मिलते हैं उन्हीं के।
2: तो इसका मतलब अगर किसी को काफी अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई मैं संगीत में वाकई में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करूं, तो उसको वास्तव में जड़ों पे जाना होगा, जड़ों को समझना होगा, राइट?
3: एग्जैक्टली। एंड ये मतलब जस्ट टू क्लेरिफाई, ये दोनों ही किसी भी फॉर्म ऑफ जो क्लासिकल म्यूजिक, वो सारे इसी रोल को फॉलो करते हैं, इसी रोल को पूरा करते हैं, चाहे वो आपका
2: इंडियन क्लासिकल हो, बेसिकली क्लासिकल मतलब ही वो रूट्स है, राइट?
3: एग्जैक्टली, बेसिकली, या एग्जैक्टली। बिकॉज़ मैं इसी बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, ये बहुत खूबसूरत बात है कि हम सब अगर संगीत को, अगर कोई सच्चा संगीत को फॉलो करता है तो वो संगीत को फॉलो करता है, दैट्स वर्ल्ड म्यूजिक। वही ईस्ट है, वही वेस्ट है, वही नॉर्थ में है, वही दक्षिण भारत में, रादर तो इट्स बेसिकली म्यूजिक। और वो सारे म्यूजिक उनका जो क्लासिकल जो एक्सप्रेशन है वही आपको हेल्प करता है इसको एक्सप्रेस करने में, वही आपको हेल्प करता है उसे पेश करने में। क्योंकि जैसे अगर हमारे मंदिरों में है, वही चर्च में जो क्वायर्स होते हैं जो बिल्कुल आपको पता है कितनी एंजेलिक साउंड होती है उनकी, वही बात है। तो जैसे परमात्मा के रूप है, नाम है, लेकिन है तो एक ही, वैसे ही संगीत के क्लासिकल के भी अलग अलग रंग हैं, मतलब उसकी मैनिफेस्टेशंस हैं, बट उसकी डेस्टिनेशन और उसका जो रास्ता है वो एक ही है।
2: इतना खूबसूरत आपने पेश किया इस सिंपल एंड पावरफुल स्टेटमेंट की, संगीत जो है वो संगीत है ना, वो भारतीय है ना, वो यू नो वेस्टर्न है, या ये तो हमारे समझने के लैंग्वेजेस हैं, लेकिन संगीत वास्तव में संगीत है। और मैं समझता हूँ ये अगर कोई ट्रूली संगीत को फॉलो कर रहा है तो वो बेसिकली बहुत स्पिरिचुअल भी है, बहुत आध्यात्मिक भी है।
3: यस यस, होना चाहिए राजन, बिकॉज अभी अक्सर ऐसा होता है कि जो जिनमें ये कला होती है उनमें एक यू नो इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, यू नो वो असुरक्षित रहते हैं अंदर से, अक्सर वो ये चाहते हैं कि यू नो उनका एक फोकस नैरो हो जाता है कि हम जो कर रहे हैं वही यू नो सर्वश्रेष्ठ है, हम जो एक्सप्रेस कर रहे हैं वही दैट्स द ओनली वे टू गेट टू यू नो गॉड, और दैट्स द ओनली वे टू गेट टू देयर स्पेसिफिक गोल्स बेसिकली, बट दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल। अगर सीखना और अपने गुरु को फॉलो करना समर्पण है तो सबसे तो एक समर्पण भाव और भी है कि संगीत है या आपकी जो संगीत वो आपकी अंदर की, अगर वो आपकी अंदर की मेडिटेशन बन जाए, अगर आप यू नो उसमें जब उसमें तैरते हुए बिना किसी डेस्टिनेशन को माइंड में रखते हुए आप उसमें बहते जाएं, यू नो फ्लोटिंग एमलेसली विदाउट एनी डेस्टिनेशन ऑन अ रिवर, दैट इज ट्रू सरेंडरिंग योरसेल्फ, एंड उसके बिना आप में चाहे वो गुण भी हो लेकिन आपका फोकस नैरो हो जाएगा, अगर आप उसके अगर आप अपने आप को अपनी जो इनहिबिशंस को अपनी जो अंदर बनाई हुई बाउंड्रीज को ना छोड़ें तब तक आप बंद के रह जाएंगे।
2: So basically you're saying that you must trust the river also.
3: Yeah, just float along with the river.
2: संगीत पे भी उतना ही निष्ठा होना चाहिए कि if I am a true साधक तो संगीत भी मेरे साथ बना रहेगा, right? True.
3: Yes, exactly.
2: तो ये बड़े बड़े सवालों में से एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि देशभक्ति या राष्ट्रवाद या भारतीयता क्या है आपके लिए?
3: सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि अपनी जड़ों के लिए और अपने जो मेरे लिए देशभक्ति और देश का भाव ये है कि जो अपनी जड़ों के लिए, अपने रूट्स के लिए, अपने मदरलैंड के लिए प्रेम, उसके लिए रिस्पेक्ट, उस पर गर्व, उस पर फक्र, क्योंकि उसने मुझे, हम सबको और हमारे जो जितने हमारे पूर्वज हैं, जितने आदरणीय पूर्वज, उन सबको जन्म दिया, उन सबको एक पहचान दी, उन सबको एक यू नो एक आइडेंटिटी दी, उन सबकी जो लाइफ की जर्नी है वो शुरुआत उनकी जड़ों से हुई, एंड दैट प्लस जिस रफ्तार से हमारा भारत जा रहा है, उसके जो जिस तरह हमारे कल्चर और हमारे संस्कृति का नाम हो रहा है, उस पर हर एक भारतीय को, हर एक साधक को, हर एक इंडिविजुअल को गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमारी स्पिरिचुअलिटी, एंड अगेन आई वांट टू से ऑन द सेम नोट एज आई बिफोर आई फॉरगेट कि इट्स नॉट कि हमारी स्पिरिचुअलिटी, हम उसे एक्सप्रेस करते हैं अपने अंदाज में, हम उसे एक्सप्रेस करते हैं अपने एक सादे सिंपल अंदाज में, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी काफी लोगों में भी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। जैसे मैं लोगों से मिला हूँ जो इंडिया से बाहर है, या काफी लोग जो उस इंडियन कम्युनिटी का हिस्सा नहीं थे उस टेम्पल में, कोरेसाव में, बट वो भी उस वाइब को फील कर रहे थे, वो भी उनकी नेचर ही इतनी अच्छी थी कि इट डिडंट मैटर कि दे वर नॉट इंडियंस, बट दे वर एज स्पिरिचुअल एज इंडियंस, एज वी बिलीव ओनली इंडियंस टू बी। तो आपकी अपनी नेचर और आपकी अपनी जो जो आपकी अपनी जो एक समर्पण और आपकी अपना जो अंदर का जो साफ अंदर की साफ भावना, वो अगर हर एक भारतीय में आ जाए तो उससे बड़ी देशभक्ति कोई हो नहीं सकती। भारत की जो हाइट्स ऑफ जो इमोशंस हैं, जो प्योरिटी है, अगर हर एक वासी वो उसको आगे लेकर चले तो हर एक भारतीय देशभक्ति बन जाएगा।
2: ब्यूटिफुली सेड। आई थिंक श्रोता साथियों, ये है हमारे दिवाकर भाई का हम सब के लिए बहुत ब्यूटिफुल मैसेज कि हमारे अंदर जो हमारी आत्मीयता है, जो हमारा अपनापन है अपने देश के लिए, उसमें कोई खोट ना हो, वो पूरा सच्चा, साफ और एकदम प्योर हो, और
3: ये जो पाने के लिए ना हो, वो किसी वो आपको एक्सप्रेस करने के लिए ना हो, वो आपको अपने ही परिवार में एक बड़ा सदस्य बनाने की होड़ में ना हो, तभी वो सफल होगा, तभी वो एक भारतीयता, आत्मीयता, एक प्योरिटी कहलाएगी।
2: एग्जैक्टली। तो इस मैसेज के साथ अब मैं शुरू करूंगा एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड दिवाकर जी आपके साथ। आई होप यू आर रेडी। तो इस राउंड में मैं आपको एक सवाल पूछूंगा और उसका जवाब आपको एक शब्द या एक लाइन में देना है, ठीक है? तो इजी वाला शुरू करते हैं, राइट? योर फेवरेट सॉन्ग।
3: बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत सारे हैं, इतने सारे।
2: मुझे लगा ये इजी वाला होगा।
3: ये तो बल्कि सबसे मुश्किल था।
2: अच्छा।
3: लाइक थाउजेंड्स।
2: तो उसमें से जो भी सबसे पहला आपको याद आता हो।
3: ओके, लता जी का लग जा गले।
2: वेरी नाइस। फेवरेट स्टोरी जो बचपन में सुनी हो या देखी हो या जो भी?
3: जो भी सबसे, ये भी बहुत सारी थी, मेरी फेवरेट्स भी थी, लेकिन जो इमीडिएटली माइंड में आती है, मेरे लिए सबसे फेवरेट स्टोरी थी यू नो सिंड्रेला. आई लव्ड इट, सो ब्यूटीफुल.
2: वेरी नाइस. फेवरेट राग या रागिनी?
3: यमन कल्याण.
2: वेरी नाइस.
3: क्लोज टू माई सोल. एंड जबकि हर राग, एज आई टोल्ड यू, कि हर एक चीज एक भावना एक्सप्रेस करती है, एक खुशबू होती है, लेकिन यमन एक्सप्रेसेस माय इनर स्पिरिट.
2: सो हाउ अबाउट जस्ट हैविंग लिटिल आरो आरो ऑफ यमन कल्याण?
3: यस, अ कंपोजिशन इन दैट, यू नो, दैट इज सेमी क्लासिकल फॉर एवरीबॉडी, यू नो.
2: हां जी, हां जी, बिल्कुल.
3: ये एक सूफी कंपोजिशन है यमन में.

0: Wow, thank you so much.
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
0: सो अभी हम प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल
0: नेक्स्ट
1: बिल्कुल।
0: क्वेश्चन इज, शांति क्या है?
1: जब आपको ऐसा लगने लगे कि वक्त थम जाए, थम गया और बहुत बहुत तेज भी और बहुत धीरे भी चला, क्योंकि आप उसमें बहुत धीरे हर वक्त को हर मोमेंट को जीते हुए चल रहे, और तेज इसलिए क्योंकि आपके आसपास की चीजें आपसे भी ज्यादा तेज चले, वो शक्ति है।
0: वाह, लिविंग एवरी मोमेंट बेसिकली।
1: मैं इस पे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड, एक छोटी सी बात
0: बिल्कुल।
1: इसी पे, कि जैसे मैंने कहा कि जिंदगी बहुत तेज और धीरे दोनों चली, धीरे आपके लिए क्योंकि आप मतलब एक शून्य में पहुंच गए, और तेज क्योंकि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो तेज चला, लाइक हाई स्पीड कैमरा विद स्लो मोशन इफेक्ट। एग्जैक्टली।
0: वाह, वेरी नाइस। संगीत क्या है?
1: संगीत अपने अंतरात्मा की जो एक्सप्रेशन है उसकी भाषा है, केवल और कुछ नहीं।
0: कर्तव्य क्या है?
1: सबका उद्धार और हर बुरे पहलू से जूझना और उसको परास्त करना,
0: वाह। भारत क्या है?
1: अपनेपन का प्रत्यक्षीकरण।
0: वाह। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिवाकर क्या है?
1: वो आग जो सौम्य रोशनी भी और रुद्र की आग भी।
0: ब्यूटीफुल। तो मुझे लगता है कि आपसे अच्छा जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया इन रैपिड फायर राउंड्स का। सो यू हैव अगेन एक्सेल्ड, मुबारक हो।
1: थैंक यू सो मच। आई वाज सो नर्वस कि आई होप आई एम एबल टू यू नो डू जस्टिस टू दिस, बट थैंक यू सो मच।
0: तो चलते चलते मैं चाहूंगा कि आप एक मैसेज हमारे श्रोता साथियों को दें, भारत को दें, कि भारत क्या है, क्या फीलिंग आती है भारत कहते साथी आपके दिल में, क्या विजन है आपका भारत के लिए, क्या विजन आप शेयर करना चाहते हैं हमारे श्रोता साथियों के लिए। यू कैन गिव अ सेंटेंस, एक वाक्य में, एक मैसेज में आप एक मैसेज दे सकते हैं, और फिर चाहे तो कुछ गुनगुना भी सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब इस हाईटेक दुनिया में, हाईटेक होते हुए भी और उन हाईटेक चीजों को प्रयोग करते हुए, हर एक भारतवासी, हर एक युवक जिन बातों पे, जिन पहलुओं पर हमने आज गौर किया, उनको एक्सपीरियंस करे, उन्हें एक्सप्रेस करे और उन्हें उन्हीं को आगे लेकर जाए, और उन्हीं साधनों से, उन्हीं इन चीजों के माध्यम से जो जिस कर्तव्य की मैंने बात की थी, वही वही कर्तव्य हर कोई निभाए, और जितना जितना हो सके अपनी जो ऑनेस्टी और अपनी सच्चाई के राह पर हर अपने फील्ड में आगे चले, तो वो भारत की और वो हमारे जो संस्कृति की, हमारे कल्चर्स की, वो सबसे बड़ी जीत होगी। दैट बी द विक्ट्री ऑफ द इंडियन वैल्यूज, द इंडियन मेंटेलिटी, द इंडियन स्पिरिचुअलिटी।
0: परफेक्ट।
1: और मैं जो आपने कहा कि इसी बात को एक गीत में एक्सप्रेस करना चाहता हूँ मैं, एंड ये गीत जो स्पिरिचुअल भावना है उसको कहते हुए, उसको शेयर करते हुए आप सबके लिए और सबके लिए एक मैसेज है, क्योंकि मैं भी ब्रह्म कुमारीज में कुछ टाइम पहले आया भी था, वहां पर मैंने इस गीत को सबके सामने पेश किया, एंड ये गाना इस बात की सबसे बड़ी जो एक्सप्रेशन है। तो आई वांट टू जस्ट सिंग अ फ्यू लाइंस ऑफ दिस सॉन्ग फॉर यू।

0: थैंक यू सो मच.
1: वाओ, थैंक यू सो मच. आई थिंक इससे अच्छा अंत हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक आदि का शुरू, एक आदि का आगाज है कि अंतर मन में अगर हम ज्योति जगा लेते हैं तो हम न केवल खुद को प्रकाशमान रख सकते हैं लेकिन अपने आसपास भी अंधेरा मिटा सकते हैं. और भारत शब्द का भाव ही ये है कि प्रकाश में लीन, ज्ञान के प्रकाश में लीन. तो दिवाकर जी, आपने न केवल शब्दों से, न केवल भावनाओं से, बल्कि सुरों से भी हम सभी को, हमारे सभी श्रोताओं को ये जरूर जरूर अनुभव कराया कि प्रकाश, पावर एंड टुगेदरनेस. थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू सो मच. ओम शांति.
1: ओम शांति. आपके फ्यूचर की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से. उम्मीद है आप हमसे दोबारा जुड़ेंगे, हमारे श्रोता साथियों को दोबारा सौभाग्य देंगे आपसे सुनने का, रूबरू होने का. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया.
2: भारत देश की महिमा हमने पढ़ी है, हमने देखी है, सुनी भी है, लेकिन आज दिवाकर जी के बातों से भारत का वो पहलू हमारे सामने आया है जो एक युवा अपने धड़कनों में लेकर के घूमता है. एक ऐसा नौजवान इस देश का जो अपने सुरीले स्वरों से पूरे देश के कोलाहल को सुरीले संगीत में बदलने की कोशिश कर रहा है. ऐसे नौजवान सिर्फ अकेले दिवाकर ही नहीं, मैं समझता हूँ हमारे श्रोता साथियों में भी कई हैं. तो साथियों, आप जो हैं, जहाँ हैं, जिस जगह पे हैं, वहाँ पर आप जो कर रहे हैं पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से देश के लिए करते जाएं. मैं समझता हूँ हर कोई यशस्वी भारत की यात्रा में, यशस्वी भारत बनाने की यात्रा में ज़रूर कामयाब होगा. इन्हीं शुभ भावनाओं, शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ. फिर मिलूंगा आपके साथ यशस्वी भारत कार्यक्रम के एक और एपिसोड में एक नए अतिथि के साथ. तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए 90.4 FM रेडियो मधुबन.
3: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे. हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है. साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है. हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह.
4: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है.
3: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी.

दबाव और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: क्रांतिकारी सुरेंद्र साय का संबंध उड़ीसा के संबलपुर राजघराने से था। अंग्रेजों की राज्य हड़प नीति ने सुरेंद्र साय को युद्ध का सहारा लेने पर मजबूर किया था। अंग्रेजों ने चिर परिचित अंदाज में छल का सहारा लिया और संधि के बहाने आमंत्रित कर सुरेंद्र साय को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया। 1857 की क्रांति की लहर का लाभ उठाकर सुरेंद्र साय विद्रोही सैनिकों की मदद से जेल से भागने में सफल हो गए। इस बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। फिर वही छल। अंग्रेजों ने सफेद झंडा फहराकर संधि वार्ता के बहाने उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया। इस बार वे संबलपुर जेल से 3 दिनों के भीतर ही भाग निकले। 1858 से 1863 तक उन्होंने अंग्रेजों को कई मोर्चों पर हराया और उनकी सेना का विनाश किया। अजय वीर को तीसरी बार फिरंगियों ने नहीं, अपनों ने छला। एक गद्दार अभिन्न मित्र की सूचना पर वे अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार हो गए। 2 बार जेल तोड़कर भागने वाले क्रांतिकारी को तीसरी बार घोर जंगल में बने असीरगढ़ के किले में सघन पहरे के बीच रखा गया। 28 फरवरी 1884 को इसी किले में उन्हें फांसी दी गई। क्रूरता की पराकाष्ठा ये थी कि फांसी से पूर्व उनकी आंखों और कानों को गर्म सलाखों से फोड़ा गया।
3: क्या बात है छोटू, अभी तक काका की परछाई भी इधर नजर नहीं आ रही। काका को ढाबा नहीं चलाना है क्या?
4: अब मुझे क्या मालूम भैया, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। काका आए नहीं आए उससे मुझे क्या।
3: अबे बहुत बोलता है, जा काका को देख कर आ।
4: अच्छा भैया, अभी आता हूँ। अरे सत्तू भैया, अब समझ आया काका क्यों नहीं आ रहे।
3: क्यों क्यों नहीं आए?
4: अरे अपना रेडियो तो चालू करो जल्दी जल्दी।
3: अबे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था। अरे आज तो हिंदुस्तान हमारा आ रहा होगा। बस काका लगे होंगे सुनने।
4: अच्छा हाँ भैया, मैं चाय लगा के आता हूँ। अब जल्दी लगाइए ना, अब बताइए ना किसका आने वाला है।
3: अरे भैया रुक, तो देखने तो दे सुनने तो दे यार। अरे अच्छा, सुरेंद्र साय का आने वाला है।
5: उड़ीसा का संबलपुर गांव, सुरेंद्र साय एक निस्वार्थ निश्चल प्रकृति के इंसान गांव के अपने दोस्त दया से मिलने आए हैं।
6: क्या बात है दया, आज बड़े उदास नजर आ रहे हो, कुछ हो गया क्या?
7: कुछ नहीं सुरेंद्र, बस यूं ही।
6: यूं ही क्या, कुछ आगे भी तो बोलो।
7: अरे बस इस साल की सारी फसल राजस्व देने में निकल गई, घर में खाने को नहीं है, बहन की शादी भी है, पता नहीं इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे होगी। और तो और, अंग्रेजों ने ऐसी की तैसी कर रखी है।
6: चिंता मत कर, थोड़े दिनों की बात है, हम सब मिलकर अंग्रेजों को निकाल बाहर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एकजुट होंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे।
7: वो तो ठीक है, लेकिन
6: लेकिन लेकिन क्या?
7: मैं कह रहा था कि यदि मुझे कुछ पैसे मिल जाते तो मेरा काम हो जाता, घर में कुछ राशन भी आ जाता और बहन की शादी भी करनी है।
6: अरे उसकी चिंता तुम मत करो, जितना चाहिए कल आकर मुझसे महल में ले लो।
7: लेकिन महल में मुझे किसी ने रोका तो?
6: कोई नहीं रोकेगा, तुम आ जाना। कहना राजकुमार सुरेंद्र साय का सबसे जिगरी दोस्त हूँ मैं, दरबान को इसकी सूचना आज ही दे दूंगा।
7: ये ठीक रहेगा।
6: चल अब तो खुश हो जा यार।
5: राजमहल में सुरेंद्र साय की दादी रानी राजकुमारी अपने पोते का इंतजार कर रही हैं और कुछ ही देर में सुरेंद्र साय पहुंचते हैं।
6: आप अभी तक सोई नहीं दादी माँ?
8: तू कहाँ रह गया था रे,
0: कब से मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ।
6: कुछ नहीं दादी माँ, संबलपुर की माटी को सूंघने चला गया था, बस वहीं दया मिल गया, उससे बातें करते करते देर हो गई।
0: अच्छा, कैसा है दया?
6: अरे क्या बताऊं दादी माँ, बता रहा था कि इस बार वार्नर खुद गांव आया था और सारी फसल ले गया, खाने को कुछ नहीं बचा है और बहन की शादी भी है।
0: अंग्रेजों की नीयत ठीक नहीं है बेटा। जब से ये लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर बनकर आया है, तब से रियासतों पर कुछ ज्यादा ही लगाम कसने की तैयारी हो रही है।
6: दादी माँ, उससे बड़ी चिंता मुझे जनता से उनके व्यवहार को लेकर है, वे अत्याचार कर रहे हैं। राजस्व के रूप में सारी फसल ही नहीं ले रहे, बल्कि रियासत की बहु बेटियों पर अत्याचार भी कर रहे हैं।
0: बहु बेटियों से अत्याचार कर रहे हैं?
6: हाँ दादी माँ, दया कह रहा था कि अगली बार आएंगे तो और ज्यादा कर चाहिए, अगर नहीं मिला तो घर की सारी चीजें जब्त कर लेंगे, यहाँ तक कि बहु बेटियों को भी नहीं छोड़ेंगे।
0: ऐसा कहा उन्होंने?
6: हाँ दादी माँ, मेरा तो खून खौल रहा है, इच्छा हो रही है कि वार्नर जब आए तो मैं उसका खून कर दूं।
0: नहीं बेटा, इतनी हड़बड़ी ठीक नहीं, ऐसा करने से तो स्थिति और बिगड़ जाएगी और हमारे पास सेना भी बहुत कम है।
6: तो नई भर्ती कर लेते हैं ना दादी माँ?
0: अभी सेना की नई भर्ती कैसे होगी, खजाना भी तो लगभग पूरा खाली हो चला है।
6: फिर क्या उपाय हो सकता है दादी माँ?
0: अंग्रेजों से तो छुपके लड़ने में ही दिमागदारी है, बस यही एक उपाय है।
6: लेकिन दादी माँ, क्या ये छल नहीं होगा?
0: जो आपसे छल करे उससे छल करना कैसा छल, वैसे भी ये लड़ाई तो लोकहित के लिए है और लोकहित में साम दाम दंड भेद सब जायज है।
6: लेकिन ये होगा कैसे?
0: सबसे पहले अपने जैसे लोगों को चुनो, उनको रास्ता सुझाओ, उनसे सलाह लो और अंग्रेजों का काम तमाम करो।
6: ये आपने अच्छी राह बताई दादी, मैं कल से ही सक्रिय हो जाता हूँ।
0: इतनी जल्दी नहीं बेटा, पहले खुद को तो साध लो।
6: मतलब
0: ये कि पहले अपना राज तिलक तो करवा लो बेटा।
6: अरे दादी, मुझसे बेहतर तो आप ही हो और जो बेहतर होता है उसी को राजा होना चाहिए ना।
0: अरे अब मेरी उम्र कहाँ रही, कुछ इस उम्र का भी तो ख्याल कर बेटा।
6: ठीक है दादी, जैसी आपकी आज्ञा।
0: बस जल्दी ही मैं मुनादी करवा देती हूँ कि अब सुरेंद्र सिंहासन का अधिकारी होने जा रहा है। अब जा कुछ खा ले और सो जा। अरे जा ना।
6: दादी मैं ये कह रहा।
0: हाँ हाँ बोलो बेटा।
6: कल दया आएगा दादी, उसे कुछ
0: क्या
6: रुपये की जरूरत है, उसने कहा है कल आएगा।
0: ठीक है, देखती हूँ।
8: सुनो सुनो सुनो, आने वाले महीने की 24 तारीख को रियासत के राजकुमार सुरेंद्र साय का संबलपुर रियासत की राजगद्दी पर राज्याभिषेक होने वाला है। सभी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो।
9: वार्नर साहब, अब तो आपने सुनी लिया ना कि रियासत में सुरेंद्र राय का राज्याभिषेक हो रहा है।
10: हमने सुना कि सुरेंद्र को किंग बनाया जा रहा है। हम तुमसे पूछता है कि तुमको क्यों नहीं बनाया जा रहा है।
9: वो वो तो रानी राजकुमारी को ही पता होगा।
10: अब मतलब सुरेंद्र तुम से ज्यादा अच्छा है,
11: ज्यादा काबिल है?
9: नहीं, ऐसी बात नहीं है।
10: फिर क्या बात है?
9: दरअसल मैं सुरेंद्र मुझसे काबिल नहीं, बस उम्र में बड़ा है, और फिर मैं चचेरा भाई हूँ ना, इसलिए राजा बनने का हक उसी का है।
10: अच्छा, तो तुम्हारे रियासत में ऐसा सिस्टम है?
9: हाँ वार्नर साहब, ऐसा ही होता है।
10: ठीक है, हम तुमको राजा बना देगा, पर बदले में तुम हमको क्या देगा?
9: आप जो चाहे साहब, खून मांगेंगे तो खून भी दूंगा।
10: हमको खून नहीं चाहिए, हमको बहुत सारा रुपया चाहिए, यू नो मनी, और हाँ, हमको तुम्हारी सेना भी चाहिए।
9: रुपया लगभग कितना चाहिए?
10: 10 लाख।
9: ये तो बहुत ज्यादा है, मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा?
10: राजा बनना आए तो इतना तो देना पड़ेगा, नहीं तो तुम जा सकता है नारायण सिंह।
9: नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं रुपए देने के लिए तैयार हूँ।
10: इट्स गुड, तुम अपने आप को किंग समझाओ।
9: लेकिन अगले महीने तो सुरेंद्र का राज्य अभिषेक है।
10: इसके चिंता मत करो, अपने आप को किंग समझो नारायण सिंह।
9: अच्छा,
10: विस्की पियो, पियो, नाउ यू आर माय फ्रेंड।
9: लेकिन मैं ये पीता नहीं।
10: टेक इट, नाउ यू आर अ किंग।
9: लेकिन
10: ओके, पियो पियो, शर्माओ नहीं।
9: नहीं नहीं वार्नर साहब,
10: पियो पियो बस।
0: अरे सुरेंद्र बेटा, बहुत अच्छे समय पर आ गए तुम।
12: क्या हुआ दादी मां?
0: ये देखो, कोई चिट्ठी आई है।
12: अरे इसमें तो अंग्रेजों का ठप्पा लगा हुआ है।
0: अंग्रेजों का ठप्पा लगा हुआ है?
12: हाँ दादी, अंग्रेजों का ठप्पा।
0: जरा जल्दी से खोल के देख तो क्या लिखा है इन अंग्रेजों ने।
12: जी, दादी इसमें तो
0: क्या लिखा है बता भी अब।
12: इसमें लिखा है कि ब्रिटिश सरकार ने फैसला किया है कि संबलपुर की रियासत अब सीधे सरकार के अधीन रहेगी।
0: सीधे सरकार के अधीन रहेगी?
12: हाँ दादी, और आगे
0: आगे क्या है सुरेंद्र?
12: आगे ये भी लिखा है कि अब रानी राजकुमारी को पेंशन दिया जा रहा है, तो वो राजमहल में नहीं रहेंगी।
0: हे राम, दुष्ट अंग्रेज कहीं के।
12: दादी माँ, इसमें ये भी लिखा है कि रियासत का काम काज देखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कुंवर नारायण सिंह को नामित किया है।
0: अच्छा?
12: आशीर्वाद दो दादी माँ, मैं इन अंग्रेजों को नहीं छोड़ूंगा, कोई राजमहल में आकर दिखाए तो मैं उसका खून कर दूंगा, और ये नारायण सिंह, इसको तो मैं।
0: ज्यादा उत्तेजित ना हो बेटा, धैर्य से काम लेने का समय है, ये समय समझदारी दिखाने का है, ना कि वीरता।
12: दादी, जिस राजमहल को सजाने में आपने अपनी सारी उम्र निकाल दी, उससे दूर मैं आपको नहीं देख सकता।
0: और जिस सुरेंद्र को मैंने अपनी गोद में पाला हो, उसका बुरा मैं भी नहीं देख सकती, इसलिए मुझे फैसला लेने दो बेटा, जैसा कहती हूँ वैसा कर।
12: तो क्या करना है दादी माँ?
0: मैं राजमहल छोड़ू, उससे पहले तू ये राजमहल छोड़ दे बेटा, क्योंकि अंग्रेज और नारायण सिंह दोनों सबसे पहले तुझे ही मारने की कोशिश करेंगे।
12: अरे मैं अकेला उनके दांत खट्टे करने के लिए काफी हूँ दादी माँ।
0: अभी जोश नहीं, होश की जरूरत है बेटा, बस जैसा कह रही हूँ वैसा करते जा।
12: ठीक है दादी माँ, मैं राजमहल छोड़ दूंगा, फिर आगे क्या करूंगा?
0: आगे तुम्हें अपने जैसे युवाओं की खोज करना है और वतन की सेवा में लग जाना है। जब तक रियासत अंग्रेजों से मुक्त ना हो जाए, तब तक चैन की सांस नहीं लेना।
12: ऐसा ही होगा दादी माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए।
0: विजयी भव बेटा, विजयी भव।
7: मुझे मालूम था महाराज कि राजा बनने के अधिकारी तो आप ही हैं।
3: मेरा क्या, बस मेरी काबिलियत और ऊपर वाले की इच्छा का संयोग समझो।
7: वही तो मैं कह रहा था।
3: कहो, आने का प्रयोजन कैसे हुआ?
7: बस पास से ही गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलकर बधाई देता चलूं। महाराज की जय हो। अच्छा तो महाराज, अब मैं चलूं?
3: आइए आइए वार्नर साहब, आइए, बस आपका ही इंतजार हो रहा था।
10: कुंवर नारायण सिंह, तुम्हारा राजपाट कैसा चल रहा है?
3: राजपाट तो ठीक चल रहा है वार्नर साहब।
10: तुम्हें मालूम है कि सुरेंद्र तुम्हारे स्टेट पर अटैक करने वाला है?
3: अच्छा, मेरे राज्य पर चढ़ाई?
10: तुम्हारा नाई नारायण सिंह, हमारा बोलो, आवर स्टेट।
3: आप हंस रहे हैं, लेकिन सुरेंद्र आक्रमण क्यों करेगा?
10: तुम उसका राज्य चीनेगा और वो आक्रमण नहीं करेगा नारायण सिंह।
3: अब क्या होगा?
10: तुमको आम मदद करेगा, तुमको डरने का नहीं नारायण सिंह, तुम तो बस खिलाओ।
3: ये लीजिए वार्नर साहब।
10: तुम कौन हो?
3: ये हमारा मित्र है दया।
10: गुड गुड, ये व्हिस्की बहुत अच्छा है। चीयर्स।
7: क्या कहा?
3: अरे चीयर्स कहो, चीयर्स।
7: चीयर्स।
5: 1833 से 1857 तक का समय सुरेंद्र साय के लिए बहुत उथल पुथल भरा रहा। सुरेंद्र साय ने कई बार अंग्रेजों से लोहा लिया, नारायण ने हर बार अंग्रेजों का साथ दिया। इतिहास गवाह है कि कई स्थानों पर उन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया। 1950 के आसपास अंग्रेजों ने छल से सुरेंद्र साय को संधि के लिए बुलाया और बंदी बना लिया। बंदी बनाकर उन्हें बिहार के हजारीबाग जेल में भेज दिया गया। इस दौरान उनकी पत्नी ने अंग्रेजों का सामना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
10: नारायण, हम तुमको शाबाशी देना चाहता है। 1857 के रिवोल्ट का तुम्हारे स्टेट में कोई ज्यादा असर नहीं आए, बस एक प्रॉब्लम आए।
3: अरे समस्या बताइए साहब, मैं चुटकियों में उसका समाधान निकालता हूँ।
10: वो तुम्हारे चुटकी का खेल नहीं है नारायण सिंह।
3: फिर कौन है?
10: इट्स सुरेंद्र सिंह। वो सुरेंद्र सिंह आए जिसने तुम्हारा और हमारा दोनों के नाक में दम कर रखा आए।
3: लेकिन वो तो हजारीबाग के जेल में बंद है।
10: हमको अभी अभी खबर मिला है कि वो अपने आप साथियों के साथ जेल से भाग गया है।
3: अरे बाप रे, अब मरे।
10: तुम डर रहा है नारायण, तुम डर रहा है?
3: नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं।
7: सुरेंद्र दा, आप? वो भी इतनी रात को?
12: हाँ।
7: आओ सुरेंद्र दा, अंदर आओ।
12: मैं अकेला नहीं, मेरे साथ 8 साथी भी हैं।
7: अरे तो इसमें क्या बात है, आप सभी अंदर आ जाइए।
12: और बता दया, रियासत के क्या हाल है?
7: रियासत के बारे में मुझे ज्यादा खबर नहीं है सुरेंद्र। जब से आप राजमहल से निकले हैं तब से मेरे कदम भी नहीं पड़े वहां पर।
12: वो तो पता चल ही जाएगा। इस बार बेहतर तैयारी के साथ दुर्ग पर आक्रमण करना होगा। विद्रोह की वजह से अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बना है, इसे भुना लेना चाहिए।
7: हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस बार मौके को भुना लेना चाहिए।
5: हजारीबाग जेल से निकलकर सुरेंद्र साय ने अपने साथियों के साथ मिलकर युद्ध शुरू कर दिया। इस बार वो अंग्रेजों के दुर्ग पर अधिकार करने की स्थिति तक पहुंच गए, परंतु इस बार भी अंग्रेजों ने चालाकी से काम लेते हुए दुर्ग पर सफेद झंडा फहरा दिया। संधि वार्ता के लिए जब सुरेंद्र साय दुर्ग में पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और संबलपुर जेल में डाल दिया गया। पर सुरेंद्र सिंह जैसे वीर को साध पाना अंग्रेजों के बस में नहीं था। मात्र 3 दिन के अंदर ही फिरंगियों की आंखों में धूल झोंक कर वो फरार हो गए। इस बार 1858 से 1863 तक उन्होंने अंग्रेजों से कई मोर्चों पर युद्ध किया और हराया। बिहार और मध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्र भी सुरेंद्र साय ने अपने कार्यक्षेत्र में शामिल कर लिया। सुरेंद्र साय के इन कामों से अंग्रेजी सरकार बौखला उठी।
10: नारायण, तुम अभी तक सुरेंद्र को नहीं पकड़ सका आए। तुम्हारे लोगों पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं आए।
9: सर, ये केवल मेरी विफलता थोड़े है। सुरेंद्र के पीछे लगे तो आप भी हैं, वो भी पूरी सेना के साथ।
10: क्या बकता है नारायण?
9: सर, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो बस
10: हम तुमको आदेश देता आए कि 1 महीने में हमको सुरेंद्र सिंह चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारा स्टेट वापस ले लेगा।
9: नहीं नहीं सर, ऐसा मत करिएगा।
10: जो हमको सुरेंद्र चाहिए, जिंदा या मुर्दा।
9: सर, वो कितना चालाक है ये तो आप जानते ही हो। 2 बार जेल तोड़कर फरार हो चुका है, वो पकड़ में आता ही नहीं।
10: नारायण, हमको इस बार कोई फॉल्ट नहीं चाहिए, हम क्लीन काम चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारा स्टेट छीन लेगा।
9: मैं कोशिश करता हूँ।
10: कोशिश नहीं नारायण सिंह, आई वॉन्ट सुरेंद्र साय।
9: ठीक है सर, सुरेंद्र आपको मिल जाएगा।
10: ग्रेट, सुरेंद्र मिल जाएगा। नारायण, व्हाट्स किलाव?
9: ये लीजिए सर।
10: तुम भी बनाओ?
9: हाँ हाँ सर।
10: चीयर्स।
9: चीयर्स।
10: सुनो, हम तुमको एक बात बताता है।
9: क्या सर?
10: अगर तुम इंडियन हमारी मदद नहीं करेगा तो हम सरकार चलाने को नहीं सकता।
9: वो तो है सर।
10: चीयर्स।
9: चीयर्स।
5: दया सुरेंद्र साय की रणनीति जानने के लिए बहाने से उन्हें जंगल में बुलाता है।
12: इतने दिन तक कहाँ थे दया के निधि? अभी 3 सप्ताह पहले तुम्हारे घर गया था, लेकिन तुम्हारा कोई अता पता नहीं था।
7: अरे, मैं किसी काम से कहीं बाहर चला गया था, शायद इसीलिए।
12: आज फिर अचानक इस जंगल में मुलाकात करने का प्रयोजन?
7: कुछ नहीं सुरेंद्र भाई, देश प्रेम हिलोरे मार रहा है। फिर तुमसे बड़ा देशभक्त मेरे सामने अभी है भी कौन जिसकी मदद मैं कर सकूं?
12: चलो दया, आखिर उम्र के इस पड़ाव पर तुम्हें देशभक्ति का मतलब तो समझ में आया।
7: बताओ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ?
12: अभी अगले सप्ताह बस्तर से सतपुड़ा तक की तरफ कूच करना है।
7: अच्छा,
12: तुम हमारे साथ रहोगे और हमारी कार्य प्रणाली को समझोगे।
7: ठीक है, मैं तैयार हूँ।
12: बस एक बात का ध्यान रखना।
7: वो क्या?
12: कभी मरना भी पड़े तो मर जाना, लेकिन अपने साथियों के नाम अंग्रेजों को मत बताना।
7: लेकिन मुझे अभी कोई जिम्मेदारी चाहिए इसमें।
12: अच्छा ठीक है, ये पत्र तुम्हें बिलासपुर तक सकुशल पहुंचाना है, इसके बाद हम सीधे सतपुड़ा में मिलते हैं।
7: ठीक है,
12: काम ठीक से करना, हम जल्द मिलेंगे।
9: अरे वार्नर साहब, ये लीजिए, विस्की पीजिए।
10: What happened नारायण, तुमको क्या हो गया है?
9: अरे पता चल गया।
10: क्या पता चल गया?
9: अरे सुरेंद्र का पता चल गया है, आज ही मेरे पास ये दया की चिट्ठी आई है।
10: Great, I can't believe this. Really, दया तो कमाल का आदमी है।
9: अरे पूरे 2 लाख में सौदा हुआ है सर।
10: ठीक है, अगर कब्र सही है तो 2 लाख मैं सरकार से दिलवा दूंगा।
9: ये बहुत अच्छा रहेगा सर, ये लीजिए सर। चीयर्स।
10: ये समय विस्की पीने का समय नहीं है नारायण।
9: सर आप कहाँ जा रहे हैं?
10: जिधर आम को जाना चाहिए। बेबी तुम अच्छा काम किया नारायण सिंह, उसके लिए तुम पियो, यो कैरी ऑन।
9: ठीक है सर।
5: इसके बाद वार्नर ने अपने सहयोगी हैमिल्टन के सहयोग से सुरेंद्र साय को पकड़ लिया। उन्हें पकड़ने के बाद बुरहानपुर के पास असीरगढ़ के अभेद्य किले में कैद कर दिया गया। दया और नारायण के सहयोग से वार्नर ने सुरेंद्र के रिश्तेदारों को भी पकड़ लिया।
10: आखिर तुम हमारी मुट्ठी में आ गया महाराज सुरेंद्र सिंह।
12: तुम तो क्या, तुम्हारी पूरी पलटन की मुट्ठी भी चाहे तो मुझे कैद नहीं कर सकती वार्नर। मुझे तुम जैसे नीच और कायर अंग्रेजों से नफरत है। मैं थूकता हूँ तुम्हारे ऊपर।
10: आपको गाली देता है, हम तुम्हारा टांग खींच लेगा।
12: मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
10: अभी तुमको फर्क पड़ेगा सुरेंद्र साय। सिपाही, कहाँ है सुरेंद्र का फैमिली?
12: मेरे रिश्तेदारों को?
10: यस, तुम्हारे फैमिली को, तुम्हारा रिश्तेदारों को। देखो तुम्हारे आँख के सामने हम उनका कैसा हाल करेगा।
12: मेरी आंखों के सामने मेरे रिश्तेदारों को कत्ल मत करो। मैं ये सब नहीं देख सकता।
10: ठीक आए, तुम रिश्तेदार क्या, आप तुम कुछ भी नहीं देख सकेगा। आप तुम सिर्फ सुन सकेगा सुरेंद्र साय।
12: तो यार अंग्रेज मेरे रिश्तेदारों को सताएगा।
10: ये लो तुम्हारा आ गया सुरेंद्र साय।
12: मेरे कान अभी बाकी हैं कमीने, और मैं सुनना भी नहीं चाहता।
10: ओके, हम तुम्हारा ये विश भी पूरा करता है।
4: ओह।

0: मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम।
1: इस प्रकार से असीरगढ़ के किले में सुरेंद्र साय को अंधा गूंगा और बहरा बना दिया गया। एक एक करके उनके पुत्रों और अन्य रिश्तेदारों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद उड़ीसा के इस महान क्रांतिकारी को 28 फरवरी 1884 को फांसी की सजा दी गई और सुरेंद्र साय के विद्रोह का दमन कर दिया गया। लेकिन सुरेंद्र साय ने उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश के लोगों के मन में स्वतंत्रता की जो अलख जगाई, उसे अंग्रेज कभी नहीं बुझा सके।
2: निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव सरस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: Assertiveness without generating anger, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और स्टेबल भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर। उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

अपनेपन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। नए बिलीफ सिस्टम्स के साथ आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि अब हमें समझ में आया कि बिलीफ सिस्टम्स भी, या जिन पर हमारा पूरा जीवन खड़ा है, वो कुछ मान्यताएं हम खुद तैयार कर सकते हैं, खुद क्रिएट कर सकते हैं। सबसे बड़ी मान्यता जो अब हम क्रिएट कर रहे हैं वो ये कि खुशी यानी कि हैप्पीनेस मेरी अपनी क्रिएशन है। किसी भी स्थिति में, किसी भी समय मैं चाहूँ खुश रह सकती हूँ। अमेजिंग, व्हाट अ पावरफुल थॉट एंड व्हाट अ पावरफुल एक्सपीरियंस। आई थिंक आप सब अब उसे अनुभव कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि अब पिछली कड़ी से जो हमने बात करनी शुरू की है, सॉल्यूशंस पर आएं। ये तो एक नया हमने बिलीफ सिस्टम किया कि मैं खुद अपनी खुशी क्रिएट कर रहा हूँ। अब बाकी जो बिलीफ सिस्टम्स हैं उन पर काम कैसे करना है और कैसे नए बिलीफ सिस्टम्स को बनाते जाना है, और इसमें हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अमेजिंग, यू नो द वे नाउ लाइफ लुक्स। मतलब अभी तक पूरी तरह से डिपेंडेबिलिटी थी कि जो जो हो रहा है उसके आगे हम हताश थे, हमारे सामने कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक स्पार्क शुरू हुआ है, एक यू नो एक्साइटमेंट आई है कि यस नाउ आई कैन क्रिएट माय ओन लाइफ, सो थैंक यू सो मच। और ज्ञान की जहां हम बात करते हैं तो एक डेप्थ में जाकर हम समझ पा रहे हैं चीज़ों को। थोड़ा सा रिकैप लेते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे बिलीफ सिस्टम नए जो हैं उन्हें क्रिएट नहीं करने देते, क्या कुछ मुझे करना है।
1: हमने ये देखा कि जो हमारा स्ट्रेस है, टेंशन है, जिसको आज दिन तक हम समझते कि बाहर से आ रहा है, ये हमारी अपनी क्रिएशन है। अब वो तो समझ में आ गया, लेकिन अब अपना ध्यान कैसे रखें, यू नो क्या क्रिएशन, बट देन इट्स गेटिंग क्रिएटेड, सो व्हाट डू आई डू दैट इट डजंट गेट क्रिएटेड। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी सॉ इज टू प्रैक्टिस बीइंग क्वाइट। अंदर जो ये सारा दिन बहुत शोर चलता है संकल्पों का, इसको अटेंशन रख के धीरे करना है। और उसके लिए अगर अंदर नहीं हो रहा है तुरंत से, तो पहले यहाँ से शुरू करें। और हमने देखा कि अगर हम अभ्यास करें कि कम बोलें, मीठा बोलें, धीरे बोलें, और कभी कभी मौन भी रखें। कि दूसरा हमने देखा कि बहुत सारी बातें हैं जो हमने पकड़ कर रखी हुई हैं। इट इज़ सिचुएशंस जो हुई, लोगों ने कुछ कहा, या मेरी अपनी अटैचमेंट्स, मेरे अपने बिलीफ, मेरे साथ गलत हुआ, आई एम द विक्टिम, यू नो दिस काइंड ऑफ थॉट्स हमने पकड़ कर रखी हैं, और शायद पूरी जीवन उसको पकड़ कर रखेंगे। और पकड़ने से और किसी का नुकसान नहीं होता,
0: मेरा ही होता,
1: मैं ही दर्द में रहती हूँ। स्पेशली दिस फीलिंग ऑफ यू नो आई एम द विक्टिम, मेरे साथ लोगों ने बुरा किया, क्योंकि मेजोरिटी आर फीलिंग लाइक दिस, तो वो पकड़ के रखना इज़ वेरी डैमेजिंग फॉर मी। तो एक सिंपल तरीका है कि साइलेंस में बैठे, उस बात को लें, बात के दर्द में ना चले जाएं फिर से, डोंट लिव थ्रू द होल एक्सपीरियंस ऑल ओवर अगेन, लेकिन एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर उस सीन को देखें, समझें कि दर्द हम क्रिएट कर रहे थे, एंड लेट गो नाउ। कई बार कई भाई बहने कहते इतना ईजी नहीं है, आई कैन नॉट लेट इट गो लाइक दिस। आप एक बार करो, दो बार करो, 10 बार करो, फाइनली तो वो चला ही जाएगा।
0: लेकिन हो ये रहा है कि बार बार वही सिचुएशन भी आ जाती है फिर से।
1: वो सिचुएशन तब तक फिर से आएगी जब तक कि मैंने वो बात अंदर पकड़ी हुई है। यू सी वी सॉ पहले भी कि जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो फिर से प्रेजेंट में क्यों क्रिएट होते, क्योंकि हम थॉट्स वही वाली फिर से क्रिएट करते, तो हम वही एनर्जी ट्रांसमिट करते, वही फिर मेरे साथ हो जाता है। एंड सपोज वो सिचुएशन कुछ और है जो बाहर से आ रही है, लेकिन अगर मैंने लेट गो किया है अपने हर्ट को, तो अब क्या होगा, भले वही वाली सिचुएशन आ सकती है, आप हर्ट नहीं होंगे। सी फॉर मी व्हाट इज द सिचुएशन, फॉर मी द सिचुएशन इज द रिस्पॉन्स दैट आई क्रिएट टू द सिचुएशन। सपोज आप यहाँ बैठ कर कुछ बड़ा बुरा भला ऐसे कह रहे हैं, मुझ पर इफेक्ट क्यों हो रहा है,
0: क्योंकि आई एम क्रिएटिंग हर्ट।
1: लेकिन जिस दिन वो मुझ पर इफेक्ट होना बंद हो गया, उस दिन मेरे लिए वो कोई सिचुएशन है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट समवन सिटिंग देयर एंड saying what they feel like saying.
0: Is it like I switch off actually andar se?
1: It's not I switch off, I change my perspective.
0: Haan.
1: Switch off agar

0: हम कहेंगे तो देन आई से कि मैंने जैसे
1: वो
0: कि
1: कुछ
0: अपने
1: बहुत
0: आप को
1: ब्लॉक कर लिया।
0: हाँ दुनिया से अलग कर लिया है, मैं यहाँ सोचना फील करना बंद कर देती हूँ, दैट्स नॉट ट्रू. दो तरह की थॉट्स और फीलिंग्स क्रिएट कर सकते हैं ना, या तो हर्ट के या फिर
1: हैप्पीनेस के,
0: कंपैशन के. इस केस में
1: कि
0: अगर
1: भाई वो दूसरे
0: आप
1: व्यक्ति की अपनी
0: हाँ,
1: पेन
0: सो
1: है।
0: आई एम सिटिंग हियर और आई एम वॉचिंग यू क्रिएटिंग यू नो समथिंग विच इज़ ट्रबलिंग यू, मुझे ये समझ में आ रहा है इनकी अपनी कुछ चीज़ें बाहर निकल कर आ रही हैं. एक है गुस्सा होना, एक है नफरत करना, एक है दर्द में चले जाना मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं, और एक है अपने दर्द को नहीं क्रिएट किया तो फिर सेकंड किसके बारे में
1: वो दिखने
0: सोचेंगे.
1: लग गया कि ओ हो ये बेचारे को
0: हाँ
1: क्या
0: सी
1: प्रॉब्लम
0: क्या
1: हो रही
0: होता
1: है।
0: है, व्हाई आई एम नॉट एबल टू सी यू, व्हाई आई एम नॉट एबल टू फील एनीथिंग फॉर यू, कि ये क्यों दर्द में है, व्हाट कैन आई डू टू हेल्प और वट एवर, बिकॉज मैं ही तो दर्द में चली गई. तो जैसे ही मैं दर्द में चली गई तब मुझे एक ही दिखाई देता है एंड दैट इज मी एंड माई पेन एंड माई हर्ट. बाकी कौन लोग मेरे आसपास हर्ट हैं, इट डजेंट मैटर. सो देन आई रियली आई एम नॉट गिविंग एनी थिंग इन टू रिलेशनशिप्स, आई एम ऑक्यूपाइड विद माई ओन पेन, एंड पेन को भी मैं ठीक नहीं कर पा रही, मैं बस उस दर्द में जीवन को जीते जा रही. लेकिन जब खुद का दर्द धीरे धीरे खत्म होगा तो एनर्जी स्टेबिलिटी की होगी, स्विच ऑफ नहीं होगी. स्विच ऑफ मतलब मेरा आपके साथ कनेक्शन फिनिश्ड, आई हैव नथिंग टू डू विद यू, नो, इट्स जस्ट दैट आई विल नॉट क्रिएट पेन, सो आई विल क्रिएट लव. सी हम कहते हैं आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, बट वेन आई एम क्रिएटिंग पेन
1: आई
0: आई एम
1: कैन
0: नॉट
1: नॉट।
0: क्रिएटिंग लव. यू नो इवन इन अ पेरेंट चाइल्ड इन अ हस्बैंड वाइफ हम कहेंगे बट आई लव यू, बट देर सो मच ऑफ पेन वाइल वी आर सेइंग दैट, देर सो मच ऑफ हर्ट, दैट्स नॉट एनर्जी ऑफ लव. एक फॉर्मूला जो हमें याद रखना है, एक टाइम पे वो सिर्फ एक एनर्जी हो सकती है, वन वी नो नीड एनी वन टू टेल अस कि वो कौन सी वाली है, वो हमें खुद अंदर पता चलता है कि ये अच्छी अच्छी वाली है, विच मेक्स मी फील गुड आफ्टर दैट, और इट मेक्स मी फील लो, एंड
1: Right.
0: फिर वही वाली क्रिएट
1: Again,
0: करना.
1: we're actually looking at the new set of life and set of belief systems for us. The first was that I create everything. I create my happiness, I create my hatred, I create love.
0: अगर पता चल जाता है, देखो अवेयरनेस के स्टेप्स क्या हैं, पता चल गया आई एम फीलिंग लो, तुरंत एक थॉट को चेंज करना है, आपकी फीलिंग तो अपने आप चेंज हो जाएगी. अवेयरनेस के साथ चलना शुरू करें, डोंट इग्नोर योरसेल्फ. अभी हम इग्नोर कर रहे हैं अपने आप को. आपका मूड अगर आज ख़राब मुझे दिखाई देता, आई एम अवेयर, मुझे पता चलता है. अगर आपका और मेरा थोड़ा भी कोई रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता नहीं
1: पता चल
0: चाहिए,
1: जाता है।
0: थोड़ा भी रिश्ता है, तो मुझे पता चलता है कि आपका मूड ठीक नहीं है. सेकेंड स्टेप मैं क्या करूँगी, आपका मूड ठीक नहीं है आज, क्या हुआ, दिस इज़ कंसर्न, एंड देन इफ देर इज़ एनी थिंग आई कैन डू टू हेल्प. अगर हम औरों के साथ ये कर सकते हैं, अपने साथ,
1: अपने साथ तुम हाँ मूड को मतलब वी आर वेरी ट्रू।
0: अपने साथ नहीं क्या, जिसके साथ पहला रिश्ता है, तो मेरा मूड ठीक नहीं है, आई डोंट इवन स्टॉप टू सी व्हाई माय मूड इज नॉट ओके, कौन सी वो थॉट है. जैसे आपको मैं पूछूंगी किसने क्या कहा आपको जिससे यू नो आपका मूड ठीक नहीं हुआ, तो हम सोर्स तक जाने की कोशिश, इनफैक्ट हम सोर्स बाहर ढूंढ रहे हैं लेकिन हम ट्राई तो कर रहे हैं ना, आपको किसने क्या
1: कौन सी
0: कहा.
1: सिचुएशन थी, क्या हो गया
0: हाँ
1: था, कैसे हुआ। यस
0: देन यू विल से
1: कंटिन्यू।
0: यू नो देन दे सेड दिस देन आई फेल्ट दिस वट एवर, एटलीस्ट वी टेक टाइम एंड दिस इज हाउ अ रिलेशनशिप डिवेलप्स.
1: एंड इनफैक्ट देन इफ आई एम गोना टेल यू कि उसने ऐसे ऐसे किया, तो आप जो थर्ड पर्सन है यू विल बी एबल टू टेल मी कि नहीं उसने ऐसा इसलिए कहा होगा।
0: Whatever. But this takes time, ना? लेकिन suppose आप आ रहे हो, आपका मूड ठीक नहीं है, लेकिन आई एम नॉट बॉदर्ड एंड मैं पूछू भी नहीं, इट डजेंट इवन यू नो कम इन टू माई माइंड, नहीं है नहीं है, मुझे क्या करना है, बैठे रहें दर्द में, काम तो करें ना, बैठ के काम करने आया ना आप यहाँ पर, भले आप दर्द में हैं आप काम करो, वट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज दिस, देर इज नो सेंसिटिविटी टूवर्ड्स द अदर पर्सन. तो इसलिए वी आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू अदर पीपल बट वी नॉट वेरी सेंसिटिव टू आर सेल्व्स. खुद को हम कहेंगे दर्द में है ना, टेंशन है, कोई बात नहीं, काम करो अपना. दिस इज बींग सो इनसेंसिटिव टू योर सेल्फ के रहने दो ना अंदर दर्द में, मेरे जीवन का लक्ष्य काम करना,
1: और
0: काम
1: उसका तो
0: करना.
1: कुछ हो ही नहीं सकता ना। सबसे बड़ी बात हमें ये लगता है कि हमारे अपने दर्द का कोई इलाज नहीं है।
0: कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 2 मिनट, औरों की प्रॉब्लम डिस्कस करने में 10 मिनट लग सकता, लेकिन अपनी जब करेंगे ना अपने साथ, 2 मिनट्स, जस्ट टेक आउट 2 मिनट्स, सिट बैक, एंड कोई काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो 2 मिनट निकालने से कुछ रुक जाएगा.
1: हम दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बाकी सारी चीजें छोड़ देते हैं।
0: हम 1-1 घंटा बैठ सकते हैं किसी और के साथ, क्या ये अगर कोई प्रॉब्लम में है, और ये 2 मिनट अगर अपने साथ निकालते हैं, अपने को ठीक करते हैं, फिर काम करने जाते हैं, wouldn't the performance be very effective?
1: Of course, I'll be so light.
0: Yes, you know, when we're talking of this journey of self-transformation, jara bhi feel ho ki dard hai, uncomfortable hai, don't continue with it.
1: Take a pause,
0: yeah,
1: yes.
0: It is just 99 fever. Don't continue. Take something immediately. नहीं तो वो शाम तक बढ़ता जाएगा और फिर वो सिर्फ मेरे तक ना रहकर मेरे रिश्तों में भी जाता है, मेरे काम पे भी इफेक्ट होता है और इतनी सी बात फिर
1: इतनी बड़ी बन जाती है. In fact, yeah, that is why the to check your happiness index every hour is also very important. You know?
0: जो वो दूसरा वाला इंडेक्स होता है फाइनेंशियल, उसको तो हर थोड़ी देर के बाद चेक करते हैं ना, टीवी पर, इंटरनेट पर, आपस में भी बात करते हैं, कहाँ तक पहुँचा, गिर क्यों गया इतना, व्हाट हैज हैपेंड इन द वर्ल्ड, अच्छा बढ़ गया, कितना अवेयरनेस है. सिर्फ एक ही चीज के बारे में अवेयरनेस नहीं है, अंदर क्या हो रहा है. एंड दिस शोज लैक ऑफ लव फॉर द सेल्फ. If I don't take care of you, it shows I don't, you know, you don't matter to me. Similarly, I think I don't matter to myself anymore. एक रिश्ता है जिसको हमने totally ignore कर दिया है, वो अपने आप के साथ है. आप सोचो कोई रिश्ता है जिसमें ना हम time देते, ना हम बात करते कभी, ना हम उनका ध्यान रखते, ना हम उन पर ट्रस्ट करते, ना हम उनसे प्यार करते, ना हम उनकी रिस्पेक्ट करते, वो रिश्ते का क्या होगा?
1: It does not exist actually, that
0: is why. So that's with the self. That is with the self. No time, no conversation, no love, no care, no trust. That's why I say vacuum hai andar, vacuum hai, khalipan hai. Kyun? अंदर से कोई अपने आप से कनेक्टिविटी फील ही नहीं हो रही. और फिर जब ऐसी बात सुनते तो कहते हैं अपने आप से रिश्ता वो क्या होता है.
1: Let's check. हमारा अपने आप से रिश्ता कहाँ तक है.
0: बहुत सुंदर.
1: और आज जैसे समझ में आया कि मतलब जिस तरह से आपने वो सारे जो बातें जो हम लोगों के साथ रिश्तों में ढूंढ रहे होते हैं, अपने साथ तो हमने उसे कायम ही नहीं किया.
0: जब तक अपने साथ नहीं कायम करेंगे, we're not doing justice outside. हम नहीं, I just can't love someone else without loving myself first. क्योंकि जब तक यहाँ प्यार नहीं है, you know, loving myself मतलब मुझे स्मृति है कि I'm a loveful being. There is energy of love here. Then that will flow. With energy of pain here, giving love to others.
1: It is
0: cheating,
1: not possible.
0: Absolute cheating with myself and with other people, jinko hum kehte ki I really love you.
1: I can do everything for you. Mere se main apne aap ko bhula ke aapke liye kaam karti hu. You know, kitni baar hum
0: belief system. Ye to belief system bana liya na ki apne liye karna ye swarth hai, dusron ke liye karna ye pyar hai. दूसरों के लिए करना बहुत प्यार है, लेकिन वो होगा नहीं.
1: वो हो ही नहीं रहा.
0: वो होगा नहीं.
1: तभी तो हमारे रिश्तों में कितना कुछ करने के बाद, थॉट्स भी देने के बाद, आई नो समवेयर, यू नो, नाउ देयर इज समबडी हु सेज कि अच्छा मैंने बात समझ गया, मैं समझ चुका हूँ कि थॉट पर काम होता है, तो मैं उनको बहुत अच्छे पॉजिटिव थॉट्स देता हूँ. बट अगर मैं अपने आप के अंदर ही पॉजिटिव नहीं हूँ.
0: Well, see, many people are saying this, कि अच्छा हमें समझ में आ गया कि जो रिश्ते हमारे थोड़े से ऊपर नीचे हैं, हमें बैठकर उनको गुड विशेज भेजने हैं, हमें उन खुद की स्थिति गुड विशेज भेजने की चीज ही नहीं है.
1: वो अपने आप चले जाते हैं.
0: Yes.
1: क्योंकि I know, हम टेंशन में बैठ के, you know, कि मतलब
0: उनको गुड विशेज भेजनी है, या यस यू आर अ लवफुल बींग, यू आर अ प्योर बींग, यू आर अ पीसफुल बींग, ये भेजने की चीज नहीं है. वाइब्रेशंस है जो यहाँ है, आप चाहो ना चाहो, इट्स गोइंग टू स्प्रेड इन टू द एनवायरमेंट. एंड दैट्स वाई राजयोग टीचर्स अस कि कुछ मेहनत नहीं है रिश्तों में. इट्स ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. एवरीबडी एल्स इज ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ. तो उसके लिए हर रोज थोड़ा समय अपने लिए निकालें. सुबह का समय अपने आप के साथ 5-10 मिनट जरूर स्पेंड करें, इवन इफ यू आर लेट. इवन इफ यू आर लेट, यू नो, हम सोचेंगे नहीं लेट हो गया, तो वो लेट तो हर ऑलमोस्ट थोड़े दिन बाद होता ही रहता है. लेकिन जैसे भले लेट हो जाए, फिर भी आप फटाफट तैयार तो होते ना, फटाफट नाश्ता तो कर. इसी तरह ये टाइम भी उसको एक अपनी उसमें फिट करना है रूटीन में, कि माय डे स्टार्ट्स विद 5 मिनट्स फॉर माय सेल्फ. अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इफेक्टिव डे. ये मुझे अपने आप को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. इट हैज टू स्टार्ट विद 5 मिनट्स ऑफ योर सेल्फ. एंड वो 5 मिनट अपने यहाँ थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करें, अपने थॉट्स को क्रिएट करें. सारा दिन में देखना मुश्किल लग रहा है ना, अवेयरनेस नहीं आ रही, तो दिन की शुरुआत वो क्रिएट करके होनी चाहिए. आई एम अ वेरी पावरफुल बींग, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द सिचुएशन टुडे, द डे इज गोइंग टू बी इन माई कंट्रोल. आज का दिन मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ पेशेंस, लव. चाहे कुछ भी हो जाए, I am not getting irritated today. You know, it's planning how you're going to be today. So, jaise we plan what to do, hame aaj kya karna hai, let's start planning how to be. इसलिए हम बार बार यही याद रख रहे हैं, हम ह्यूमन डूइंग्स नहीं हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं. सो हाउ एम आई गोइंग टू बी टुडे, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन हाउ आई एम गोइंग टू बी, दैट इज व्हाट आई विल डू. देखो, आप कितनी भी अपनी डायरी प्लान कर लो कि आज ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, अगर आपका मूड खराब हो गया किसी चीज से, आपका तो पूरा शेड्यूल ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा सारा. और अगर करोगे भी 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, लेकिन वो मूड तो हर घंटे के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस करता है, और फिर वो पूरी मीटिंग्स डिस्कशंस जैसी होनी चाहिए उस फ्लेवर पर नहीं जाती, क्योंकि आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ व्हाट टू डू. लेट्स स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ हाउ टू बी. यू नो दैट बीइंग पार्ट की भी एक डायरी नहीं तो एक इंटरनल तो डायरी लिखना शुरू करें, और हर रोज एक चीज एटलीस्ट अपने लिए डिसाइड करें, क्योंकि वैल्यूज ऐसी चीज है, एक से सारी इंटरकनेक्टेड है. आप एक चीज डिसाइड कर लो, आज चाहे कुछ भी हो जाए, आई एम नॉट गेटिंग इरिटेटेड. अगर मेरे अंदर इरिटेशन की आदत है छोटी छोटी छोटी छोटी, आई एम नॉट गेटिंग इरिटेटेड टुडे, टुडे इज स्टेबिलिटी टोटली. अब सुबह डिसाइड कर लिया, अपने आप को विजुअलाइज कर लो ये करते हुए, देख लो अच्छी तरह से कि सारा दिन ड्राइवर के साथ ऑफिस में ये, क्रिएट दैट सीन. दिस इज प्रोग्रामिंग फॉर द माइंड. आपने फीड कर दिया, अब आप निकले अपने सारा दिन के लिए. तो कई बार सुबह की बात थोड़ी सी भूल जाती है, तो फिर हर एक घंटे के बाद एक मिनट ब्रेक, 1 मिनट आफ्टर एवरी 1 आवर इज फॉर माई सेल्फ. इसको हम भले बहुत बार सुन चुके हैं, बहुत बार बोल चुके हैं, लेकिन अगर अभी तक नहीं करना शुरू
1: तो
0: किया है
1: कर लेना चाहिए.
0: लेकिन अब आप देखो, हमने जब पिछली बार ये डिस्कस किया, उसके बाद से आपने अलार्म लगाना शुरू किया, उसके पहले हमने कितनी बार डिस्कस किया, लेकिन जब तक अलार्म लगाना नहीं शुरू किया वो नहीं होता है. यू नो इट्स नॉट समथिंग लाइक हम सोचें हाँ ठीक है हम कर लेंगे, वो नहीं होगा. We have to initially use some external aid, कोई alarm, कोई computer पर reminder, put it into, it's like a homeopathy medicine.
1: And you know, अब क्या होता है, अब अपने आप ही, I'm just like, now
0: absolutely.
1: अपने आप वो click कर जाते हैं ना, start waiting की बजेगा.
0: Yeah. अब तो वो, you know, now वो, क्योंकि body clock है ना, वो आपका reminder आपको आ जाएगा, और जैसे ही आपको याद आएगा एक घंटा, उतनी देर में वो वहां से बचेगा.
1: You know, in fact, मैं ये exercises करने में सबसे ज्यादा lazy हुआ करती थी, because मुझे लगता था कि ये मुझे समझ में तो आ गया है. और ऐसा ही एक जो हमने belief systems को लिखना शुरू किया है,
0: right,
1: amazing है जो आपने कहा था कि वो, in fact, I would like to share कि हम सब शुरू कर दे, just take out those 5 minutes, you know.
0: उससे पता क्या होगा, जब जैसे बहुत सारे भाई बहने कह रहे हैं, हम सुनते हैं प्रोग्राम, we've been watching it for almost whatever 2 years, and अच्छा लग रहा है, लेकिन हो नहीं रहा अभी तक. तो एक ही स्टेप तो बचा, सुन भी लिया, समझ भी लिया, अंडरस्टैंड भी हो गया, एक्सेप्ट कर लिया. या दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि जर्नी है ना, शुरू शुरू में नहीं एक्सेप्ट किया था बहुतों ने, कहा कि ये कौन सी बातें हैं कि गुस्से के बिना काम होगा ये. पर धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे ट्राई किया, कभी रिजल्ट मिला, कभी थोड़ा नहीं मिला, लेकिन एक्सेप्ट होते गए. अब उसको अगर पूरी तरह से अपने जीवन में डालना है, थोड़े छोटे होमवर्क कर लेने चाहिए. बहुत कम टाइम लगाते हैं, 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, लेकिन दे कैन बी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग. इमेजिन, इतनी सी इन्वेस्टमेंट 5-10 मिनट की, और पूरी जीवन परिवर्तन हो जाए, रिश्ते बदल जाए. इट्स नॉट टू मच ऑफ टाइम, इज इट?
1: एंड इट्स वंडरफुल, इट बिकम्स, यू नो, वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. जब हम खुद को देखना, हमारा ना सारा ध्यान बाहर से एक्चुअली हटने लग जाए.
0: तो उसी तरह हमने ये सीरीज शुरू की थी ना, अपना ध्यान रखना. दैट्स व्हाट वी स्टार्टेड, कि स्पिरिचुअलिटी को आज दिन तक हम कहते थे ध्यान करना. इट्स बेसिकली ध्यान रखना. अपना ध्यान रखते जाओ रखते जाओ, बाकी सब चीजें विल जस्ट फॉल इनटू प्लेस. रिश्ते आपको पता ही नहीं चलेंगे कि कहाँ वो कॉन्फ्लिक्ट जो था वो खत्म होता गया, क्योंकि आपने उस चीज पर ध्यान रखना शुरू किया जहाँ कंट्रोल पॉसिबल है.
1: तो अब वो जो पहले थॉट बिना क्रिएट किए जो पेन आ जाता था या पेन मैं क्रिएट कर लेती थी, वो अब नहीं हो रहा है. I would like to share with you, क्योंकि मुझे ही प्रॉब्लम आई थी पहले कि थॉट कहाँ होता है, फीलिंग ही पहले आ जाती है.
0: True.
1: पर ये अगर थोड़ा सा एफर्ट करते हैं तो फीलिंग तक जा नहीं पाते, जाते नहीं है आप. सिचुएशन
0: देखो, इतनी सी मेहनत करने से हम उस स्टेज तक पहुंच गए हैं जहां वो फीलिंग आती नहीं, उससे पहले हमें पता चल जाता है ओके दिस इज थॉट, एंड चेंज करना इट्स नॉट डिफिकल्ट. इट्स नॉट डिफिकल्ट. और इतनी सी मेहनत करने से आपकी हेल्थ ठीक, आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक, रिश्ते ठीक, करियर ठीक, this is success.
1: सबसे बड़ी बात है डिसीजन मेकिंग ठीक.
0: सो एवरीथिंग यू सी देयर विल बी वन हार्मनी. जो हार्मनी आज तक हम जीवन में ढूंढ रहे थे, वी सेड हार्मनी इन रिलेशनशिप्स, दैट यूज्ड टू बी द इशू, कि संबंधों में कैसे वो हार्मनी लेकर आए, वो कभी नहीं आ सकती. आप कितना भी ट्राई करो, जब तक इंटरनली there is no harmony, you know, smooth flowing होना चाहिए, energy flow हो रही है, यहाँ इतना block हो जाता है,
1: मतलब otherwise वो कुछ जा नहीं रहा होता है, और वो जो जा रहा होता है वो वही कचरा.
0: We keep doing this one minute में हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट रुकते साफ कर देते, फिर थोड़ी देर बाद अगर कुछ इकट्ठा हो गया, फिर एक मिनट आता, फिर साफ कर देते. जैसे ये टेबल है, अगर हम इसको हर एक घंटे के बाद साफ करें, will this ever get dirty? See, over a period of time, even if अगर ये अभी गंदी हो चुकी है थोड़ी, लेकिन हर एक घंटे के बाद इसको आप एक कपड़ा मारते जाओ, उसके बाद तो ये कभी गंदी दिखनी नहीं, क्योंकि इसकी रेगुलर सफाई हो रही है. यहाँ लास्ट कब सफाई की थी, याद ही नहीं, अक्यूमुलेटेड है. और बहुत प्राउडली बोलते हैं 20 साल पहले वो बात हुई थी, मैं तो अभी तक नहीं भूला.
1: क्योंकि ये था, क्योंकि और ये था कि दूसरों के ऊपर डिपेंड हो रहा था ना, कि दूसरे. अभी भी एक मिनट के लिए मैं आपसे यही कहूंगी, जो एक मिनट वाला था, जब मैंने शुरू किया शुरू में, तो मैंने जैसे ही एक मिनट पे आती थी, मैं बाकी सारी चीजें भी देखती थी लोग, यू नो, और उसमें वो एक मिनट क्या, फिर वो बहुत टाइम निकल जाता था. सो इसीलिए देन आई रियलाइज्ड कि एक मिनट मुझे करना काम अपने साथ है. You know, कि कौन सी इमोशन किसके कारण हुई, that's not important
0: exactly. जैसे ही हम ये सोचने लगे I am hurt किसके कारण, तो फिर मेरा फोकस सारा कारण पर चला जाएगा, उनके कारण, और फिर उसके बाद सीरीज ऑफ थॉट होगी कि उनको कैसे चेंज होना चाहिए. यू नो, दैट्स हाउ द फोकस गोज ऑफ अगेन टू द अदर पर्सन. मैं हर्ट हुई हूँ, किसके कारण इज नॉट इम्पोर्टेंट, मुझे उस चोट को ठीक करना है, सो दैट आई कैन गो इन टू माई नेक्स्ट आवर. एंड उसमें भी मैं हर्ट हुई हूँ, उसको ठीक करना, दैट्स ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि मुझे ये पता है हर्ट मतलब नेगेटिव थॉट, ठीक करने के लिए क्रिएट अ पॉजिटिव थॉट. सो डोंट इवन थिंक व्हाई आई एम हर्ट, पेन है, जस्ट स्टॉप, क्रिएट अ पॉजिटिव थॉट. तो उससे क्या होगा, अगर कुछ क्रिएट हुआ भी होगा पिछले एक घंटे में, इट गेट्स डिलीटेड. एंड धीरे धीरे मन, क्योंकि जिसको प्रैक्टिस नहीं है बहुत समय से ऐसे पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने की, कर करके जैसे नेगेटिव थिंकिंग आदत बनी, वैसे धीरे धीरे
1: पॉजिटिव
0: थिंकिंग आदत बनती है. वो वन मिनट में जो हम करते हैं, वो वन मिनट में नहीं रहता ना, फिर सिर्फ उसका इफेक्ट इट पासिस ऑन टू द नेक्स्ट वन आवर. जब हम शुरू में ये करते तो एक मिनट का इफेक्ट अगले 5-1 मिनट तक पहुंचता, 10 मिनट तक, फिर उसके बाद भी गो टू आर ऑर्डिनरी वे. फिर 2-3 दिन में आप देखेंगे उस एक मिनट का इफेक्ट 10-15 मिनट पहुंचता. एंड धीरे धीरे यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग कि मोस्ट ऑफ द वन आवर आप स्टेबल हैं. आपको अब क्या होगा, आप उस वन मिनट पे भी डिपेंडेंट नहीं है. धीरे धीरे यू विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन दैट वन मिनट. अब आपको अवेयरनेस आने शुरू हो गई कि जैसे ही दर्द क्रिएट होता है, आपको पता चल जाता है. तो आपको वेट थोड़ी करना है कि जब नेक्स्ट अलार्म बजेगा तब मुझे उसको क्लियर करना.
1: वेरी ट्रू, यू नो.
0: सो नाउ दिस इज बिकमिंग कि जो हम आज दिन तक कह रहे थे कि मन को कैसे देखें, वो देखना अब नेचुरल हो गया. तो बिकम वेरी वेरी सिंपल.
1: अब तो आप मन के साथ ही चल रहे हो. You know, like your journey actually is with your own self.
0: पहले भी चल रहे थे साथ में.
1: हाँ, लेकिन वो पहले हमें पता नहीं था ना.
0: It's like आपका बच्चा है और आप उसका हाथ उस आपके साथ है और वो आप जहाँ जहाँ जा रहे हो वो आपके साथ साथ है. लेकिन एक है आप सारा दिन, यू नो लाइक अ चाइल्ड इज गोइंग विद यू टू वर्क. आपका बच्चा आज आपके साथ काम पर जा रहा है, कंटिन्यूसली आपका हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है उसकी तरफ. वो कभी वहां गिर रहा है तो भी आप ऐसे ही घसीट रहे हो, उसको चोट लग रही है आप तो भी नहीं रुक रहे हो, आप उसको ऐसे ही घसीटे जा रहे हो. उसको भूख लग रही है, शोर मचा रहा है, आप सुनते ही नहीं हो. तो क्या है, तो वो फिर भी साथ में. अब क्या है, अब भी वो साथ में है, अब भी आप सारा काम कर रहे हो लेकिन एक नजर सब ठीक है. और अगर उसको थोड़ा सा भी वो किसी बात पर रोने लग रहा है, आप एक मिनट अपने काम से निकाल सकते हो, वो ऐसे चुप हो जाएगा बहुत जल्दी. उसको सिर्फ एक मिनट देखना है कि क्या हुआ.
1: तो हम अपने बच्चे के साथ कभी ऐसा नहीं करते हैं जो आपने सीन क्रिएट किया.
0: सारा किसके साथ, अपने साथ
1: तो करते हैं. तो ये जो बच्चा अंदर है उसकी आवाज सुननी जरूरी है कि वो कह क्या रहा है. उसे भूख लगी है, उसे कोई दर्द हो गई है, उसे चोट लगी. अमेजिंग, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स, यू नो. तो अपने अंदर का बच्चा जो है, क्योंकि हम कभी भी अपने बच्चे के साथ जैसे सिनेरियो क्रिएट किया जैसे शिवानी ने, कि उसे कुछ भी होता जाए हम हाथ फिर भी पकड़े रखेंगे, लेकिन हम कुछ होने भी नहीं देंगे. सो वो होना अपने आप को नहीं होने देना है. वेरी ब्यूटिफुली द वे इट हैज कम आउट. और फिर हमें खुशी क्रिएट थोड़ा करनी है, वो तो अपने आप हो ही रही है जब हमने अपना ध्यान रख लिया. थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी. शांति शांति. आपके मन में हो सकता है कोई बात उठे, बिल्कुल हर बार की तरह आपको हम यही निमंत्रण देंगे, लेकिन जो बात समझी, जो अब नए बिलीफ सिस्टम हम लेकर आ रहे हैं, अगर दर्द है आप कभी भी ना खुशी दे पाएंगे किसी को, ना लव दे पाएंगे, आप दे नहीं पाएंगे. ये एक नया बिलीफ सिस्टम क्रिएट करें, एक वक्त पर एक ही फीलिंग हम क्रिएट कर पाएंगे. सो लेट्स क्रिएट समथिंग विच इज़ गुड नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर एवरीवन एल्स. आप हमें ईमेल पर या फिर फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 01242667000, 9999344555, 9999344666, 9873666555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, इसमें बहुत सी बातें हम समझते हैं सिस्टर शिवानी. चलते चलते क्यों ना थोड़ी देर रिफ्लेक्ट करें, चाहे वो एक मिनट में ही करना हो. जब हर
0: we'll do it exactly for one minute अभी, कि एक मिनट में हमें करना क्या है और फिर इसको हर एक, लेकिन कल से करे जरूर सभी.
1: अभी से
0: अभी से आज से यस हर एक मिनट के लिए जस्ट सिट कंफर्टेबली. ये एक मिनट अपने थॉट्स को देखना है. इसके लिए आपको ना कोई पोस्चर चाहिए अलग, ना पोजीशन, ना एनवायरनमेंट. जहाँ भी बैठे हैं, चाहे ऑफिस में चाहे घर पर, इट जस्ट डजंट मैटर. जस्ट सिट बैक एंड लुक एट योर थॉट्स एंड क्रिएट द मोस्ट पावरफुल ब्यूटिफुल थॉट्स. I, the master of this body, is sharir ka malik, that conscient energy, creator of every thought and feeling. I am a beautiful being, pure, positive and powerful. This is me. Ye mujhe kahin bahar nahin thundna hai. Main hoon hi. उस शक्तिशाली पवित्र शुद्ध आत्मा, इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग अराउंड मी, एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट. एंड एज आई क्रिएट दिस थॉट, द वाइब्रेशन स्प्रेड्स टू एवरीवन अराउंड मी. ओम शांति.
1: ओम शांति. आपसे विदा लेते हैं और आप सबसे भी विदा लेंगे, लेकिन अवेकनिंग का ये जो सफ़र है ये आगे भी चलता रहेगा. ओम शांति.

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो। चल।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इन दिनों हम बात कर रहे थे गुस्से की। हमने ये जाना कि गुस्सा जो है वो हमें कोई और नहीं करवाता, हम खुद गुस्सा कर रहे होते हैं। उसके बाद शांति की भी बात की। एक और एस्पेक्ट जिसे हम अपनी ज़िंदगी के उस एस्पेक्ट को ले रहे थे, जब हम हर्ट हो जाते हैं, कैसे छोटी छोटी बातें जो हैं वो हमें हर्ट कर देती हैं और फिर अंदर ही अंदर हम उसे अपने पास रखते हैं। हर्ट के बाद हम क्या करते हैं, हम कभी रिवेंज लेना चाहते हैं, कभी हम ये कहते हैं कि हम उसे रिफॉर्म कर देंगे, कभी ये कहते हैं कि पनिश करना चाहिए, या फिर फॉरगिवनेस की बात आती है, फिर फॉरगेट करने की बात आती है। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस जो पूरा का पूरा हमारा एक ज़िंदगी जीने का तरीका है उसको एक नए एस्पेक्ट से देखते हैं। और इस पर बात करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। हर्ट होने के वो एस्पेक्ट्स हमने ज़रूर खूब डीपली देखे, क्योंकि यही एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो लोगों के पास आती है कि पता भी नहीं चलता कि कब हम किसकी बात से, किसी के होने से भी कितनी बार हर्ट होने लगते हैं, या हमें वाइब्स अच्छी नहीं मिल रही होती, या कभी कभी मतलब कोई चेहरा अच्छा नहीं लग रहा होता और समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो उसकी वो एस्पेक्ट हमें देखे कि हम किस तरह से उससे रिएक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वजह समझ में आती गई कि वो हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन एक छोटा सा आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटा सा हम रिकैप करें कि क्या है जो एस्पेक्ट्स जो हमने देखा जो हम रिएक्ट करते हैं।
1: हम क्योंकि इस इल्यूजन में चलते हैं कि वो हर्ट आपने मुझे कॉज की है, तो जिम्मेवार आप हैं, तो आपको उसका रिजल्ट तो मिलना ही चाहिए। तो इसलिए नॉर्मल रिस्पॉन्स एक जो माइंड में आता है वो है रिवेंज लेने का। और छोटे छोटे रूप से हम बदला लेते हैं, जैसे हम बात करना बंद कर देते हैं, हम सहयोग देना बंद कर देते हैं, हम विड्रॉ हो जाते हैं, आप अपना करो मैं अपना, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं। और कई दिनों तक जैसे हमारा आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं,
0: फिर हम ये भी बड़ी आसानी से कहते हैं कि मैं आपको थोड़ा कुछ कह रहा हूँ,
1: हाँ मेरा मन नहीं है ना, मतलब मेरा, बट एक्चुअली इंटरनली सबकॉन्शियसली इट्स अ वे ऑफ गिविंग यू पेन, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं आपसे बात नहीं करूंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब आपने मुझे दर्द दिया तो आई हैव अ राइट कि मैं आपको अब दर्द दूँ। तो रिवेंज बहुत अलग अलग फॉर्म्स में हम लेते, और जो हमने देखा वो था फॉरगिवनेस, कि क्षमा करना, वो भी आज के दिन में उसकी परिभाषा बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, क्योंकि हम समझते एक तो क्षमा करना बहुत मुश्किल लगता, और अगर कर देते हैं तो एहसान जता के क्षमा करते हैं, और जैसे बार बार उस सामने वाले व्यक्ति को याद दिलाएंगे कि मैंने आपको फॉरगिव किया, तो वो भी एक वापस वही नेगेटिव एनर्जी भेजने का एक वो माध्यम बन जाता है। जबकि अगर हमें समझ में आ जाए कि मुझे हर्ट मैंने खुद ने किया है, सामने वाले ने तो जो किया सो किया, लेकिन जो मेंटल पेन है वो मेरी अपनी क्रिएशन है, तो फिर फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट ही पूरा चेंज हो जाता। आपने मुझे हर्ट नहीं किया, मैंने खुद अपने आप को हर्ट किया, तो मुझे आपको नहीं फॉरगिव करना, मुझे अपने आप को फॉरगिव करना है, क्योंकि मैं ये भूल गई थी कि मैंने खुद अपने आप को हर्ट किया, अब मुझे खुद याद आ गया है, तो आई हैव टू फॉरगिव माईसेल्फ फॉर द पेन आई कॉज्ड टू माईसेल्फ। And forgiveness doesn't mean, I have to live in guilt or shame. I forgive means I remind myself कि next time this will not happen. And forgiveness को सही रूप से करने के लिए हमें भूल जाना होगा कि I have to forget the incident. अब कई बार कई लोग कहते हैं कि भूल कैसे सकते हैं, और actually भूलना अर्थात क्या, because it's not कि आपको वो incident भूल गया, वो तो नहीं हो सकता। हमारी लाइफ में जितने भी सारे इंसिडेंट्स होते हैं वो हमें तो याद रहते हैं ना, स्मृति तो है, लेकिन फॉरगेटिंग मतलब कि वो स्मृति अब मुझे दर्द नहीं देगी,
0: वो तकलीफ नहीं होगी, जैसे ही वो इंसिडेंट्स तो याद आ जाएगा कभी भी, लेकिन उस दर्द से हम नहीं गुजरेंगे,
1: अब वो दर्द से नहीं गुजरेंगे। तो पहले क्या होता था, वो स्मृति हमें दर्द देती थी, तो देन आई कैन, इट्स नॉट फॉरगेटिंग द इंसिडेंट but it is forgetting the pain associated with the incident, because some people will say ke, how can I forget the incident, I cannot forget, it's stored there, but I forget the pain associated with the incident, and jab I can forget the pain associated then I forgiven, kyunki jab tak wo dard yaad hai to forgiveness nahi hogi, kyunki har
0: baar that is what happens na, ki you start looking at the incidents,
1: yeah.
0: एक्चुअली हम जो बात ये कहते हैं कि देखने लग जाओ, दृष्टा बन जाओ,
1: साक्षी हो जाएंगे, तो अब वो दर्द नहीं देगा ना, अब वो है वहां पे लेकिन वो मुझे तकलीफ नहीं दे रहा। पहले ये होता था कि एवरी टाइम मैं उस इंसिडेंट को याद करूं, याद करना भी नहीं पड़ता था, वो बार बार याद आ जाता था, बार बार याद आ जाता था और वो बार बार दर्द देता था। अब जितना वो दर्द खत्म हो जाएगा तो एक्चुअली नेचुरली भी वो इंसिडेंट भी याद नहीं आएगा, क्योंकि वो दर्द का मुझे आदत पड़ गई है। एंड यू नो वो दर्द एक स्टिमुलेंट बन गया है कि हर टाइम आता है मेरे अंदर, वो क्रिएट कर देता है। तो वो इंसिडेंट भी बार बार याद आता था, क्योंकि इंसिडेंट याद आना मतलब मुझे दर्द मिलना। अब क्योंकि मुझे वो इंसिडेंट से दर्द मिलना अगर बंद हो जाए तो फिर इंसिडेंट याद आना भी
0: कोशिश करनी पड़ेगी, फिर मुझे कोशिश करनी पड़ेगी, यू नो कि अगर मुझे याद करना है कि अच्छा क्या हुआ था। वेरी ट्रू,
1: इट्स नॉट अबाउट फॉरगेटिंग द इंसिडेंट बट इट इज द प्रैक्टिस ऑफ फॉरगेटिंग द पेन विद द इंसिडेंट। फिर इंसिडेंट अपने आप भूल जाएगा, याद ही नहीं आएगा। कोई याद दिलाए या कभी कोई बात हो तब थोड़ी स्मृति में आएगा, और वो भी आएगा और चला जाएगा। उसका इम्पैक्ट अब मेरे ऊपर खत्म हो चुका है, देन आई एम टोटली लिबरेटेड, आई एम फ्री, कि अब ये व्यक्ति या वो जो सिचुएशन हुई थी मेरे ऊपर अब कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सकती। नहीं तो इतनी पुरानी बातें भी हमें आज दिन तक बहुत दर्द देती हैं,
0: और कितनी बार हम वो पकड़ के बैठे रहते हैं,
1: पकड़ के बैठे रहते हैं, एंड वी फील इट्स द राइट थिंग टू डू, यू नो। सो दीज आर ऑल अगेन बिलीफ सिस्टम्स, जिसकी वजह से हमने चूज किया कि हमारी जीवन दर्द में चलती है। हम चूज करते हैं, हर स्टेप पे हम चूज कर रहे हैं। खुशी इतनी इजीली है लेकिन हम हर टाइम ऑप्शन चूज करते हैं दर्द में रहने का। लेकिन अगर इसको और इजी करना चाहते हैं तो सबसे जो सिंपल बेसिक लॉ वर्क कर रहा है वो है कार्मिक लॉ, कर्म, कि जो कर्म हम करते हैं उसका रिजल्ट हमें मिलना ही मिलना है। अगर इसको हम जानते हैं लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा जीवन में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इसको अगर सही रूप से समझ लें और पकड़ लें और हर स्टेप पर इसकी एप्लीकेशन देखना शुरू कर दें तो हर्ट का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा।
0: वही जैसा आप बोते हो वैसा आप पाते हो, ये हम कब से हर बार यही बात करते,
1: कब से सुनते आए, कब से पढ़ते भी आए, और कहने को कहा जाए हम कहते हैं हम मानते भी हैं इस बात में। एवरी रिलीजन बिलीव्स इन कार्मिक फिलोसफी एंड दे से यस एज यू डू सो यू विल गेट, बट देन व्हेन वी गेट व्हाई डोंट वी रिमेंबर दैट व्हाई आर वी गेटिंग इट, यू नो। इफ आई रिमेंबर दैट व्हाट आई एम गेटिंग इज बिकॉज ऑफ समथिंग दैट आई हैव डन, then where is the question of blaming you or anybody else? I just understand I am getting it.
0: लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हमें मिल रहा होता है तब हमें ये तो याद ही नहीं होता कि हमने क्या किया था। एक और भी बात कि किस चीज का मिल रहा है ये भी नहीं पता होता,
1: को किस चीज का मिल रहा है ये तो कभी पता भी
0: कौन
1: नहीं
0: से कर्म का हमारा मिल रहा है वो
1: ये तो पता नहीं चलेगा, बिकॉज देयर इज नो बोर्ड इन फ्रंट ऑफ मी, एक स्क्रीन नहीं है जो हर टाइम वहां पर यू नो सारा पॉपअप होता रहे, आपने ये किया था उसका आपको ये मिला, आपने ये किया, तो लाइफ विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स इफ दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन एवरी टाइम। क्योंकि हर टाइम अगर आपको आपका पास्ट दिखाई दे बार बार कि आपने ये किया था, आपने ये किया था, तो हमारे लिए उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शायद हम सब ने बहुत कुछ किया हुआ है, यू नो। बट नाउ इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि उससे बाहर निकल कर अब ध्यान देना, और अब ध्यान हम तब दे सकेंगे जब हमें याद रहेगा कि अब जो किया सो किया, अब और नहीं करना। लेकिन वो जो किया अगर वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है तो वो खत्म तो होना आउट ऑफ द क्वेश्चन है, वो और ही अक्यूमुलेट होता जाता है। तो एक सिंपल लॉ हम सारा दिन में याद रखें कि जो हम बाहर भेजते हैं वो हमारे पास वापस आने वाला है, और भेजना मतलब सिर्फ फिजिकल कर्म नहीं, right from the level of thought, because it's energy. Law of karma kis par work kar raha hai? Energy par work kar raha hai. Wo table, kursi, gaadi, sharir is pe work nahi kar raha hai. Wo energy par work kar raha hai. Ki energy vibrations hai. Hum jo energy bahar transmit karte hain, wo vibrations jaati hain. They hit the people to whom they are targeted and then they come back. Ab wo kab wapas aayenge? इट वेरीज, कई बार इंस्टेंट इमिडिएटली, कई बार कुछ समय के बाद, और कई बार ये कॉस्ट्यूम चेंज करने के बाद.
0: ये जो जन्मों की हम बात करते हैं कि इस जन्म का नहीं है, और लेकिन ये बहुत एक्सेप्टेंस आई थिंक सबसे मुश्किल है, लेकिन एक बार जब एक्सेप्टेंस हो जाएगी तो शायद आसान हो जाए लाइफ.
1: बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि एक्सेप्ट करना क्यों मुश्किल है जबकि मालूम है, बिलीव भी करते हैं. यू नो हार्डली यू विल गेट एनीबडी हु विल से आई डोंट बिलीव. इनफैक्ट इतने लोग हैं जो आत्मा में नहीं समझ पाते, परमात्मा को नहीं बिलीव करते, लेकिन कर्म को मानेंगे. कि मैं और कुछ नहीं मानता, लेकिन मैं मानता हूँ कर्म.
0: और अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्मों का फल.
1: दिस इज समथिंग यूनिवर्सल, एवरीवन विल एक्सेप्ट, बट इट्स नॉट जस्ट हियर. इट्स नॉट कि आप इंटेलेक्चुअली उसको एक्सेप्ट कर ले, आपके पास फिर वो एक नॉलेज का वेपन है. यू नो ज्ञान एक शस्त्र होता है जिसको परिस्थिति आने पर यूज करना है. तो ये एक शस्त्र, हमें पता है कि जो कुछ मेरे पास आ रहा है, हम किस बात पर ध्यान रखते कि मुझे अब कुछ नहीं करना है गलत. वो भी अनकॉन्शियसली फिर भी बहुत सारी बातें गलत हो जाती, लेकिन हम कहते हैं मैं कुछ नहीं गलत करूंगा तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा. लेकिन जो अगर मेरे साथ हो रहा है, वो अगर मुझे याद आए कि वो भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ भेजा था. बिकॉज वंस आई अंडरस्टैंड द एनर्जी फ्लो, कि अगर ऐसे कुछ आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो ऐसे गया था. यू नो हमें वो वाला याद नहीं है जब हमने ऐसे भेजा था, हमें सिर्फ ये दिखाई दे रहा कि ऐसे आ रहा है. एंड देन वी से क्यों आ रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. एंड यू नो कई बार हम कहते कि मैंने तो इस जीवन में कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, तो फिर मेरे साथ सब कुछ गलत क्यों हो रहा है. मुझे इसको यूज करना पड़ेगा. जनरली हम क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि एक तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है कि मेरा हर एक थॉट वर्ड एक्शन मेरी जिम्मेवारी है. यू नो जहां मैंने समझ में आ गया कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, इसका मतलब जिम्मेवारी
0: मेरी है.
1: लेकिन मेरे लिए ये कहना ज्यादा इजी है कि इसकी जिम्मेवारी.
0: एक्चुअली ये बहुत मुश्किल आ रही है. हमने पूरा इस श्रृंखला में जब हमने बात ये की है कि चाहे वो एंगर है, चाहे वो हर्ट हो रहा है, चाहे वो बाकी सारी चीज़ें हैं, जिम्मेदार मैं हूँ. क्योंकि जहाँ जिम्मेदार मैं हो जाती हूँ, जहाँ रिस्पॉन्सिबल मैं हो जाती हूँ, तो मैं चेंज कर सकती हूँ उस चीज़ को.
1: लेकिन जिम्मेवारी एक्सेप्ट करना, यू नो इट्स बिग टाइम वर्क. बिकॉज अगर मैंने जिम्मेवारी एक्सेप्ट की, मतलब मुझे अब अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा. अगर मैंने जिम्मेवारी एक्सेप्ट की तो मैंने ये भी एक्सेप्ट किया कि गलती मेरी थी. कितना इजी है बोलना कि गलती आपकी थी, आपकी थी, इनकी थी, इसकी वजह से थी. लेकिन ये स्वीकार करना कि गलती मेरी थी, थोड़ा सा बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाता. तो सबसे पहला रीज़न हम क्यों कार्मिक फिलोसफी को नहीं यूज करते हैं सारा दिन में, क्योंकि हम जिम्मेवारी लेने के लिए रेडी नहीं है कि जो कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से. भले इस जन्म में मैंने नहीं किया हो, लेकिन अब तो जन्म का कॉन्सेप्ट ही समझ में आ गया ना, कि जन्म मतलब क्या, सिर्फ कॉस्ट्यूम चेंज हो रहा है. मैं आत्मा तो अमर हूँ, तो मैंने कभी ना कभी तो ये किया था, तो भी जिम्मेवारी मेरी हो जाती. दूसरा, कहीं ना कहीं ये भी हो जाता कि अंदर एक डर हमेशा बना रहता है कि ये जो मैं गलत कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट
0: मिलना है मुझे.
1: क्योंकि अगर मुझे कार्मिक फिलोसफी को पकड़ कर चलना है, तो ये मेरे ऊपर हमेशा एक अटेंशन या एक हावी रहेगी, ये बात कि ये जो तुम कर रहे हो वे तुम्हें याद है कि इसका रिजल्ट मिलने वाला है. और जो कर रहे हो मतलब सिर्फ गलत काम नहीं,
0: थॉट्स.
1: If I remember, then every time I create a wrong thought, a negative thought, that bell will ring inside, which will say, do you know what you're doing? आपको पता है आप क्या कर रहे हो? ये energy जो आप create कर रहे हो, ये आपके पास वापस आने वाली है. And I don't like that. क्योंकि that means कि मुझे पूरा time attention में चलना पड़ेगा कि not to create any negative, waste, toxic thoughts, because I have to take responsibility. जो create किया वो मेरे पास वापस आएगा. तो I conveniently, ज्ञान होते हुए भी, I keep it aside. And I continue with my, जो सोचना है, जो करना है, वो करते जाओ. और तीसरा, एक constant ये भी attention रहेगा कि जो कुछ मेरे पास आ रहा है वो result मेरा है तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो स्वीकार करना बहुत इजी हो जाएगा। एक दिन के लिए, अगेन वी हैव टू ट्राई इट आउट, एक दिन के लिए करके देखें। सारा दिन में चल रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत कुछ हमारे साथ होता है, बहुत लोग बहुत कुछ बोल कर जाते हैं। जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ, ये जो कुछ आपको मिल रहा है ये आपका ही किए हुए का रिजल्ट है। वेरी इजी। हर थॉट जो आप क्रिएट कर रहे हैं, इट्स एनर्जी, वो वायुमंडल में जा रही है और वो वापस मेरे पास आएगी। और पहली बात तो वो है कि जब वो क्रिएट करते हैं तभी मुझे मिल जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि कैसे पता चलेगा कि ये अभी चुक तो हो रहा है, यू नो, ये मैंने ये कर्म किया था ये उसका रिजल्ट मिल रहा है, या ये मैं एक नया कर्म कर रहा हूँ। नाउ देयर इज नो वे, there is no way of knowing this, but if I remain stable inside, mujhe hamesha ye smriti rehti ki har cheez jo hum kar rahe hain, har karam, right from thought level, ye ek cause bhi hai to ye ek effect bhi hai. Har thought ek cause bhi hai aur ye ek effect bhi hai. Kyunki मेरे पास अगेन कोई चार्ट नहीं है जो बताएगा कि ये पहले वाले का रिजल्ट है या ये अभी नया क्रिएट हो रहा है। तो मुझे दोनों चीज़ों की स्मृति रखते हुए अटेंशन रखनी पड़ेगी। अगर मैं किसी बात से हर्ट हो रही हूँ तो मुझे अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि ये एक इफेक्ट है, कि मैंने कुछ किया था उसका रिजल्ट मुझे अभी ये मिल रहा है। एट द सेम टाइम ये थॉट एक कॉज भी है कि अब जो ये मैं थॉट क्रिएट कर रही हूँ इसका इफेक्ट भी मुझे
0: ये मिलेगा, क्योंकि मैं हर्ट हो रही हूँ तो एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो। ओहो, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी
1: वेरी केयरफुल, दैट्स व्हाई। सो यू नो, डोंट, बिकॉज़ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज्ड इन दिस कि अभी मैं इसको कैसे लूँ, कि ये अब मेरा चुक तो हो रहा है या नया क्रिएट हो रहा है। दोनों चीजें हो रही है। आई हैव टू रिमेम्बर एवरी थॉट, हर थॉट, और ये जितनी बार हम अपने आप को इसका कॉन्शियसली याद दिलाएंगे ये समझ में आता जाएगा। मे बी एकदम फर्स्ट टाइम इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन एवरी थॉट एक कॉज भी है और एक इफेक्ट भी है। वो एक एनर्जी है जो मुझे मिली है क्योंकि मैंने दी थी, एंड येट एट द सेम टाइम मैं थॉट अभी क्रिएट कर रही हूँ तो वो एनर्जी मैं ट्रांसमिट भी कर रही हूँ, तो वो मुझे मिलेगी।
0: क्या क्रिएट कर रही हूँ उस पर डिपेंड करेगा। आई रिमेम्बर अनदर लेडी हु हैड आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि उन्हें किसी से पैसे लेने थे और उन्होंने पैसे ने मना कर दिया। उन्होंने बहुत अच्छी दोस्त थी उनके, उन्होंने पैसे मना कर दिया कि नहीं हम दे चुके हैं या कुछ था। तो शी केम टू मी, आई वॉज वॉकिंग एंड शी सेड कि मुझे एक बात का जवाब दो कि क्या ये मेरा कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है या ये नया अकाउंट क्रिएट हुआ है, अब उनको चुकता करना पड़ेगा फिर आगे। मेरा उनका तो आप भूल जाओ, लेकिन मतलब मुझे ये लगा कि आपसे मैं पूछती हूँ कि इसका जवाब क्या होगा। मेरा जवाब ये था कि आपका हो सकता है जो भी था अकाउंट वो सेटल हो गया, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि अगर आप इरिटेट होती रही क्योंकि ये थॉट आपके साथ है, या तो हम ये समझ लें कि वो अकाउंट सेटल हो गया तो देन फिनिश हो गया,
1: एग्जैक्टली,
0: यू नो, फॉरगेट हो गया कि खत्म हो गया बस। लेकिन अगर वो साथ साथ रहा कि उसने मुझे पैसे ऐसे नहीं दिए, मेरे देने हैं, तो एक नया अकाउंट क्रिएट हो,
1: तो दोनों चीजें हो रही है ना साथ साथ। सेटल भी हो रहा है तो हमें समझ में आता है कि ये इफेक्ट है, लेकिन एक कॉज भी है क्योंकि नेक्स्ट क्रिएट हो रहा है। उन्होंने नहीं दिया वापस, सेटल, लेकिन मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, क्रिएशन।

0: दिन कहीं ठोकर लग जाती है, कहीं गाड़ी से सर टकरा जाता है, कहीं गाड़ी ही किसी के साथ जोर से लग जाती है तो गाड़ी को बहुत जोर से लग जाता है। कितनी छोटी छोटी बातें होती है जो हम देखते हैं कि पहले मुझे घंटा घंटा वो बात डिस्टर्ब करती थी। कल ही मेरे साथ हुआ कि मेरी गाड़ी को जोर से लग गया, बड़ा सारा, मतलब बहुत बड़ा डेंट आ गया उसके अंदर, बहुत जबरदस्त। मे बी अर्लियर आई वुड टेक अ कपल ऑफ आवर्स टू फॉरगेट दैट इंसिडेंट, यू नो, एंड बिकॉज इट वाज अ बिग वन, यू नो, काफी बड़ा है। तो इट्स अ न्यू कार एंड इट्स अ बिग वन, तो पहले बार बार मैं शायद उसको देखती रहूँ, अच्छा इतना बड़ा, तो मेरी गलती थी, ये था वो था, मतलब इट्स ओके, अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन कि ठीक है आगे से कैसे चलाना है। लेकिन एक है वो हो गया तो वो एक इफेक्ट खत्म हुआ, अब बार बार सोचना उसके बारे में क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, ये हो गया, दिस इज क्रिएटिंग न्यू थॉट्स। अब नेगेटिव एनर्जी तो ना क्रिएट करो, और वो तो सेटल हो गया। अब नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करना मतलब, और अभी तो भोगना हो ही रही है थोड़ी सी, अब उसकी भोगना तो और बहुत ज्यादा,
1: और वो आएगी, वो वापस
0: आएगी। तो ये अंडरस्टैंडिंग से चलने से हमें आधा मिनट लगता है बात को फिनिश करने।
1: इनफैक्ट यहाँ एक और मैं आपसे बात शेयर करना चाहूंगी कि ज्यादातर लोगों के साथ जब एंगर, जब हम इस प्रोसेस में है कि गुस्सा नहीं करना है और गुस्सा कर देते हैं, उसके बाद अब उसके साथ फिर रहते हैं कि उफ गुस्सा क्यों किया, गुस्सा क्यों किया। सो आई थिंक अगेन दैट इज क्रिएटिंग मोर, यू नो,
0: दैट्स व्हाई जितना जल्दी हो उसको स्टॉप करना पड़ता है, क्योंकि हमें रियलाइज करना होगा कि अब जो क्रिएट कर रही हूँ वो भी वापस आएगा। तो पहला वाला जो वापस आया वो पसंद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी फुल स्टॉप लगा दो, नहीं तो अब जो क्रिएट कर रहे हो वो भी थोड़े टाइम के बाद फिर वापस आएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मेरा बिलीफ सिस्टम है कि लोग मुझे हर्ट करते हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है। ये इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि बार बार सुनने और समझने के बावजूद कि हम उसको क्रिएट करते हैं, मुझे औरों ने हर्ट किया, उन्होंने जो ये बात की वो मुझे अच्छी नहीं लगी। अब ये कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस में फिट हुआ हुआ है, और सबकॉन्शियस में बिलीफ्स के फॉर्म में ये पास्ट से हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ये बिल। अब क्या होगा, एवरी टाइम मेरी नेचर बन जाएगी रिएक्टिव बनने की, आपकी वजह से ये हुआ।
1: क्यों, मैं कहूंगी मेरा नेचुरल रिएक्शन,
0: मेरा नेचुरल, क्यों नेचुरल रिएक्शन है, क्योंकि वो यहाँ पर रिकॉर्डेड है। तो एवरी टाइम समबडी सेज समथिंग टू मी, आपकी वजह से हुआ, आपकी ना, एवरी टाइम आई से आपकी वजह से हुआ, वो जो रिकॉर्डिंग है वो और भी स्ट्रॉन्ग, और भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। अब क्या होगा, एवरी टाइम मैं आपसे मिलती हूँ तो मेरा वो जो इम्प्रेशन रिकॉर्ड किया हुआ है वो वापस स्क्रीन पर पॉप अप हो जाता है, और मेरा बिहेवियर उसी तरह आपके साथ होता है, आपकी वजह से मुझे तकलीफ हुई, आपकी वजह से मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ दर्द हुआ। तो मेरा जो रिलेशनशिप है आपके साथ वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म होने लग जाता है, और मेरा जो संस्कार है वो स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है।
1: हाँ, हर कोई जो दूसरा है। हाँ।
0: अब क्या होगा, आप जब मिलेंगे तब तो वो इमर्ज हो ही जाएगा, धीरे धीरे वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपसे जुड़ा हुआ भी कोई मिलेगा जो आपसे रिलेटेड है, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको देखकर भी मेरे को आपकी याद आएगी, फिर वो संस्कार इमर्ज हो जाएगा, और थोड़ा करते करते वो इतना पक्का हो जाएगा कि मैं जिसको भी मिलूं मेरा ये संस्कार एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इनकी वजह से। तो उससे क्या होगा, मेरे रिलेशनशिप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सभी के साथ फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अपना स्ट्रॉन्ग ये एनर्जी बार बार जो ट्रांसमिट की है वो मेरे पास वापस आ रही है, मैं बार बार ट्रांसमिट कर रही हूँ आपकी वजह से हुआ, फिर आपसे जो भी मुझे मिलता है मैं फिर उसको रीअफर्म करती हूँ आपकी वजह से हुआ। सो एवरी टाइम आई क्रिएट दैट एनर्जी, मतलब कई बार हम सोचें कि इसका रिजल्ट कब मिलेगा, जो हम एनर्जी क्रिएट करते, एक रिजल्ट तो उसी टाइम मिलता है, क्योंकि जैसे ही मैंने ये थॉट क्रिएट की आपकी वजह से ही हो रहा है, दर्द मुझे होता है, तो इंस्टेंट रिजल्ट तो मुझे उसी टाइम मिल जाता है। ये इंस्टेंट कर्मा है कि मैंने जैसे ही थॉट क्रिएट किया, गुस्से का थॉट क्रिएट किया कोई भी, उसका दर्द सबसे पहले
1: वक्त
0: मुझे मिलता है। तो जब आपको देने के लिए वो पहले मेरे से क्रॉस होता है तो वो पहले मुझे मिलता है, तो पहला रिजल्ट तो मुझे तभी मिल गया, फिर वो आप तक गया, आपसे फिर आएगा, तो अब क्या होगा, दो बार मिला। तो कितना नुकसान हम सारा दिन में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें रोक के अपने आप को, संस्कार को चेंज करना पड़ेगा। कैसे, बिलीफ सिस्टम को चेंज करने से। कई बार संस्कार कईयों का होता है चिंता करने का,
1: बहुत ज्यादा, हाँ।
0: और उसको बहुत प्यार

0: से कहते हैं ये तो कंसर्न है, ये तो लव है, लेकिन वरी बार बार ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए. क्यों? क्योंकि पास्ट के कुछ अनुभव रिकॉर्ड किए हुए हैं और उस पास्ट के हिसाब से फ्यूचर को देखना शुरू करते हैं कि पास्ट में हुआ था मतलब फ्यूचर में भी हो गए. तो क्या होगा, फ्यूचर कुछ नया बनता ही नहीं है क्योंकि पास्ट की हर्ट फ्यूचर पर प्रोजेक्ट होती जाती है. नहीं मेरे साथ तो बुरा ही होगा, नहीं मेरे बच्चे तो टाइम पे नहीं आए मतलब कुछ गलत ही हुआ है, नहीं आज तो कुछ. तो एवरी टाइम दैट वरी का जो संस्कार है चिंता का
1: वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है
0: तो वो बार बार इमेज सामने
1: आता है. और इनफैक्ट अमेजिंग थिंग इज कि चिंता को हम इतना नेचुरल मानते हैं, उसे हम मानते ही नहीं कि वो कोई प्रॉब्लम है या कहीं ना कहीं हमें परेशान कर रही है.
0: अब हमें उसको रोक कर कट करना पड़ेगा कि एफर्ट करना पड़ेगा अपने ऊपर कि हर चीज जो मुझे समझ में आ रही है गलत होने वाली है वो नहीं. एवरी टाइम सेइंग द वर्ल्ड इज बैड, द वर्ल्ड इज लाइक दिस, लाइफ इज मिजरेबल, नो चेंज. कॉन्शियसली अपने थॉट्स को शिफ्ट करके लाइफ इज ब्यूटिफुल, लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू क्रिएट व्हाटएवर आई वांट टू क्रिएट. आई एम क्रिएटिंग पेन, it's my choice.
1: So let's create happiness, let's create love. Create that's happiness. Actually the I think the underlined statement of the day. Sister Shivani, aaj ek bahut hi different aspect ko humne liya, lekin aisa aspect jisko hum har roz sun rahe the, har roz mante the, lekin samajh mein nahi aa pata tha ki kis karmic philosophy ko hum implement kaise karenge isi karmic philosophy ko. Aaj ki puri baat cheet ke liye aapka bahut bahut dhanyawad. हमने बात की थी रिवेंज की, हमने बात की थी ये पनिशमेंट की, रिफॉर्म की, फॉरगिवनेस की और फॉरगेटफुलनेस की. लेकिन अगर हम कार्मिक फिलॉसफी को मानते हैं, ये मानते हैं कि अगर मैं हर्ट हो रहा हूँ, जो हुआ जिसने हर्ट किया वो तो एक अलग बात हो जाती है, अभी मेरा हर्ट होना या मुझे गुस्सा आना भी आगे इसका भी मुझे अकाउंट सेटल करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये थॉट मुझे रोक सकता है उस पूरी पेन में जाने के लिए. एंड लेट्स क्रिएट हैप्पीनेस, लेट्स क्रिएट लव. आज इसी बात पर आपसे लेते हैं विदा. अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका हर बार की तरह हम स्वागत करते हैं. आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर है 9999 3 4 4 5 9999 3 4 4 6 9 8 7 3 6 6 5 5 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. आपको बता दें कि आपके बहुत सारे ईमेल्स और फोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं, बहुत से ऐसे सवाल हैं जिन्हें हम अपनी आने वाली कड़ी में शामिल करेंगे और मिलकर जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे. अब दीजिए इजाजत, ओम शांति.

0: सम कहां, तुम कहां, हम कहां, ताल कहां, सम कहां, तुम कहां, हम कहां, तेरे कर तुम, नान कर तुम, तेरे कर तुम, नान कर तुम, हम तुम, नदाफात, किपाता, लताफात, पताफात, मेरा कच करामत,
1: ताते चिता, ताते चिता, ताते चिता, थैया थैया थै, तकता दुम, तकता दुम, तकता न्या

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे, वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

वतन करा के श्रोताओं को सुधा अनुपम का नमस्कार। मौलाना बरकतुल्लाह का जन्म 7 जुलाई 1854 को अविभाजित भारत की मातृभूमि पर हुआ था। उनका पूरा नाम अब्दुल हाफिज मोहम्मद बरकतुल्लाह था। उनके पिता एक छोटे से स्कूल में अध्यापन का कार्य करते थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। वे सर्व इस्लाम आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले क्रांतिकारी थे और उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का खुलकर विरोध किया। उन्होंने भोपाल के स्कूल से अरबी फारसी की माध्यमिक और उच्च शिक्षा के साथ हाई स्कूल तक की अंग्रेजी शिक्षा हासिल की। शिक्षा के दौरान ही उच्च शिक्षित अनुभवी मौलवियों और विद्वानों को मिलने और उनके विचारों को जानने का उन्हें अवसर मिला। शिक्षा के बाद वे उसी स्कूल में अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए। मौलाना बरकतुल्लाह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के लीडर शेख जमालुद्दीन अफगानी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। उस समय शेख साहब सभी देशों के मुसलमानों में एकता और भाईचारे के लिए दुनिया के तमाम देशों का दौरा कर रहे थे। उनको इंग्लैंड पहुंचाने में प्रवासी हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों के सबसे बड़े प्रोत्साहक श्यामजी कृष्ण वर्मा का सबसे ज्यादा योगदान मिला। इंग्लैंड की चकाचौंध और विलासिता से मौलाना का जीवन एकदम अछूता रहा। वे गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक से अत्यधिक प्रभावित हुए। उनकी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध और स्वराज की मांग से बरकतुल्लाह उनके मुरीद हो गए। मौलाना बरकतुल्लाह उर्दू, अरबी और फारसी के विद्वान तथा अंग्रेजी के अच्छे खासे जानकार थे। इसके साथ ही उन्होंने जर्मनी, फ्रांसीसी, टर्की और जापानी भाषा का ज्ञान भी हासिल किया। अरबी फारसी के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि पाने के साथ साथ मौलाना की पहचान राजनीति और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी स्थापित होने लगी। ब्रिटिश हुकूमत की कुटिलता के कारण हिंदुस्तान के बिगड़ते आर्थिक हालात पर मौलाना के भाषणों और लेखों को खूब सराहा गया। उन्होंने वास्तविकता का बखान अपने भाषा कौशल से किया।

जीवन यापन के लिए अपनी योग्यता के आधार पर लंदन में 7-8 सालों तक अरबी भाषा के अध्यापक और स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम करने के बाद मौलाना बरकतुल्ला लिवरपूल यूनिवर्सिटी के ओरिएंटल कॉलेज में फारसी के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। बरकतुल्ला के लिए ब्रिटेन में ज्यादा समय तक टिकना संभव नहीं हो सका क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत ने उन पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिए। 1899 में अमेरिका पहुंचने के बाद मौलाना बरकतुल्ला ने वहां के स्कूलों में अरबी पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध अपनी क्रियाशीलता को उन्होंने लगातार जारी रखा। बरकतुल्ला ने 21 फरवरी 1905 में हिंदू मुस्लिम एकता की जरूरत पर लिखे गए समाचार पत्र के संपादकीय को पढ़कर एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने हसरत मोहानी के विचारों की प्रशंसा करते हुए लिखा था कि बड़े अफसोस की बात है कि 2 करोड़ हिंदुस्तानी भूखे मर रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार हिंदुस्तान को अपने मालो सामान का बाजार बनाने की नीति को आगे बढ़ाने पर तुली हुई है। इसके चलते देश के लोगों के काम धंधे टूटते जा रहे हैं। ब्रिटिश हुकूमत खेती के आधुनिक विकास का भी कोई प्रयास नहीं कर रही। भारतीयों को अच्छे और ऊंचे ओहदों से वंचित किया जाता है। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा हिंदुस्तान और उसकी जनता पर हर तरह का बोझ डाला जा रहा है। उसकी धरोहर को भी नष्ट किया जा रहा है। देश को इस दशा से मुक्ति दिलाने के लिए जरूरी है कि देश की आजादी की लड़ाई के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया जाए। ब्रिटिश हुकूमत और उसकी नीतियों के विरोध को आगे बढ़ाने का काम बरकतुल्ला और उनके अन्य साथियों का प्रमुख मिशन बन गया। इस मिशन में ब्रिटिश हुकूमत से पीड़ित हर देश के लोग उनके साथ खड़े थे। वे हर जगह ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने के लिए लोगों का आह्वान करते और इस बात पर जोर देते कि हिंदू मुसलमान और सिखों की एकता को बढ़ाने की जरूरत है।

1905 के अंत तक जापान पहुंचने के साथ उनकी ख्याति एक महान क्रांतिकारी के रूप में हो चुकी थी। इसी के चलते जापान में ब्रिटिश हुकूमत के प्रतिनिधि के दबाव के चलते मौलाना को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, लेकिन मौलाना का ये विरोध समाचार पत्रों तथा बैठकों सम्मेलनों के माध्यम से निरंतर चलता रहा। इसी सिलसिले में वे फ्रांस गए, इसके बाद दोबारा अमेरिका। तब तक अमेरिका के प्रवासी हिंदुस्तानियों द्वारा गदर पार्टी के निर्माण के लिए प्रयास आरंभ हो चुका था। गदर पार्टी का उद्देश्य ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़कर देशवासियों के जनतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की स्थापना करना था। गदर पार्टी के इन उद्देश्यों घोषणाओं को निरूपित करने में बरकतुल्ला ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका सरकार पर गदर पार्टी पर रोक लगाने और उसे प्रतिबंधित कराने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। इसके चलते बरकतुल्ला, लाला हरदयाल और कई अन्य क्रांतिकारियों को अमेरिका छोड़ना पड़ा। मई 1919 में मौलाना बरकतुल्ला, महेंद्र प्रताप, मौलवी अब्दुल रब और दिलीप सिंह के साथ हिंदुस्तान की आज़ादी का उद्देश्य लिए मॉस्को पहुंचे, जहां उन्होंने लेनिन से भेंट की। लेनिन ने उनके उद्देश्य को न्यायसंगत बताते हुए उनका समर्थन किया। आम धारणा है कि ब्रिटिश शासन के दौर में बनी पहली हिंदुस्तानी सरकार आज़ाद हिंद फौज की सरकार थी, लेकिन सच्चाई यह है कि पहली हिंदुस्तानी सरकार 1915 में अफगानिस्तान में बनी हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार थी, जिसके राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप सिंह और प्रधानमंत्री मौलाना बरकतुल्ला थे। मौलाना बरकतुल्ला ने कहा था कि जीवन भर मैंने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपने देश की आज़ादी के लिए प्रयास किए। मैं अपनी कोशिशों में कामयाब न हो सका, मगर मुझे इस बात का पक्का विश्वास है कि मेरे बाद सैकड़ों हजारों बहादुर जांबाज इस लड़ाई को गति देने के लिए आगे बढ़ आए हैं और उसे जारी रखेंगे। मैं पूरे यकीन के साथ देश का भाग्य उनके हाथों में सौंप कर जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सन 1970 में भोपाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसे 1988 में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का नाम दिया गया। ये नामकरण प्रोफेसर बरकतुल्ला भोपाली के सम्मान में किया गया, जिन्हें इतिहास भारत के महान राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के रूप में याद करता है। जय हिंद। अल्लाह हो।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री राजेश प्रसाद मिश्रा ने, समन्वय किया संजय यादव ने और इसे पेश किया सुधानुपम ने।
1: ये वतन का राग।
2: ऐतिहासिक, सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झक्कास रेडिओ स्टेशन पुणेरी आवाज, ऐकत रहा 107.8 FM, आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर, पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आपण ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. मी स्मिता जयकर, आनंदी रहा, आनंद वाटा.
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज. वेलकम सिस्टर.
2: ओम शांति.
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति.
2: थैंक यू सो मच.
1: आज आप शक्तिशाली लग रही हैं.
2: आज हम मुरली पढ़ेंगे, इसलिए जैसे ही मुरली पढ़ते हैं परमात्मा के महावाक्य डायरेक्टली, तो वो शब्दों में एक अलग ही पावर होती है सारे, यू नो, चाहे

0: शब्द हमने कई बार सुना हो, लेकिन वो परमात्म महावाक्य जो होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि उसको सुनने और पढ़ने से भी आत्मा की एम्पावरमेंट हो जाती है।
1: सोचने से कि आज मैं पढ़ने वाली हूँ,
0: उससे भी एम्पावरमेंट हो जाती है। राइट आज जो हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे
1: जी,
0: कि हमारे संकल्प ये एक सहयोग है जो दूसरों को और दुनिया को हम देते हैं, द पावर टू कोऑपरेट, सहयोग की शक्ति। आज दिन तक हम सहयोग मांगते थे, सहयोग चाहते थे, लेकिन हम क्या सहयोग दे सकते हैं एक दूसरे को, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है औरों के प्रति और पूरी दुनिया के प्रति, तो उसके बारे में मुरली थी। सो आई थॉट वी शेयर इट विद एवरीवन।
1: जी,
0: जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार, मतलब आत्मा उड़ती कला एम्पावरमेंट पे है या गिरती कला पे है, डिसएम्पावरमेंट हो रही है, उसका आधार दो बातें हैं, भावना और भाव। दो ही शब्दों से जिसको हम कहते ना, भाव और भावना क्या थी उनकी, तो भाव और भावना से या तो आत्मा की उड़ती कला होगी या आत्मा की गिरती कला होगी। अगर किसी भी कार्य में कार्य के प्रति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है तो भावना का फल भी श्रेष्ठ स्वतः ही प्राप्त होता है। अगर किसी भी काम में काम के प्रति या काम करने वाले व्यक्ति के प्रति अगर हमारी भावना श्रेष्ठ है तो उसका फल ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ ही प्राप्त होने वाला है। एक है सर्व के प्रति कल्याण की भावना। अब हम चेक करें हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारी इंटेंशन। भाव एंड भावना मींस इंटेंशन एंड फीलिंग। एक है सर्व के प्रति कल्याण की भावना। क्या हमारी ये भावना है कि हर एक का कल्याण किस चीज में हो। दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना। हम किसी को सहयोग देते हैं, किसी को हम कहते हैं इनके साथ नहीं हम कर सकते, आई कैन नॉट कोऑपरेट विद दिस पर्सन, आई कैन नॉट वर्क विद दिस पर्सन। तो परमात्मा ने कहा कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना। तीसरी है सदा हिम्मत और उल्लास बढ़ाने की भावना। हमारी इंटेंशन ये हो कि हम जो कहें जो करें वो औरों का भी उमंग उत्साह उससे बढ़ना चाहिए। चौथी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना, बिलोंगिंगनेस। आत्मा मेरे परिवार की है,
1: ये वाला थोड़ा मुश्किल है,
0: थोड़े वाला मुश्किल है ये। और पांचवी है इन सब का फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना, सोल कॉन्शियसनेस। फर्स्ट थी सबके प्रति कल्याण की भावना, दूसरे थी कोई कैसा भी हो स्नेह और सहयोग की भावना, तीसरा है सदा उनके हिम्मत और उल्लास को बढ़ाने की भावना, चौथी है अपनेपन की भावना, और पांचवी इन सब की फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना। मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, ये अगर फाउंडेशन में भावना होगी तो फिर ऑटोमेटिकली सबके कल्याण की भावना वो इजी हो जाएगी। सब अपने हैं, हर आत्मा प्योर है, हम सब, जब हम देखो हम दुनिया में कितनी बार कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वसुदेव कुटुंबकम, हम सब कनेक्टेड हैं। और आज तो हम एक ही घर में कनेक्टेड नहीं फील करते एक दूसरे से, तो सोल कॉन्शियसनेस जब तक नहीं होगी वो कनेक्टेड फील नहीं होगा। मैं आत्मा हूं, ये आत्मा भाई है, ये हमारी फैमिली का है, दैट इज यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो परमात्मा ने कहा हरेक के लिए अपनेपन की भावना, फिर सदा हरेक का उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना, कि अगर दूसरा डिमोटिवेटेड है भी, डिसएम्पावर्ड है भी, तो उसका उमंग उत्साह बढ़ाना वो भी मेरी इंटेंशन होनी चाहिए। तो परमात्मा ने कहा अगर ये पांच क्राइटेरिया ध्यान रहे तो हमारी भाव और भावना श्रेष्ठ है, और अगर हमारी भाव और भावना श्रेष्ठ है तो उसका फल फिर
1: श्रेष्ठ
0: श्रेष्ठ होना ही है। परमात्मा कहते हैं माया के आने के विशेष यही दरवाजे हैं, मतलब कमजोर थॉट्स आने के, वीकनेसेस आने के यही दरवाजे हैं। किसी भी विघ्न को चेक करो, उसका मूल, मतलब जीवन में कोई भी विघ्न आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, उसका मूल फाउंडेशन प्रीत की बजाय विपरीत भावना ही होती है। मूल
1: किसका फाउंडेशन का विपरीत?
0: कॉन्फ्लिक्ट। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का फाउंडेशन स्नेह की बजाय, प्रीत की बजाय विपरीत भावना है, इसीलिए वो फाउंडेशन है। तो अगर फाउंडेशन को चेंज करें कि आई एम अ लवफुल सोल, दिस सोल इज ऑल्सो ब्यूटिफुल सोल, ये अक्वायर्ड संस्कार है, सही नहीं भी लग रहा लेकिन पुरुषार्थ करके भी, मेहनत करके भी उस आत्मा के लिए प्यार की वाइब्रेशन क्रिएट करें, तो फाउंडेशन को चेंज कर देंगे। अगर ऊपर ऊपर से थॉट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, नहीं हमें एक्सेप्ट करना है, नहीं अच्छा कोई बात नहीं उसका संस्कार तो है, नहीं वो ठीक हो जाएगा, नहीं वो है तो अच्छा, लेकिन मूल को नहीं चेंज किया।
1: रिश्तेदार है क्या कर सकते हैं?
0: हाँ। मेरा कई बार हम कहते हैं मेरा कार्मिक अकाउंट है क्या कर सकते हैं, अभी है तो फेस तो करना ही पड़ेगा। ये सारे थॉट्स में मूल को नहीं चेंज किया, फाउंडेशन को नहीं चेंज किया, तो ये ऊपर ऊपर वाली थॉट आ जाएगी, कल चली जाएगी, पर आएगी पुर जाएगी, फिर चेंज करना पड़ेगा, बार बार उसको चेक करना पड़ेगा, बार बार मेहनत करनी पड़ेगी।
1: फाउंडेशन मेरी तरफ से अगर सही रहे, दूसरी तरफ से नहीं, तो तब भी तो मुश्किल हो जाता है।
0: दूसरी तरफ की फाउंडेशन तो हम नहीं ना चेंज कर सकते है,
1: ऐसा कई बार होता भी है।
0: क्या चीज?
1: मैं अपनी तरफ से बिल्कुल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: हाँ?
1: किसी से ना नफरत है, ना दुश्मनी, ना दोस्ती है, ना प्यार है, ठीक है, लेकिन एक तरफ से कितनी जेलसी आती है, कितना एंगर आता है कि ये आदमी इतना तरक्की कर गया और ये है वो है,
0: वो आता है, लेकिन उसमें हमें क्या करना है, सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है कि वो थॉट्स का प्रभाव हम पर ना पड़े, विच मीन्स हम भी सिमिलर थॉट्स क्रिएट करना नहीं शुरू कर दें, तो वी आर कनेक्टेड टू आवर फाउंडेशन। कोई आकर हमारी फाउंडेशन,
1: मेरे फाउंडेशन से ठीक है, लेकिन हम दोनों के रिलेशनशिप का फाउंडेशन जो है उसका बेस तो प्यार नहीं हो सकता ना,
0: रिलेशनशिप का फाउंडेशन यहाँ होता है। रिलेशनशिप का फाउंडेशन
1: तो
0: यहाँ नहीं,
1: हम दोनों की रिलेशनशिप का फाउंडेशन मेरी तरफ से ठीक है
0: बस,
1: तो
0: उतना ही ठीक रखना है सिर्फ,
1: और वहां से चाहे कुछ भी आए,
0: वही तो पुरुषार्थ है। वहां से चाहे कुछ भी आए, हमने कुछ एपिसोड्स पहले क्या देखा था, वहां से जो थॉट आती है अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो कई बार हम भी वैसी क्वालिटी की थॉट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। अगर हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग है, प्रीत प्यार उस आत्मा के प्रति, जनरल नहीं, उस आत्मा के प्रति भी मेरा फाउंडेशन अगर स्ट्रांग है तो वहां से कोई भी थॉट आएगी, हमारी थॉट्स की क्वालिटी फिर भी कैसी रहेगी? वी नॉट टू सी कि वहां से, बिकॉज वी कांट चेंज द अदर पर्सन, दैट वी नो एंड वी स्टॉप ट्राइंग एंड वी अंडरस्टूड। कई बार ये भी हो सकता है कि वहां पे फाउंडेशन अच्छा है, हमारे अंदर कोई नेगेटिव थॉट्स चल रही है, ये भी हो सकता है,
1: विच वी नॉट अवेयर ऑफ,
0: वी थिंक इट्स कमिंग फ्रॉम दैट साइड, ये भी हो सकता है, इट कुड बी माई ओन नेगेटिव क्रिएशन।
1: नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट श्योरिटी, क्योंकि वहां से दिखता है ना, एक्शन से भी ना, सिर्फ थॉट से नहीं ना।
0: हाँ, चलो, तो
1: एक्शन से दिखता है, जब दूसरों को वो अपने बारे में बात करते हैं
0: तब
1: वो
0: पता चलता
1: से भी पता चलता है,
0: सही बात,
1: कई जगह से पता चलता है।
0: तो फिर अगर हमें पता भी है तब भी फिर हमारी ड्यूटी सिर्फ क्या है, अपना फाउंडेशन स्ट्रांग रखने की, कि उनकी फाउंडेशन में चाहे कोई भी चीज मिक्स हुई हुई है, मेरा फाउंडेशन कैसा रहे, क्लीन प्योर, क्योंकि परमात्मा ने जैसे कहा किसी भी विघ्न के आने का कारण सिर्फ ये मूल प्रीत की बजाय विपरीत भावना होती है, सिर्फ प्रीत की बजाय विपरीत है।
1: तो सिस्टम में कह रहा हूं ना, वो जो विपरीत वहां से जो आ रहा है,
0: विपरीत जो वहां से आ रहा है उसको हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ किससे कनेक्टेड रहना है,
1: किससे,
0: अपनी प्रीत की फाउंडेशन स्ट्रांग रहनी चाहिए, अगर उनकी बातों का प्रभाव लोगों पर पड़ सकता है, उनकी वाइब्रेशन का पड़ सकता है, हमारी वाइब्रेशन का नहीं पड़ेगा?
1: पढ़ना तो
0: पड़ सकता है कि नहीं
1: पढ़ना चाहिए।
0: सपोज यहाँ चार लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, आपकी फाउंडेशन प्योर है, मेरी फाउंडेशन में मिक्सचरिटी है, लेट्स से इम्प्योरिटी है, लेट्स से विपरीत है, हेट्रेड भी है, ठीक है, एंड मैं आपके लिए गलत भी सोच रही हूँ, गलत बोल भी रही हूँ, गलत कर भी रही हूँ, ठीक है, लेकिन आप तो अच्छा कर रहे हैं ना, तो जब आप कहते हैं चारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चारों पर किसका प्रभाव पड़ेगा? अगर मेरा पड़ सकता है तो आपका भी तो पड़ सकता है, तो हमें दूसरे का क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है उसके नहीं अटेंशन रखना। हम जनरली क्या होता है ना, दूसरे का क्या हो रहा है, दूसरे का मेरी तरफ क्या आ रहा है, वो करते करते हमें पता ही नहीं चलता हमारी अपनी थॉट कब नेगेटिव हो जाती है।
1: आपने एक बार मुरली में मुझे बहुत अच्छी लाइन बताई थी, सत्य को प्रत्यक्ष, क्या था वो?
0: सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता, सत्य के पास प्रत्यक्ष होने की अपनी विशेषता है, मतलब ट्रूथ विल रिवील इटसेल्फ, इट डज नॉट हैव टू बी रिवील्ड।
1: वो भी
0: सत्य स्वयं प्रत्यक्ष होता है,
1: वो भी परमात्मा के वाक्य थे ना?
0: बिल्कुल, कि उसको प्रूव नहीं करना है कि कौन राइट है, सिर्फ अपने राइट को पकड़ के रखना है। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट।
1: और भले वो चार को बोले, वो भी एक ना एक दिन राइट तो पता ही चल जाता है ना,
0: आपकी वाइब्रेशन भी तो पहुंच रही है ना। लेकिन हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है हमारी वाइब्रेशन में थोड़ी भी मिक्सचरिटी ना हो जाए, ये सब होते होते वी गेट इन्फ्लुएंस ना वाय व्हाट इज हैपनिंग, तो वह अनअवेयर इट मे हैव स्टार्टेड बाय समबडी एल्स, कि किसी और ने शुरू किया, बट वेरी सून वी आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। वो हमें सिर्फ ध्यान रखना है। तो परमात्मा कहते हैं भावना पहले संकल्प रूप में होती है, फिर बोल में आती है, और फिर उसके बाद कर्म में आती है, जो हमारी इंटेंशन है।
1: वो
0: पहले थॉट में आती है, फिर वर्ड्स में आती है, फिर बिहेवियर में आ जाती है। जैसी भावना होगी वैसे ही व्यक्तियों के हरेक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे व संबंध में आएंगे। जैसी भावना होगी, जैसे मेरे अंदर कॉन्शियसनेस होगी आपके बारे में, जो मेरी इंटेंशन में कॉन्शियसनेस में आपके बारे में फिट बैठा होगा, उसी कॉन्शियसनेस के थ्रू मैं आपके हर बोल कर्म को चेक करूंगे।
1: एक दूसरे के लिए या अपने अंदर की भावना?
0: दूसरे के प्रति भी जैसी भावना होगी।
1: ऐसे भी तो हो सकता है ना, मैं वैसे ही लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करता तो मेरी भावना ही ऐसी है।
0: हाँ, लेकिन उसमें भी आप सबके साथ सेम नहीं होंगे ना। आप सबके साथ सेम नहीं होंगे।
1: अच्छा,
0: कुछ लोगों के साथ डिफरेंट, कुछ लोगों के साथ डिफरेंट, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस हमारी एक भावना बन जाती है।
1: तो मतलब फर्स्ट मीटिंग के बाद?
0: हाँ, इसीलिए कहते हैं ना, फर्स्ट मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट,
1: फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट
0: इम्प्रेशन, दिस इज वाई, बिकॉज वो भावना में जाके बैठने वाला है। पहली बार जब हम मिलते हैं किसी को, इट्स रॉ, तो हम उसको वो जैसा है वैसे ही देखते हैं, लेकिन फर्स्ट मीटिंग का जो भावना में बैठ जाएगा, अब नेक्स्ट मीटिंग के टाइम हम उस फर्स्ट मीटिंग के फिल्टर के थ्रू उस व्यक्ति को देखेंगे। और फिर कई कई इंसिडेंट्स जब होते जाते हैं, सीन आफ्टर सीन, तब तो वो भावना बहुत पक्की हो जाती है। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं फिर उसी भाव से उनको देखेंगे, सुनेंगे, उनके हर कर्म को देखेंगे और उनके संबंध में उसी भाव से आएंगे। भावना से भाव भी बदल जाता है। अगर किसी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है, आपने भी ईर्ष्या कहा ना अभी जलसे, अगर ईर्ष्या की भावना है अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है, तो फिर उस व्यक्ति के हर चलन हर बोल से मिसअंडरस्टैंडिंग का भाव ही अनुभव होगा।
1: देखिए, जवाब मिल गया,
0: क्योंकि भावना में हमारी वो फिटेड है। जेलेसी अगर फिटेड है, एंगर हेट्रेड फिटेड है, पास्ट एक्सपीरियंस का हर्ट फिट है, तो फिर उसी कॉन्शियसनेस के थ्रू हर सीन को जब देखेंगे, तो परमात्मा कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग का भाव ही अनुभव होगा। वो अच्छा भी करेगा ना, लेकिन आपकी भावना अच्छी न होने के कारण हर चलन और बोल से आपको बुरा भाव ही दिखाई देगा। और ये ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है, कि जब हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से कॉन्शियसनेस में फिट हो जाता है ये ऐसे ही है, फिर उसके बाद वो कुछ भी बोले, अच्छा भी बोले, लेकिन हम उस बात को वो जैसी है वैसे देख नहीं सकते।
1: एक बार कोई इंसान चोरी कर ले,
0: हाँ वैसे ही,
1: तो उसको बार बार जब भी मैं बोलूं इसको अकेले कमरे में मत भेजना,
0: हाँ।
1: इसको अकेले पेट्रोल भराने मत भेजना।
0: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर कभी भी कोई चीज मिसिंग हो,
1: हाँ,
0: तो सबसे पहले हम उसी को याद करेंगे, जबकि उस दिन उसने उसको संभाल के अच्छे से रखा होगा, लेकिन क्योंकि हमारी भावना में वो फिट हो चुका है तो हम उसके अच्छे को भी गलत ही देखेंगे।
1: और संभालते समय अगर आपने देख लिया तो आप बोलेंगे तो जेब में डाल रहा था,
0: क्योंकि भावना वो है। कितना डिफरेंस हो जाएगा कि सत्य क्या है और हम अपनी भावना के थ्रू क्या देख,
1: वो संभालने जा रहा है,
0: हाँ,
1: और हमने उसके हाथ में देख लिया,
0: हाँ, और हमने अपनी पुरानी एक्सपीरियंस के कारण जो हमारी भावना बनी, तो हमारा प्रेजेंट कर्म भी फिर कैसा हो गया, अच्छा भी हमें फिर गलत दिखाई देने लगा। तो भावना भाव को बदलने वाली है, तो चेक करो कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ भाव रहता है। भाव को समझने में अंतर पड़ने से मिसअंडरस्टैंडिंग माया का दरवाजा बन जाती है। भाव भावना क्लीन नहीं तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस। आप देखो, इसीलिए फाउंडेशन ऑफ ए रिलेशनशिप कितनी इंपॉर्टेंट है। जहां फाउंडेशन स्ट्रांग है, आपकी कॉन्शियसनेस में वो फिट है, प्यार फिट हुआ हुआ है, रिस्पेक्ट फिट हुई हुई है, अब कितनी भी आर्ग्यूमेंट हो जाए ऊपर, कितना भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, बात आती है बात खत्म हो जाती है। लेकिन जहां फाउंडेशन में डाउट है, जहां फाउंडेशन में हर्ट है, वहां छोटी सी लाइन भी सामने से एक कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी क्रिएट कर देगी। तो भावना में क्या फिट हुआ हुआ है। आजकल के साइंस के साधन भी वेस्ट, खराब माल जो होता है उसको परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं। तो प्रसन्नचित आत्मा साइलेंस की शक्ति से, चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरा अनुभव होता है, लेकिन वो बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारणा करेगी और दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति दे देगी।
1: बाप रे,
0: कितनी सारी चीजें करेगी। जैसे साइंस वेस्ट को बेस्ट बना सकती है, ऐसे प्रसन्न चित आत्मा जो खुद खुश है, क्लीन है, प्रसन्न चित्त है उसका, प्रसन्न साइलेंस की शक्ति से, जो प्रसन्न है और साइलेंस की शक्ति से, मतलब वो अपनी ओरिजिनलिटी से कनेक्टेड है।
1: साइलेंस हियर आल्सो मींस स्टेबल,
0: स्टेबल
1: अनडिस्टर्ब्ड।
0: साइलेंस की शक्ति मींस माइंड इज नॉट डिस्टर्ब्ड एट ऑल। वो शक्ति से चाहे बात बुरी होगी, संबंध बुरे अनुभव होते होंगे, लेकिन वो बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में धारण करेगी। मतलब कोई बुरे सीन में से भी कुछ अच्छा ढूंढ कर स्वयं में धारण करेगी और दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। सपोज जैसे आपने कहा, इवन इतनी सी चीज कि अगर सपोज हमने किसी को चोरी करते हुए देख लिया, वो एक्चुअल चोरी ही कर रहे थे वो, राइट, तो सीन ठीक नहीं, सीन गलत है, लेकिन उस सीन में अगर आप स्टेबल रहे, आप स्टेबल रहे, तो आप कैसी थॉट क्रिएट करेंगे उस आत्मा के प्रति,
1: ये उठा के संभाल रहा होगा।
0: सपोज वो चोरी कर रहा है, देखो लाइन क्या है कि गलत हो रहा है, वी हैव टू कन्वर्ट वेस्ट टू बेस्ट। गलत हो रहा है, बात बुरी है, कोई आपको स्टाफ चोरी करते हुए दिखाई दे रहा है, अजम्पशन नहीं कि वो चोरी कर रहा था, एक्चुअल वो कोई चोरी कर रहा है, आपको वेस्ट को बेस्ट में कन्वर्ट करना है।
1: ये ऐसा हुआ था इसके ऊपर, कि हमारे यहाँ एक कुक थी, उसको आंटी बुलाते थे, बहुत रेस्पेक्ट देते थे, तो वो थैली में कुछ एप्पल्स और फ्रूट्स घर से चोरी करके चली गई। तो बाहर वॉचमैन ने गेट से पकड़ के सेवेंथ फ्लोर पे लिफ्ट में लेके आया, बोला साहब इसकी थैली में ये दिखा। तो मैंने पता क्या किया, मैंने बोला हाँ ये मैंने दिया इसको।
0: आह सी, कितना ब्यूटीफुल।
1: उसके बाद वो औरत इतनी फेथफुल रही।
0: हाँ, दिस तो हो गई ना।
1: मैंने एक लफ्ज भी नहीं बोला, हम आपको आंटी बोलते हैं।
0: हाँ।
1: हम आपको इतना बड़ा घर का मानते हैं, आप घर का खाना बनाती हो।
0: अब इसमें क्या क्या हुआ, कितने रिजल्ट्स निकले। खुद पहले साइलेंट रहे, साइलेंट रहे, उस आत्मा के प्रति औरों के मन में जो रिस्पेक्ट है, किसी को भी घर में नहीं पता चला ये लाइन बोलने से, तो औरों के मन में जो रिस्पेक्ट है वो भी इंटैक्ट रही। और जो इतनी प्यारी लाइन जो इसमें है कि दूसरे के अंदर भी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देंगे। तो बुराई की भावना थी, चाहे वो छोटी सी चीज है, लेकिन है तो डिसऑनेस्टी ना, उसका तो साइज नहीं होता कुछ। डिसऑनेस्टी तो डिसऑनेस्टी है, लेकिन बुराई को भी अच्छाई धारण करने की शक्ति देंगे।
1: I wish I'd done that later on with other people also.
0: Never mind, we do that from today, but nice to remember it, na? Yaad aaya, to kitna kuch yaad aa jata hai uske saath fir. Humne kaise kiya, uska result kya aaya, and phir uske saath wo kaam bhi karti rahi wahin pe. She continued working and wo faithful ho gayi. Sab results ho gaye na. Ye hai transformer, jo apni shakti ko bhi transform kar de, aur phir apni bhavna se औरों की शक्तियों को भी ट्रांसफॉर्म कर दे। तो ये लाइन वर्क करती है ना, पॉसिबल है। हम सब ने कभी अनुभव किए होते हैं इन सारी चीजों के, लेकिन वो फ्लीटिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो आते हैं और चले जाते हैं। जो लाइफ के ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, उनको हम यहाँ रजिस्टर नहीं करते बहुत ज्यादा। जो दर्द वाले एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जहाँ हर्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, वही ज्यादा रजिस्टर हो जाते हैं। ये भी एक चूज करना होता है, कौन से एक्सपीरियंसेस को रजिस्टर करना है, ताकि फिर हम उसी भावना के थ्रू हर आने वाली सीन को भी देखेंगे। तो परमात्मा कहते, कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं, जब है ही बुरी या गलत बात, तो गलत को गलत तो कहना ही पड़ेगा ना। आप भी कहते हैं ना, बहुत बढ़िया बात।
1: कई बार कहता हूं मैं, ब्लैक को ब्लैक बोलूं तो क्या बुरा है।
0: हाँ, तो कहते हैं, जब है ही बुरी व गलत बात, तो गलत को गलत तो कहना पड़ेगा, या गलत को गलत समझना तो पड़ेगा ना। लेकिन गलत को गलत समझना, ये समझने के हिसाब से समझा, वो राइट है ये रॉन्ग है, समझना जानना ये अलग बात है। लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले, समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। बात राइट है कि रॉन्ग है, समझना जानना, समझने तक ठीक है, लेकिन आत्मा की कोई भी बुराई को अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे।
1: धारण नहीं करना मतलब?
0: मतलब वो चित पे ना रह जाए, ये है ही ऐसे। बात को देख लिया, कर्म को देख लिया, उस कर्म में आगे कुछ ध्यान रखना है, वो कर लिया, लेकिन उस बुराई को अपने चित पर नहीं धारण करना
1: उसको
0: है।
1: बार बार उसके बारे में सोचना, तो करते करते फिर वैसे हम
0: बन जाते
1: तो वो बुराई अपनी
0: अपने चित पर आ जाती है,
1: तो हम भी बुरे
0: वो भी रेडिएट हो जाती है। तो ये कितनी अच्छी लाइन है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं गलत है तो गलत तो बोलना है ना, गलत को समझना, उसके साथ हमें कैसे चलना, लेकिन आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे।
1: मतलब कचरा चाहे मेरे घर का हो या किसी और के घर का हो,
0: कचरा
1: कचरा ही है।
0: कचरा तो कचरा ही है।
1: तो मैं बोलूँ क्या, ये मेरा नहीं है, मैं तो किसी और का है।
0: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी और के घर के कचरे को उठाकर अपने घर में थोड़ी रखना है। ये भी तो सोचो, इमेजिन फिजिकली विजुअली इफ वी हैड टू डू दिस, कि हर एक के घर का कूड़ा अपने घर में रख लिया। हर एक की बुराई, हर एक के पास है बुराई, हर एक के पास है विशेषता, तो अपने घर में क्या संभाल के रखना है, वो हमें अटेंशन रखना है। तो समझना अलग चीज है, समझने तक राइट है, समझ लिया, लेकिन स्वयं में भी वो अपने चित्त पर भी, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना समाना नहीं है। अपनी वृत्ति में, अपनी बुद्धि में, अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना समाना नहीं है। तो समाना और धारण करना इसमें अंतर हो जाता है कि देख लिया, समझ लिया, लेकिन उसको अपने अंदर समा लिया और धारण कर लिया, इसमें अंतर हो जाता है। अपने को बचाने के लिए ये कह देते हैं ये है ही रॉन्ग, तो रॉन्ग को रॉन्ग तो कहना पड़ेगा ना। लेकिन समझदार का काम क्या होता है? समझदार अगर समझता है कि ये बुरी चीज है, तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा करेगा क्या?
1: वही बात होगी।
0: हाँ, अपने पास अच्छी रीति संभाल कर रखेगा क्या? छोड़ देगा ना? या जमा करना ही समझदारी है? ये समझदारी है क्या? और सोचो, अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया, तो आपकी बुद्धि, वृत्ति, वाणी क्या सदा स्वच्छ मानी जाएगी?
1: नहीं।
0: जैसे हमने किसी और की कमजोरी को अपने चित्त पर रख लिया, अपनी बुद्धि में धारण कर लिया, मीन सोचते सोचते अब वो हमारी थिंकिंग का हिस्सा बन चुके हैं, फिर वो हमारी वाणी का भी हिस्सा बन चुके हैं कि उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनकी बुराई डिस्कस कर रहे हैं, उनकी वीकनेस हम औरों के साथ बात कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं, अब क्या आपकी बुद्धि और वाणी स्वच्छ मानी जाएगी?
1: इफ आर इंटेंशंस एंड फीलिंग्स अबाउट द टास्क एंड द पीपल इन्वॉल्व्ड इन द टास्क आर प्योर, देन द टास्क विल बी सक्सेसफुल। Even if another person is not creating nice thoughts for us, we can protect ourselves by paying attention that every thought we are creating for them is of the right quality. Our intentions for others should be for their welfare. However they may be, our intention should be to give love and cooperation always. We should always increase their zeal and motivation. We need to have a feeling of belongingness for everyone. The foundation for all this is soul consciousness, children of God. We are all family. We do not need to prove ourselves or our thoughts for others. Truth does not have to be proved. Truth has the power to reveal itself. As will be our consciousness and intentions, so will be our thoughts, words and actions. Our consciousness is the foundation based on which we will evaluate others' words and actions. If our consciousness is impure about them, we will doubt their actions, even if they are right.
0: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 559 660.

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, व्हेरेवर एंड फॉर हाउएवर लॉन्ग आई वांट, सो देन इट्स माय चॉइस, सो नाउ इट्स योर चॉइस। आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है, तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी, लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देयर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: मस्ती की पाठशाला वेदांत, पंकज, आकाश, यश, आदित्य, सैंडी, वरदान, आदित्य प्रकाश, उन्नति। लेखिका सुधापुरी।
2: ओए क्या हो गया है सबको आज? हैं?
3: क्यों, क्या हुआ?
4: कुछ जल्दी से सोचो ना क्या खेलें? टाइम वेस्ट कर रहे हो सब।
5: टाइम वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, हंस नहीं रहे क्या? चलो इसको पकड़कर इसे गुदगुदी करके हंसाते हैं।
4: ओह नहीं नहीं। अच्छा बस बस, अब नहीं कहूँगा ऐसे।
2: घर घर खेले जैसे हम बहुत पहले खेला करते थे, अब थोड़ा बड़ों की तरह खेलेंगे। झूठी मोटी रॉब जमा कर, या दादा दादी की एक्टिंग करके, या कुछ भी पड़ोसी के साथ पंगा, या जैसे पिकनिक।
4: मतलब जैसे कोई कॉमेडी शो करेंगे।
5: बस बस, जब देखो घर घर या स्कूल स्कूल।
3: स्कूल स्कूल कब खेला?
4: उस दिन खेला नहीं था जब हमने टीचर बन के मेक इन इंडिया को समझाया था, क्लास ली थी।
6: ओह वो तो हमारी मस्ती की पाठशाला थी।
7: पर कुछ भी हो मजा बड़ा आया था, दीदी ने खेल खेल में मजे करा दिए थे।
8: खेल खेल में मजे या खेल खेल में ज्ञान?
2: दोनों ही।
5: चलो एक रैप सॉन्ग गाते हैं, ताली बजा बजा कर।
3: पहले लिख तो ले लिरिक्स क्या होंगे।
4: साथ साथ बनाएंगे, मजा आ जाएगा।
9: ठीक है शुरू करो।
6: क्या शुरू करो अंताक्षरी?
7: ये सब रैप सॉन्ग वगैरह हमारे अंताक्षरी का ही तो दूसरा रूप है।
8: हाँ हाँ बिल्कुल ठीक।
2: ये चांद सा रोशन चेहरा,
5: नदियों का रूप सुनहरा,
3: ये झील सी नीली आँखें,
4: आँखों पर ज्ञान का पहरा।
6: इन आँखों को समझाओ जी,
7: इन्हें हंसना सिखाओ जी,
8: हर पल सीरियस न रहकर
0: खिलखिलाकर हंसना बताओ जी।
9: चलो एक बार और, बड़ा मजा आया। ठीक है।
2: वाह भाई वाह।
5: क्या भाई क्या?
3: एक चीज मिलेगी।
4: क्या भाई क्या?
6: बहुत सारे पटाखे और फुलझड़ियाँ।
7: क्यों भाई क्यों?
8: त्योहारों के लिए और भाई क्यों?
2: पर पटाखों से होता है
9: प्रदूषण।
5: बस भाई बस।
3: क्या भाई क्या?
4: ज्ञान की बातें और क्या।
0: आज बहुत मस्ती में हो सब, चलो एक गेम खिलाती हूँ सबको। इसमें कोई गहरा ज्ञान तो नहीं, पर एक मजेदार एक्सरसाइज है।
9: हाँ दीदी हाँ, ठीक है।
0: देखो हम सब एक ही अक्षर से शुरू करके अधिक से अधिक सही मीनिंग वाली बातें बोलने की कोशिश करेंगे।
2: वो कैसे?
0: जैसे चंदू की चाची ने,
2: समझ गए, चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाने का निश्चय किया।
0: समझ गए ना, एक ही अक्षर से जो जितनी देर तक सही मीनिंग वाली बात बोलेगा वही जीत जाएगा।
2: ठीक है, जैसे बंदर बैलून बदल बदल कर बुलबुले बनाते बनाते बोला, बड़ बड़ बड़ बड़ बड़ बड़ी बना रहे हो बड़हवास, बैठे बैठे बेहुदी बातें बना बना बल खा रहे हो।
5: अच्छा अब मेरी बारी। ट्विंकल ट्विंकल टमाटर टाल, टोमी टाटा कर टेम्पो, और टू व्हीलर पर टकलू टिम्पी के साथ टेटे टम टम करता।
3: जी नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हारी बात का कोई मतलब नहीं बनता।
5: क्यों बनता तो है?
9: जी नहीं, नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं होता।
4: अच्छा अब मैं करके दिखाता हूँ।
9: ठीक है चलो चलो।
4: सीमा सामने से सतर्क हो, समझ सारसों से स्नेह स्वर से सहलाते हुए, सी सी स्वर समेत सरकती सरकती सारथी को बुला लाई।
0: ठीक है ठीक है, अच्छी कोशिश कर रहे हो तुम सब।
6: अब मैं।
9: ठीक है।
6: मटकती मैना मिली मुझे, मटक मटक के मन से बोली, मीना और मेम ने मचल मचल कर मन मारते नहीं, मान मर्यादा मदन मन को समझाते, मम मम।
7: रुक रुक रुक रेलगाड़ी रुक, रमैया रमती हुई रहना रेन, हा हा हा।
8: ये देखो मैं क्या लाया हूँ।
9: क्या है क्या है? आहा, गोलगप्पे।
8: हाँ, मेरी मम्मी ने इसका पानी बनाया है।
5: पानी घर में बनाया है?
8: बिल्कुल, उन्हें हमेशा से मेरा बाहर से गोलगप्पा खाना पसंद नहीं था। कहती थी पता नहीं पानी साफ भी है या नहीं।
2: मेरी मम्मी भी खाने नहीं देती थी, पर इसके लिए शायद मान जाए, क्योंकि ये तुम्हारी मम्मी ने हम सब के लिए साफ पानी से बनाए होंगे।
8: और क्या, बल्कि मैंने भी सीख लिया है पानी बनाना। आज तुम सबको मैं सिखाऊंगा भी।
9: वाओ, ग्रेट, मजा आ जाएगा। हम तो रोज बनाकर पिया करेंगे भाई।
8: बहुत आसान है। पहले कुछ पुदीने के पत्ते लो, जैसे एक छोटी गड्डी के।
9: ठीक है।
8: स्वाद अनुसार हरी मिर्ची लो, जैसे ज्यादा तीखा चाहते हो तो 3 या 4, नहीं तो 1 या 2।
9: अच्छा।
8: इनको अच्छी तरह से धोकर मिक्सी में पीस लो। फिर खट्टाई के लिए आमचूर पाउडर या कच्ची अम्बी डालकर पीस लो मिक्सी में। फिर इस मिक्सचर को ठंडे पानी में घोल लो। नमक अपने स्वाद अनुसार चख के ठीक कर लो। बस।
3: और क्या मसाले पड़ेंगे इसमें?
8: मम्मी ने इसमें 1/2 चम्मच हींग डाली है और 1 चम्मच काला नमक। ये सब हाजमे के लिए बहुत अच्छे हैं। बाद में 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पीस के डाला है।
4: अब इसे देखते ही रहोगे या खाओगे भी? आओ मैं खिलाती हूँ सबको। लाओ ये गोलगप्पों का पैकेट, मुझे दे दो। ये भी मम्मी ने बनाया है क्या?
8: नहीं दीदी, ये बाजार से ऐसे ही मिल जाते हैं पैकेट में।
4: कई लोग तो इन्हें भी घर पर ही बना लेते हैं, सूजी या आटे के।
8: देखो दीदी, मैं पत्ते के 2 भी लाया हूँ। सबको 1-1 बांट देता हूँ, सब मिलकर खाते हैं।
4: आह, तुम्हारी मम्मी ने तो आलू और चटनी भी मिक्स करके दिए हैं।
6: लाओ मैं मदद करता हूँ। सब गोलगप्पे मैं थोड़ा थोड़ा भर देता हूँ, फिर दीदी इसमें पानी भर भर के 1-1 को देती जाएंगी।
9: ठीक है, पर दीदी तुम भी तो खाओ ना।
4: खा लूंगी, पहले तुम सब खा लो।
9: नहीं, आप भी साथ साथ लो।
4: अच्छा, लेती हूँ। देखो ध्यान से, ये वाला गोलगप्पा बहुत बड़ा है।
2: हाँ, कितना बड़ा मुंह खोलना पड़ रहा है।
5: अरे, फूट गया सारा पानी।
4: आधा हाथ में ही आ गया।

जोरी, तूने मेरा दिल चुराया है।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। परिस्थिति किसी और की स्थिति, वो परिस्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: का ये रूप नया है।
1: आंख को पड़ी पल के भारी समझा पुरुष जो देखे नारी।

0: बड़ा वफादार है। खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: दैयारी दैया।
1: जब जब हम तुमको देखे हैं रिठेला, जब जब हम तुमको देखे हैं रिठेला, मन मोर

हैं लल्लू, ये हैं ज्ञान, ये हैं कल्लू, ये हैं प्राण। तू क्यों रोता चंदर भान, माने बेटा मेरी जान। ना हो रो रो के हलकान, तू है भारत की संतान। ले ले तू ये तीर कमान, मेरे प्यारे पहलवान। बचा ले अपने घर की शान, पी ले बीड़ी खा ले पान।

कनक मैं टूट मारा रे मारा रे वो मारा झूठ राग मचनू तो आग ये बात जान तारा तारा ये बात जान तारा वो मारा आँखें कटार देखा मेरा वार तेरा दिल किया है परा परा तेरा दिल किया है परा परा वो मारा

0: होते हैं।
1: अरे वाह मजनू,
0: लैला लैला करेगा
2: लैला, ओ लैला
0: लैला लैला करेगा, ठंडी आहें भरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम

0: हमको
1: डूब मरो,
0: डूबेगा नहीं तरेगा, डूबेगा नहीं तरेगा, प्यार से हम नहीं डरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हमको मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना।

अपना सुलगना किसको दिखाऊं, सांस के तूफान कैसे छुपाऊं, अपना सुलगना किसको दिखाऊं, सांस के तूफान कैसे छुपाऊं, आंखें क्या क्या देख रही है, दिल पे जो गुजरे कैसे बताऊं।

आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ।

0: करके तो ना कोट का सब तूने हिम्मत हारी, बस में तेरे आज तक आई ना चंचल नारी, दे दे साड़ी एक छपा के बात बने अलबेले,
1: हर बात बने अलबेले।

0: शमा मुस्कुरा कर जला, रश्क से कोई बुझ बुझ के जलने लगा। क्यों वो कोई आने को है।
1: वाह वाह वाह।

0: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर।
1: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
0: पवन करे शोर।
1: हाँ।